0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओ, आज सुबह की सभा में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। कार्यक्रमों का सिलसिला आरंभ होने के पहले आइए हम आपको बताए देते हैं कि आज सुबह की सभा में आप रेडियो आजाद हिंद से कौन कौन से कार्यक्रम सुनने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जीवन सौरभ। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ सुनिएगा हमारे कार्यक्रम अक्षय निधि में 7:10 पर। 7:20 से आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का मेरे साथ यानी आपकी अपनी पूर्वा के साथ। श्रोताओं, सुबह 8 आप सुनेंगे हमारा कार्यक्रम वतन का राग। आज ये कार्यक्रम आधारित होगा मातंगिनी हाजरा पर, जिनका आज शहादत दिवस भी है। सुबह 8:30 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। आज इस कार्यक्रम में बातें होंगी मृदा यानी मिट्टी की। सुबह 9 सुनिएगा हमारा कार्यक्रम योग संवाद। आज इस कार्यक्रम में वर्णन होगा ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी के जन्म का। सुबह 9:30 सुनिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम। भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय युवा वैज्ञानिक। आज इस कार्यक्रम में हमारे यानी विशेष कार्यक्रम में ये विषय होगा। सुबह 10 पेश की जाएगी रेडियो रिपोर्ट और साथ ही साथ परिक्रमा। श्रोताओं, सुबह 10:30 का वक्त होगा आजाद हिंद का। आज ये कार्यक्रम आधारित होगा मृगेंद्र कुमार दत्त पर। दिन में 11 सुनिएगा स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय होगा आयुर्वेद। और 11:30 सुनिएगा हमारा रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से आज सुबह की सभा में यानी दिन में 12 तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारा ये प्रसारण निरंतर जारी रहता है रात्रि 10 तक। तो बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए। आइए सुनते हैं जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ। भूल का फल। रात में वर्षा हुई थी, सवेरे रोज से अधिक चमकीली धूप निकली। बकरी के बच्चे ने माँ का दूध पिया, भरपेट पिया, फिर घास सूंघ कर फुदक गया। गीली नम भूमि पर उसे कूदने में बड़ा मजा आया और वो चौकड़ियाँ भरने लगा। पहले माता के समीप उछलता रहा और फिर जब कानों में वायु भर गई तो दूर की सूझी। माँ ने कहा, बेटा दूर मत जा, कहीं जंगल में भटक जाएगा। वो थोड़ी दूर निकल गया था। उसने वहीं से कह दिया, मैं थोड़ी देर में खेल कूद कर लौट आऊंगा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। माता मना करती रही लेकिन वो तो दूर जा चुका था। उसे अपनी समझ पर बहुत अभिमान था और माता के मना करने पर उसे झुंझलाहट भी आई थी। वो कूदने में मस्त था, चौकड़ी लगाने में उसे रास्ते का पता ही नहीं रहा। उसने जंगल को देखा और ये सोचकर कि थोड़ी दूर तक आज जंगल भी देख लूं, आगे बढ़ता गया। सचमुच वो जंगल में भटक गया और इसका पता उसे तब लगा जब वो कूदते उछलते थक गया। जब उसने लौटना चाहा तो उसे रास्ते का पता ही नहीं था। वो कटीली घनी झाड़ियों के बीच रास्ता ढूंढने के लिए भटकता ही रहा। अरे तू तो बहुत अच्छा आया, मुझे 3 से भोजन नहीं मिला है, पास की झाड़ी से एक बड़ा सा भेड़िया ये कहता हुआ निकल पड़ा। बकरी के बच्चे को ना तो उत्तर देने का अवकाश मिला और ना रोने का। उसे केवल मन में यही बात याद आती रही, मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरी करहूं सुभाए, लहे उ लाभु तिन जन्म कर, नतरु जन्मु जग जाए।
2: जीवन सौरभ।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 30 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र, इंद्रासोम, सरस्वती, बृहस्पति एवं मरुद्गण। छंद है त्रिष्टुप व जगती।
1: ऋतम देवाय कृण्वते सवित्र इंद्रायाग्ने न रमन्त आपह अहरहर्यात्यक्तु रपाम कियात्या प्रथमः सर्ग आसाम। जल प्रेरक तेजस्वी तथा सर्व प्रेरक वृत्रहंता इंद्रदेव के निमित्त यज्ञादि कर्म कभी भी नहीं रुकते। जब से यज्ञादि कर्म प्रचलित हुए तब से याजक गण सदैव यज्ञ कर्म करते हैं। यो वृत्राय सिनमत्रा भरिष्यत् प्र तम जनित्री विदुष उवाच पथो रदंती रनु जोषमस्मै दिवे दिवे धुनयो यन्त्यर्थम्। जो इंद्रदेव के शत्रु वृत्र के लिए अन्न प्रदान करता है उसकी बात इंद्रदेव से उनकी माता अदिति कह देती हैं। नदियां इंद्रदेव की कामनानुसार अपना मार्ग बनाती हुई निरंतर समुद्र की तरफ प्रवाहित होती रहती हैं। ऊर्ध्वो ह्यस्थादध्यन्तरिक्षेधा वृत्राय प्रवधम जभार मिहं वसान उप हीमदुद्रोति ग्मायुधो अजयच्छ त्रुमिंद्रः। चूंकि अंतरिक्ष में बहुत ऊंचे स्थित होकर मेघ से आच्छादित वृत्र ने इंद्रदेव पर आक्रमण किया था इसीलिए इंद्रदेव ने अपने वज्र को वृत्र के ऊपर फेंका और तीक्ष्ण आयुधधारी इंद्रदेव ने वृत्र पर विजय प्राप्त किया। बृहस्पते तपुषास्नेव विद्य वृकद्वरसो असुरस्य वीरान् यथा जघंत धृषता पुरा चिदेवा जहि शत्रुमस्माकमिन्द्र। हे बृहस्पति देव असुर पुत्रों को अपने विद्युत के समान ताप देने वाले वज्र से छिन्न भिन्न करें प्रताड़ित करें। हे इंद्रदेव जिस प्रकार प्राचीन काल में आपने वज्र के द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी उसी तरह हमारे शत्रुओं को भी आज नष्ट करें। अवक्षिप दिवो अश्मानमुच्चा येन शत्रुम मंदसानो निजूर्वाह तोकस्य सातौ तनयस्य भूरे रस्माम अर्धम कृणुता दिंद्र गोनाम। हे इंद्रदेव स्तोताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर आपने जिस वज्र से शत्रु का विनाश किया था उसी वज्र को द्युलोक से हमारे शत्रुओं के ऊपर फेंके। हमें भरण पोषण के योग्य साधन तथा गौधन से समृद्ध बनाए ताकि हम संतति का पालन पोषण कर सकें। प्रही क्रतुम वृहथो यम वनुथो रद्रस्य स्थो यजमानस्य चोदौ इन्द्रासोमा युवमस्माम् अविष्टमस्मिन् भयस्थे कृणुतम लोकम्। हे इंद्रदेव तथा सोमदेव, आप दोनों स्तोता यजमानों को चाहते हैं तथा उन्हें यज्ञ के विस्तार की प्रेरणा देते हैं। आप दोनों भययुक्त इस संसार में हम लोगों की रक्षा करें तथा हमारे जीवन को प्रकाशित करें। न मा तमन्न श्रमन्नोत तंद्रन्न वोचाम मा सुनोतेति सोमम् यो मे प्रणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुन्वन्त मुप गोभिरायत। जो इंद्रदेव हमें उत्तम ज्ञान तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करके हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं, जो सोमरस को शोधित करते समय हमारे पास गौवों सहित आते हैं, वे इंद्रदेव हमें कष्ट न दें, श्रम शक्ति प्रदान करें तथा हमें आलसी न बनाएं। हम भी कभी किसी से यह न कहें कि इंद्रदेव के लिए सोमरस तैयार न करो। सरस्वती त्वमस्माम् अविद्धि मरुत्वती धृषति जेषि शत्रून् त्यम् चिच्छर्धन्तम् तविषीय माणमिन्द्रो हन्ति वृषभम् शंडिकानाम्। हे मां सरस्वती, मरुतों के साथ संयुक्त होकर दृढ़ता पूर्वक हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आप हमारी रक्षा करें। अहंकारी तथा अत्यधिक बलशाली शांडववंशी शंडामर्क राक्षस को इंद्रदेव ने मारा था। यो नह सुनत्य उतवा जिघत्नु रभिख्याय तम तिगितेन विध्य बृहस्पत आयुधैर्जेषि शत्रून् द्रुहे रीशंतम परिधेहि राजन। हे बृहस्पति देव, हमारे बीच में जो छुपा हुआ हिंसक शत्रु हो उसे खोजकर तीक्ष्ण शस्त्रों से छेदें, हमारे शत्रुओं पर शस्त्रास्त्रों से विजय प्राप्त करें। हे राजा बृहस्पति देव, हिंसक अस्त्र द्रोहकारियों के ऊपर फेंकें। अस्मा के भी सत्व भी शूर शूरैर वीर्या कृधि यानी ते कर्त्वानि ज्योग भूवन्ननु धूपितासो हत्वी तेषामा भरा नो वसूनि। हे शूरवीर इंद्रदेव, हमारे बलशाली वीरों का सहयोग लेकर करने योग्य पराक्रमी कार्यों को करें, अहंकारी शत्रुओं को मारें तथा उनका धन हमें प्रदान करें। तम वह शर्धम मारुतम सुम्नयुर् गिरोप ब्रुवे नमसा दैव्यम जनम यथा रैम सर्ववीरम नशा महा अपत्य साचम श्रुत्यम दिवे दिवे। हे मरुद्गण, सुख की कामना से हम आपके तेजस्वी पराक्रम की स्तुति करते हैं, आपकी नमन पूर्वक प्रशंसा करते हैं। हमें पराक्रमी संतति से युक्त यशस्वी धन सदैव प्रदान करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 30 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। अब ये समय है भक्ति संगीत का। भक्ति संगीत लेकर उपस्थित हूँ श्रोताओं, मैं आपके बीच आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आइए कार्यक्रम को आरंभ करें इस प्रार्थना के साथ। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, और हमारे कर्म ऐसे हों कि मृत्यु से हम अमरता को प्राप्त करें।

मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। ईश्वर सबका मंगल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमपिता परमेश्वर हैं।

जीवन में कभी उन चीजों के बारे में यदि हम ना सोचें जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिलती, बल्कि हम उन अनगिनत चीजों को देखकर खुश हो जाएं जो बिना प्रार्थना के बाद भी ईश्वर ने हमें प्रदान की है, तो फिर देखिए ये जीवन हमें कितना सुखद और खुशहाल लगेगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आज सुबह की सभा में भक्ति संगीत में मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र पूर्वा खले।

वैसे यदि इच्छाओं की गिनती करें तो हम ये पाएंगे कि हमारे मन में इच्छाएं तो अनंत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं। मगर जब ध्यान से सोचें तो हम पाएंगे कि हमारे लिए दो ही चीजें बहुत आवश्यक है, और वो है एक तो स्वस्थ शरीर और दूसरा उस स्वस्थ शरीर में शांत और सुंदर मन।

श्रोताओं, देखा जाए तो ये जीवन एक बांसुरी की तरह है, जिसमें बाधाओं रूपी छेद कितने भी क्यों ना हो, लेकिन जिसको उसे बजाना आ गया, उसे ये जीवन

मेहनत करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है, धर्म पर चलने से पाप समाप्त हो जाते हैं, और यदि हम मौन रहते हैं तो सदा ही कलह को समाप्त कर देते हैं, और यदि हम में आत्मविश्वास रहता है तो भय अपने आप ही

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आनंद ले रहे हैं भक्ति संगीत का। आज का ये कार्यक्रम आइए इस प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कोई कष्ट न देखे, सभी को अच्छा देखने को मिले और हे प्रभु किसी को भी कोई दुख न हो। इस प्रार्थना के साथ ही दीजिए अनुमति भक्ति संगीत यही समाप्त करने की। पूर्वाखले को नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए, सुनते रहिए।
1: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है गोपाल सेन। सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवसागर असम से ऋतु मुनी हांडिक और नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

जान कुर्बान तिरंगे पे कर जाएंगे, बन के खुशबू हवा में बिखर जाएंगे। याद रखे न रखे हमको जमाना, तेरी मिट्टी में ए वतन ठहर जाएंगे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में ऐसे अनगिनत बलिदानी हुए हैं जिन्हें याद करके आज भी देश की मिट्टी का मन भीग जाता है। मातंगिनी हाजरा एक ऐसी ही महान देशभक्त थीं जिनका बलिदान याद कर रोम रोम सिहर उठता है। 71 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए गोली खाई, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। एक अद्भुत वीरांगना जिन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता था। मातंगिनी हाजरा का जन्म पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला नामक गांव में 19 अक्टूबर सन 1870 को हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। ये एक अत्यंत निर्धन परिवार था, इसीलिए मातंगिनी की शिक्षा दीक्षा भी नहीं हो सकी। पिता को बेटी के विवाह की चिंता थी और निर्धनता एक बाधा। मजबूर होकर पिता ने मात्र 12 साल की मातंगिनी का विवाह 60 साल के एक विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया। त्रिलोचन हाजरा का पहले से ही एक पुत्र भी था। इस तरह नन्ही सी मातंगिनी हाजरा को बेमेल बाल विवाह का दंश सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र होते होते वो विधवा हो गईं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई। ऐसी कठिन और दुखद परिस्थिति में वो अपने गांव लौट आईं। यहां एक झोपड़ी बनाकर वो रहने लगीं तथा मजदूरी करके जीवन यापन करने लगीं। नियति ने उन्हें बेसहारा कर दिया था, लेकिन वो स्वयं बेसहारों का सहारा बनी। वो किसी को भी परेशानी या तकलीफ में देखती तो उसकी सहायता करने का हर संभव प्रयास करती। इस तरह सबके दुख सुख में सहयोगी होने के कारण सभी लोग उन्हें मान सम्मान देने लगे। पूरे गांव में वो माँ की तरह पूजी हो गईं। दूसरों का दुख बांटकर वो अपना जीवन धन्य करती रहीं।

मातंगिनी हाजरा का एकाकी जीवन दूसरों की सेवा करते हुए बीत रहा था। जैसे दूसरों की सेवा कर वो अपने जीवन का अकेलापन भर रही थीं, दूसरों के सुख में अपना सुख देख रही थीं। ये वो समय था जब भारत में स्वाधीनता आंदोलन की ज्वाला प्रचंड हो रही थी। पराधीन भारत की तंद्रा टूट चुकी थी। वंदे मातरम स्वाधीनता की लड़ाई का युद्ध घोष बन चुका था। भारतवासी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपना रहे थे। गांधी जी की अगुवाई में देशव्यापी आंदोलन हो रहे थे। घर घर चरखा चल पड़ा था। लोग खादी पहनने का संकल्प ले रहे थे। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा हो चुकी थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया। वंदे मातरम के जय घोष के साथ पूरे देश में जुलूस निकल रहे थे। मातंगिनी हाजरा पर इस पूरे वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के विचारों से वो अत्यंत प्रभावित थीं। एक दिन एक जुलूस मातंगिनी हाजरा के घर के पास से निकला। मातंगिनी हाजरा स्वयं को रोक नहीं पाई। बंगाल की परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उन्होंने इस जुलूस का स्वागत किया और वो भी इस जुलूस के साथ बढ़ चली। ये जुलूस तामलुक के कृष्णगंज बाजार पहुंचा और यहां एक सभा आयोजित हुई जिसमें लोगों का आह्वान किया गया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम में शामिल हों। मातंगिनी हाजरा ने यहीं शपथ ली कि वो देश की स्वाधीनता के लिए अपना तन मन और धन, अपना सर्वस्व समर्पित करेंगी। समूचा देश करबंदी आंदोलन में एक साथ उठ खड़ा हुआ था। तामलुक में भी ये आंदोलन जोरों पर था। इसे दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए। तामलुक में एंडरसन के विरोध में प्रदर्शन हुए। एक जुलूस एंडरसन के निवास की ओर बढ़ा। मातंगिनी हाजरा काला झंडा लिए आगे आगे चल रही थीं। वो निर्भय ब्रिटिश राज के विरोध में नारे लगाती हुई दरबार तक पहुंच गईं। काला झंडा लहराते हुए उन्होंने नारा लगाया, लाट साहब वापस जाओ। पुलिस हरकत में आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद उन्हें 6 महीने सश्रम कारावास की सजा हुई। उन्हें मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन मातंगिनी हाजरा के उत्साह में इससे कोई कमी नहीं आई। उन पर तो गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों का रंग चढ़ा हुआ था। वो आजीवन गांधी मूल्यों को ही समर्पित रहीं।

मातंगिनी हाजरा गांधी जी को अपना आदर्श मानती थीं। वो गांधी मार्ग पर ही चल रही थीं। वृद्धावस्था के कारण उनकी आंखें कमजोर हो चली थीं, लेकिन इसके बावजूद वो चरखे पर सूत कातती, खादी के कपड़े ही पहनती। सन 1935 में जब भीषण बाढ़ के बाद तामलुक क्षेत्र में हैजा और चेचक फैल गया, तब भी अपनी चिंता किए बगैर वो लोगों की देखभाल में जुट गईं। लोगों की सेवा और अंग्रेजी हुकूमत को भारत से बाहर करना, यही दो लक्ष्य उनके जीवन के थे। इसीलिए लोग उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहने लगे। करो या मरो के आह्वान के साथ सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजों भारत छोड़ो की गूंज से ब्रिटिश सत्ता की नींव हिल गई। गांधी जी के आह्वान के बाद सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन ये आंदोलन थमा नहीं। स्थानीय नेताओं ने पूरे भारत में इसे जारी रखा। ऐसे समय में मातंगिनी हाजरा भला कहाँ चुप बैठने वाली थीं, वो भी इस आंदोलन में कूद पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे थे। तामलुक में हुए एक ऐसे ही प्रदर्शन में 3 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त था। इसके विरोध में एक और बड़ी रैली निकालने का निर्णय किया गया। मातंगिनी हाजरा ने 71 वर्ष की उम्र में भी गांव-गांव घूमकर लोगों को एकत्रित किया। 29 सितंबर सन 1942 को लगभग 5,000 लोगों के साथ एक जुलूस आगे बढ़ा। आपराधिक न्यायालय भवन के उत्तर से मातंगिनी हाजरा जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं। पुलिस ने भीड़ को रोकना चाहा। पहले चेतावनी दी और फिर गोलीबारी आरंभ हो गई। जुलूस में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन मातंगिनी हाजरा के हौसले बुलंद थे। पुलिस की गोलियों के बीच भी वो निर्भय आगे बढ़ती रहीं। उनके हाथों में तिरंगा झंडा था। वो एक चबूतरे पर चढ़ गईं और नारे लगाने लगीं। 71 साल की एक बुजुर्ग महिला का ऐसा साहस देखते ही बनता था। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा कि तभी एक गोली उनके हाथ में आकर लगी। उन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया, तिरंगा दूसरे हाथ में थाम लिया। तभी एक और गोली उनके दूसरे हाथ में लगी। असहनीय पीड़ा में भी वो तिरंगे झंडे को थामे रहीं और नारे लगाती रहीं कि तभी एक गोली उनके माथे पर लगी। उनका मस्तक भारत माता के चरणों में झुका और वो शहीद हो गईं। मातंगिनी हाजरा के बलिदान से पूरा क्षेत्र आंदोलित हो उठा। अपनी गांधी बूढ़ी की मौत को यहाँ के लोग सह नहीं सके। इस बलिदान ने जैसे प्रतिरोध की ज्वाला को और प्रचंड कर दिया। लोगों का आक्रोश इतना अधिक बढ़ा कि मात्र कुछ दिनों में ही लोगों ने यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर कर दिया और अपनी स्वाधीन सरकार की स्थापना की। इस सरकार ने यहाँ 21 महीनों तक काम किया। ऐसी महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि मातंगिनी हाजरा का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन ले, मातंगिनी हाजरा का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें मैसेज के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूँ वर्षा सिंह।
1: और मैं हूँ दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हो और इतना खूबसूरत गाना भी गा रही हो।
1: हाँ, आपने ठीक कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों?
0: बताइए, आप ही बताइए क्यों।
1: दरअसल आज मैं सुबह काफी लंबी सैर करके आई हूँ और बाहर सुबह इतनी सुहानी लगी कि मन खुश हो गया। हरे भरे पेड़, कलकल बहता पानी और ठंडी ठंडी बयार, मन को इतना अच्छा लगा कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था।
0: बात तो सही कही आपने, प्रकृति की गोद है ही इतनी खूबसूरत कि वहाँ से उन नजारों से नजर ही नहीं हटती है।
1: मैंने तो सोच लिया है, जब भी फुर्सत मिलेगी तो बाहर इन नजारों के बीच जरूर जाऊंगी।
0: वर्षा, आप जानती हैं
1: जी
0: कि प्रकृति ने हमारे लिए चारों ओर ऐसी चीजें और ऐसा वातावरण दिया है कि हमारे मन को तो भाता ही है, साथ ही हमें ये स्वस्थ भी रखता है। यही तो है परी और आवरण, यानी पर्यावरण हमारी धरती का।
1: जी हाँ, पर्यावरण प्रकृति का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है जो हमें मिला है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सब इसे संभाल कर और बना कर रखें।
0: बात तो सही कही आपने, ये एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र है जहाँ हम जीवित रहते हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं।
1: हाँ, पर्यावरण से मतलब उस परिवेश से है जिसमें हमारी पृथ्वी विद्यमान है। पशु पक्षी, सूर्य का प्रकाश, जल, पेड़ पौधे, हवा और हम मनुष्य तथा सभी जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
0: हाँ, इसके संतुलन को बनाए रखने में भी सभी की समान भागीदारी है। थोड़ी भी गड़बड़ी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाएगी।
1: हाँ, हर जीवित प्राणी अपनी विशेषताओं के साथ विकसित होता है। जैसे जलीय प्राणी पानी में सांस लेते देखे जा सकते हैं, और हवा में रहने वाले तो हवा में रहते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इन्हें अपने वातावरण से यदि हम अलग करें तो इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही पर्यावरण हर एक जीव के आसपास की दुनिया है जो उन्हें जीवित रखती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पर्यावरण पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, जीव जंतु और मनुष्यों जैसे जीवित और वायु, जल और भूमि जैसे निर्जीव तत्वों से बना है।
0: प्रकृति ने अपनी कार्य प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।
1: इनमें हम मनुष्य उन सभी प्राणियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और उनका उपयोग करते हैं।
0: हाँ जी, अब जैसे हवा की बात करें तो ये न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए भी जरूरी है। हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, जीवन देने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और नाइट्रोजन जैसी कई गैसें वायुमंडल में पाई जाती है।
0: और इस पर्यावरण में जलमंडल भी नदियों, महासागरों, समुद्रों आदि जैसे कई जल निकायों से बना है।
1: इसी तरह स्थल मंडल चट्टान और मिट्टी से बना है, और जीव मंडल सभी जीवित प्राणियों का घर है।
0: वर्षा, हम ईश्वर प्रस्थ दुनिया में रहते हैं, इसमें से कुछ तत्व प्राकृतिक और कुछ हम मानवों द्वारा निर्मित है। हमारे आसपास की चीजें ही मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं।
1: लेकिन पर्यावरण के बिगड़ने के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। पर्यावरण का विनाश एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान हम मनुष्यों को ही करना चाहिए।
0: जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और पेड़ पौधे, ये सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। हम मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालते हैं।
0: अब देखिए ना वर्षा जी, हमारी अच्छी बुरी आदतें जैसे पेड़ पौधों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना, ये सब पर्यावरण को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, हमारी गलत आदतें जैसे पानी दूषित करना या जबरन पानी को बहाना, वृक्षों की जरूरत से ज्यादा कटाई करना, ये सारी बातें पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।
0: हाँ वर्षा जी, अब तो वो समय आ गया है कि हम अपनी इन बुरी और गलत आदतों के कारण पर्यावरण को प्रभावित करने का नतीजा प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर भुगत रहे हैं।
1: हमारे पर्यावरण में जैविक, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
0: सामान्य शब्दों में अगर इसको समझें तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों और प्रक्रियाओं तथा घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है।
1: पर्यावरण तो हमारे चारों ओर रहता है और हमारे जीवन की हर एक घटना इस पर निर्भर होती है। यानी किसी भी जीव जंतु के बीच ऐसा संबंध होता है जो पर्यावरण आश्रित होता है।
0: हाँ, पर अब मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण हम कह सकते हैं कि इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है दीपक। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति अब नष्ट होती जा रही है। हर जगह घने जंगलों को काट कर समाप्त किया जा रहा है।
0: हाँ, जबकि हमारे कवियों और लेखकों ने इन्हीं प्राकृतिक मनोहारी रूपों को अपने शब्दों में बांधा है जिसे हम पढ़ते हैं, परंतु जो खूबसूरती देखकर उन्होंने लिखा है वो अब देखने को नहीं मिलती है।
1: आपका इशारा किस ओर है दीपक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद सतपुड़ा के घने जंगल।
0: शायद नहीं, आपने बिल्कुल सही समझा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में इन प्राचीन जंगलों का कितना अच्छा वर्णन मिलता है। कितने घने होंगे ये जंगल जब उन्होंने इन्हें देखकर इस कविता की रचना की होगी।
1: हाँ, कविता की एक पंक्ति में उस रूप का ऐसा सुंदर विवरण है और ऐसा सुंदर चित्रण है कि जब उसे पढ़े तो हमें दिखाई भी देने लगता है।
0: लेकिन वर्षा जी, बड़े अफसोस की बात है, आज वृक्षों की कटाई और बड़ी इमारतों को बनाने और नए नए उद्योगों को शुरू करने के कारण प्राकृतिक पर्यावरण बुरी तरह से नष्ट हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा, घने वृक्षों को काट कर नष्ट करना, पर्यावरण और प्रकृति से खिलवाड़ कर हम मनुष्यों ने अपनी ही आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा कर लिया है।
0: कभी कभी लगता है वर्षा जी, प्रकृति से हमने बस लिया ही है, हमने कुछ भी नहीं दिया। अनगिनत वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलता धुआं, दूषित पानी और मशीनों की आवाजें, ये सबके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, इसी कारण हमें नित नई और ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका इलाज हमारे चिकित्सा जगत की समझ से बाहर है।
0: और इस कड़ी में हम वैश्विक स्तर पर फैली बीमारी कोविड-19 की भयावहता को देख चुके हैं, जिसके कारण हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश से लाखों लोगों की जानें गईं।
1: इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को बदले, उसमें परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। इस बात की आवश्यकता अब हमारे लिए पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि हम अब इस ओर पहल का कदम नहीं बढ़ाएं बल्कि दौड़ पड़े।
0: बिल्कुल ठीक कहा वर्षा जी, क्योंकि यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं और मानव जाति और अन्य प्राणियों की रक्षा करना चाहते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही होगा।
1: हम सभी ने सदा से पर्यावरण के सभी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया है। तकनीकी आपदा के कारण भी हम दिन प्रतिदिन प्राकृतिक तौर तरीकों को छोड़ नहीं रहे बल्कि उसकी महत्ता को नजरअंदाज कर रहे हैं।
0: हाँ, जबकि पृथ्वी पर रह रहे हर प्राणी की जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रकृति द्वारा दी गई उन अनमोल वस्तुओं के महत्व को समझे और इसे संरक्षित रखे, क्योंकि हमारे आसपास अपने जीवन को बचाने के लिए इसका कोई सानी नहीं है।
1: तभी तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी पर्यावरण को बनाए रखने के प्रति गंभीर थे और इसी वजह से उन्होंने प्रकृति को माता के रूप में माना और ये भी जाना कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है।
0: ये बड़ी सुंदर बात कही आपने। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सफाई को महत्व दिया और ये माना कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है और प्रदूषण जीवन के लिए खतरा।
1: जी हाँ, उन्होंने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ों की आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग की बात पर बल दिया और पानी का सीमित उपयोग किया उन्होंने सदा अपने शिष्यों को भी पर्यावरण के महत्व और संरक्षण की शिक्षा दी।
0: जी हाँ, अपनी शिक्षा में उन्होंने प्रकृति के साथ रहने और उसके नियमों और सिद्धांतों को अपनाया। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को देवी देवता के रूप में देखा, उसकी पूजा की और कहा कि इसी में हमारा सुख, शांति और समृद्धि है।
1: जी हाँ, उनकी कही गई बातें और उनकी दी गई शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमें अपने उन पूर्वजों की शिक्षा को अपनाकर पर्यावरण को बचाना ही है।
0: बिल्कुल सही बात कही वर्षा। इसके लिए हमें आत्मनियंत्रण की भी जरूरत है। हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं कि हम भूलते जा रहे हैं कि इन्हें पूरा करने के कारण हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी कितना कुछ सह रही है।
1: अब देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में ही कितना अंतर आ गया है। ज्यादातर घरों में देर से सोना और प्रातः काल की बेला गुजरने के बाद उठना और फिर अलसाते हुए अपने कामों को करने का प्रयास करना,
0: जबकि प्रातः काल और सूर्यास्त से पहले का समय प्रकृति के सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण समय में से होता है। इस समय सारा वातावरण साफ, शांत और ताजा होता है।
1: सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को मोह लेती हैं और कहते हैं ना, प्रातः काल सूर्योदय के समय वातावरण में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे मन को और शरीर को तरोताजा कर देती है।
0: और हमारे शरीर को मिलने वाली ये ताजगी हमें पूरे दिन स्फूर्ति से भर देती है, ऊर्जावान बनाए रखती है। तभी तो कहते हैं कि सुबह की सैर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है।
1: बिगड़ता पर्यावरण वर्तमान समय में विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। आवश्यकता है कि हम सब मिलकर और व्यक्तिगत रूप से भी इसको बचाने में जुटें और सभी को प्रेरित करें।
0: प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करें, प्रकृति के महत्व को समझें। ये सभी जीवों का आश्रय स्थल है, इसलिए मानव जीवन के लिए ये समझना बड़ा आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण, जहां हम सब साथ रहते हैं और इस पर केवल हम मनुष्यों का ही नहीं बल्कि हर जीव, जंतु और वनस्पति का अधिकार है, इसे सुरक्षित और साफ सुथरा बनाए रखें।
1: ये प्रकृति का अनमोल उपहार कई चीजों से मिलकर बना है, जैसे वायुमंडल या हवा, जलमंडल या पानी, स्थलमंडल या चट्टाने और मृदा यानी मिट्टी, जैवमंडल या जीव जंतु और सौर ऊर्जा।
0: इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर्यावरण को तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण। इन सभी पर हम अपने अगले कार्यक्रमों में विस्तार से चर्चा करेंगे।
1: तो दो पंक्तियों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। आइए प्रण करें।
0: धरती डगमग डोलती आते नित भूकंप,
1: करो प्रकृति दोहन नहीं मिट जाए हड़कंप।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। अब वक्त है इजाजत लेने का।
1: इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी। मैं था आपके साथ दीपक निमा।
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों बाद।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

पुर्तगाली और सेंट थॉमस ईसाई। सन 1498 में जब वास्को दी गामा का छोटा बेड़ा केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर आगे बढ़ा तो वे एक जुनूनी विजन से प्रेरित थे, ईसाई और मसालों की खोज। सदियों से यूरोप में पूर्व में एक खोए हुए ईसाई साम्राज्य की किंवदंतियां प्रचलित थीं, जिस पर पौराणिक प्रेस्टर जॉन का शासन था। जब पुर्तगाली मालाबार तट पर पहुंचे तो वे इस उम्मीद में इतने अंधे थे कि वे अपने सामने मौजूद सभ्यता की वास्तविकता को देख ही नहीं पाए। इन प्राचीन विश्वासियों के साथ पहली मुलाकात भारत में नहीं बल्कि अप्रैल सन 1498 में पूर्वी अफ्रीकी तट पर मालिंदी में हुई थी। वहां पुर्तगालियों की मुलाकात क्रैंगानोर के चार जहाजों से हुई। उन पर ऐसे लोग सवार थे जिन्होंने खुद को मसीह का अनुयायी सेंट थॉमस ईसाई बताया। ये समुदाय अपनी जड़ों को प्रेरित थॉमस से जोड़ता था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पहली शताब्दी में भारत आए थे और यहीं बस गए, और संभवतः यहीं उनकी हत्या भी कर दी गई। हालांकि पुर्तगालियों का शुरुआती अवलोकन घोर अज्ञानता से भरा था, जब वे कालीकट पहुंचे तो इतिहासकार अल्वारो वेल्हो को पक्का विश्वास था कि उन्होंने एक ईसाई शहर खोज लिया है। मूरों यानी मुसलमानों के खिलाफ एक ईसाई सहयोगी खोजने की बेताबी में पुर्तगालियों ने हिंदू मंदिरों को चर्च और स्थानीय धार्मिक रीति रिवाजों को ईसाई अनुष्ठान समझ लिया। जैसे जैसे पुर्तगालियों ने एस्टादो द इंडिया की स्थापना की, उन्हें समझ में आया कि ये समुदाय उनकी कल्पना से अधिक जटिल था। उन्होंने क्रैंगानोर और कोल्लम जैसे केंद्रों की पहचान की जो सेंट थॉमस ईसाइयों के गढ़ थे। ये समुदाय सदियों से अपने हिंदू और मुस्लिम पड़ोसियों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहते थे। उनकी आस्था यूरोप के लैटिन संस्कार ईसाई धर्म से मौलिक रूप से भिन्न थी। इस खोज का दिलचस्प विरोधाभास तब सामने आया जब धार्मिक टकराव शुरू हुआ। पुर्तगाली इन खोए हुए ईसाइयों को खोजने के लिए महासागर पार कर आए थे, लेकिन उन्हें पाने के बाद उन्होंने उनकी आस्था को मान्य और धर्म सम्मत मानने से इनकार कर दिया। पुर्तगालियों की नजर में सेंट थॉमस ईसाई विधर्मी पूर्वी संस्कारों से दूषित थे। 16वीं शताब्दी के मध्य में जेसुइट्स के आगमन और काउंटर रिफॉर्मेशन की उग्र भावना के साथ पुर्तगाली दृष्टिकोण जिज्ञासा से बदलकर सुधार में बदल गया। सन 1560 तक इक्विजिशन को गोवा लाया गया और पुर्तगालियों ने सेंट थॉमस ईसाइयों को जबरदस्ती रोम के अधिकार में लाने का प्रयास किया। वो प्राचीन समुदाय जो कभी पुर्तगालियों की यात्रा का औचित्य था, अब उनके आध्यात्मिक अनुशासन का लक्ष्य बन गया। ये कहानी एक डरावना उदाहरण है कि कैसे साम्राज्यवादी आंखें वही ढूंढती हैं जो वे देखना चाहती हैं, और फिर उसे केवल इसलिए नष्ट कर देती हैं क्योंकि वो उनके घर से लाई गई छवि से मेल नहीं खाता।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम योग संवाद।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, सृष्टि की कथा किसी राजमहल से नहीं बल्कि उस महामौन से आरंभ होती है जहां न शब्द थे न आकार था, वहां केवल चेतना का अनंत प्रकाश था। योग वासिष्ठ के साथ आज हम उसी आदिकालीन रहस्य के द्वार पर चल रहे हैं जहां वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी और अपने जन्म का वर्णन करते हुए सृष्टि के उस सूक्ष्म रहस्य पर प्रकाश डालते हैं जहां से ये दृश्य जगत अपनी यात्रा आरंभ करता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और वशिष्ठ ज्ञान की वो निर्मल धारा जो युगों से मनुष्य को उसके भीतर के सत्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाती आई है। तो आइए आज शब्दों से आगे और कल्पना से भी परे उस आदि स्मृति में उतरें जहां जन्म केवल देह का प्रकट होना नहीं है बल्कि चेतना के एक नए अध्याय का उदय है। तो योग संवाद कार्यक्रम में आज सुनते हैं वशिष्ठ जी की वाणी से ब्रह्मा जी और अपने जन्म की अद्भुत कथा। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग, अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: योग वासिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं
1: जी,
0: और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी और अपने जन्म के विषय में क्या उन्होंने कहा था। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने मोक्ष कथा का वर्णन किया था, ऐसा ये ग्रंथ कह रहा है। वो मोक्ष कथा क्या है?
1: देखिए, मोक्ष कथा बुद्धि को शांत करने वाली कथा है। परम शांति का अनुभव बिना मोक्ष के नहीं होता। मोक्ष को लेकर के समाज में जो मान्यता है, वो सोचते हैं कि आदमी जब शरीर छोड़ देता है तो मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा नहीं है। देहात्म भाव से निवृत्ति भी मोक्ष की कथा हो सकती है। अगर देखें, इसको कबीर साहब ने एक बड़े सुंदर पंक्ति में कहा है कि हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हेराए, और बूंद समानी समुद्र में सो कित हेरी जाए। तो बूंद का अस्तित्व ही समुद्र से अलग होने की वजह से है।
0: जी, जी।
1: तो जैसे ही हम अपने को ब्रह्म से अलग या उस परम चैतन्य सत्ता से अलग, सच्चिदानंद घन परमेश्वर से अलग देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम एक परिच्छिन्न इकाई हैं, हमारा कोई अलग अस्तित्व है। लेकिन अगर विचार करके देखें तो इस सृष्टि में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब परस्पर तंत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखें सृष्टि की व्यवस्था, तो कोई भी यहाँ प्राणी ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ उसके होने से चल रहा है। परस्पर आश्रित सभी हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो मोक्ष है वो मोक्ष की कथा, ज्ञान की कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस मोक्ष कथा का वर्णन किया था। यह संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली और बुद्धि को परम शांत प्रदान करती है। सारे विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्ष कथा को सुनकर राम, तुम भी उस दुख रहित सच्चिदानंदमय परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहां पहुंच जाने पर पुनः विनाश का कोई भय नहीं रह जाता। अब यहां पर देखिए कि जो व्यक्ति को भय है, वो भय किस बात का है? कि किसी चीज के नष्ट होने का। जैसे जो आदमी जन्म लिया है वो मृत्यु से भयभीत है। लेकिन क्या मृत्यु से भयभीत होना ज्ञान की बात कही जा सकती है? जबकि आप देखें तो हर व्यक्ति मृत्यु के करीब और मृत्यु उस व्यक्ति के करीब रोज पल पल आ रही है। आप मृत्यु से दूर नहीं जा रहे हैं। किसी ने कहा भी है कि जीवन के सफर का मंजिल मृत्यु है, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। हर पल आपके साथ, आपके करीब आने की कोशिश में वो है और आप उसके करीब जाने के लिए विवश हैं। तो ऐसे में मृत्यु से भयभीत होने की तो कोई वजह ही नहीं है। तो यहां पर बल्कि उस मृत्यु को याद करते हुए ऐसा हम क्या कर जाएं जिसकी वजह से हम अमरत्व को प्राप्त हो। शरीर से कोई अमरता को प्राप्त नहीं होता। यहाँ भगवान भी अगर अवतार लेते हैं तो एक काल सीमा में उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है। लेकिन उनकी भगवत्ता की जो कथा आज हम तक प्रचलित है, उसका एकमात्र कारण उनके जीवन में किन किन परिस्थितियों में उन्होंने कौन कौन सी लीला की। यहाँ लीला में शब्द इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग लीला नहीं कर पाते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी किसी उपाधि से ग्रस्त होते हैं तो उसको हम मान लेते हैं कि यही हम हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ी अविद्या है। शायद शेक्सपियर ने कहा था इस बात को कि ये जो जगत है ये एक रंगशाला है जहां हर व्यक्ति विभिन्न विभिन्न पात्रों में अपनी भूमिकाएं अदा कर रहा है, लेकिन जब एक अदाकार उस भूमिका को ही अपना जीवन मान लेता है तब तो फिर वो किसी और भूमिका के अदा करने में सक्षम ही नहीं रह पाता, उसकी योग्यता ही समाप्त हो जाती है अभिनय की। तो ये देखें तो नाट्यशाला है, यहाँ एक ही पात्र को विभिन्न तरह के रोल मिलते हैं और उस रोल को वो ऐसे प्ले करता है जैसे वो रोल उसके जीवन का सत्य हो, पर उस रोल को प्ले करते वक्त वह हमेशा जानता है कि वो अभिनय कर रहा है।
0: जी,
1: इस भाव से अगर हम जीवन जिए
0: हाँ।
1: तो हम यहाँ रहते ही मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। संसार की कोई उपाधि हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगी। उपाधियां बंधन का कारण तब बनती हैं जब जीव अज्ञानता से ग्रसित होकर उस उपाधि को ही मान लेता है कि ये मैं हूं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग विभिन्न उपाधियों के द्वारा अपने रिश्तों का निर्वाह करते हैं, जब हम छोटे होते तो किसी के बच्चे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे रिश्ते की समझ हमें हो जाती है और बड़े होते हैं तो हमारे बच्चे होते हैं। तो क्या हमारे बच्चे होने के बाद जो पिता और माँ का दायित्व या उपाधि हमारे ऊपर आरोपित हुआ है, इन उपाधियों के पहले हम नहीं थे, लेकिन
0: तब
1: भी हम थे
0: जी,
1: लेकिन तब इन उपाधियों का जो प्रभाव था ये प्रभाव नहीं था, लेकिन ये उपाधियां आने के बाद तो हमने ये मान लिया कि हम यहाँ वही उपाधि हैं। जबकि हम लोग हमेशा जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा कहते हैं, ये सिर्फ बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ जो जगत पिता या जगत माता की संकल्पना है वो ब्रह्म की संकल्पना है, उन्हीं के नाते हमें भी वो शक्ति आई है, वही चेतना उसका आधार है। तो इसलिए जो मोक्ष कथा है ये मोक्ष कथा जो है दुखों का निर्मूल करने वाली है, और साथ ही साथ यहां पहुंच जाने के बाद फिर विनाश का भय नहीं होता, फिर आपको इस बात का भय ही नहीं होता कि कोई चीज नष्ट होगी तो हो, क्योंकि नष्ट तो होना ही है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो शरीर के साथ उसका धर्म है कि जन्म हुई है तो मृत्यु होगा, बुढ़ापा आएगी, व्याधियां भी होंगी, मन आपके पास है तो सुख दुख दोनों अनुभव होगा, ऐसा तो है नहीं कि सुख ही सुख का अनुभव हो, अगर सुख ही सुख हो और दुख ना हो तो आप दुख के संदर्भ से ही सुख को भी जान पाते हैं। अगर जीवन में दुख ना हो एक व्यक्ति को तो फिर वो सुख भी नहीं कभी अनुभव करेगा।
0: जी, तो आपने दुख के निर्मूल करने की बात कही है अभी बीच में।
1: जी,
0: तो मैं जानना चाहती हूँ कि सृष्टि के प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने किन साधनों का निर्माण किया?
1: आपने सुंदर सवाल किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्राणियों के कष्ट का हरण करने के लिए जो साधन शुरू में उन्होंने देखा तो तप, धर्म, दान, सत्य और तीर्थ सेवन का उन्होंने वर्णन किया।
0: अच्छा।
1: कि इसके द्वारा प्राणी यहाँ अपने दुख का अपहरण कर सकते हैं, लेकिन विचार करने पर उनको ऐसा लगा कि यही सत्य नहीं है, क्योंकि तप करने से आपको धर्म का पता चलता है। कहा भी जाता है कि धन का सबसे अगर उच्चतम भोग है तो दान है, मध्यम भोग है उसका अपने आवश्यकताओं को पूरा करना या अपने लिए भोग में ले आना, और सत्य तो हर व्यक्ति खोज रहा है कि जीवन का सत्य क्या है, लेकिन सत्य खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य को खोजने के लिए कबीर साहब वही कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराए। जब तक सत्य को खोजने वाला नहीं खोएगा तब तक सत्य आपके सामने प्रकट नहीं होगा, और अगर प्रकट हो भी जाए तो आप देखिए तो सत्य के प्राप्तकर्ता आप हो गए, यानी सत्य से बड़ी स्थिति आपकी हो गई, क्योंकि सत्य को जानने वाला सत्य से ऊपर हो गया। तो ऐसे में तो अभी तक आपने असत्य के साथ इतना अहंकार संकलित किया है तो सत्य को जान लेने का अहंकार कितना खतरनाक होगा, आप सोचिए कि वो व्यक्ति तो किसी से अपने अहंकार की मुक्ति कर ही नहीं पाएगा। तो इस नाते कहा गया कि इसीलिए अपने यहां शास्त्रों में हरि शब्द आया है। हरि का मतलब होता है जो हरण कर ले। अब हरण का मतलब आप सोचें क्या है, तो कहते हैं चित्त का हरण। भगवान कृष्ण का एक नाम चित्तचोर भी है, क्योंकि चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होंगी। अब ऐसे में व्यक्ति जीवन भर अगर चित्त वृत्तियों को ही जीता रहा तो चित्त वृत्तियों के निरोध के बाद प्राप्त होने वाले योग का अनुभव कब करेगा, कैसे उसको अपने स्वरूप की अनुभूति होगी। जो दृष्टा है अगर दृश्य ही के साथ बना रहा तो न उसके दृष्टा की उपाधि से उसे मुक्ति मिलेगी और न दृश्य को देखने का सामर्थ्य उसमें जाएगा। तो ऐसे में आप देखें तो ये कहा गया है कि हरि मतलब जो हरण कर ले। फिर एक कवि की बात मुझे याद आ रही है, उनका नाम तो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए, और जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाए। क्योंकि मैं के रहते हरण कैसे होगा, मैं तो संकलन करता है, चित्त वृत्तियों के साथ खड़ा होता है, तो मैं का जब हरण होता है, किसी ने कहा है कि मैं भी एक विचार है, मैं से ही समस्त विचार उत्पन्न होते हैं, तो स्वयं विचार विचारों को उत्पन्न कर रहा है, इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है, लेकिन मैं के साथ अगर आप निर्विचार होने की कल्पना कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं निर्विचारता को प्राप्त हो जाऊं, ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं में ही एक विचार है। मैं के विसर्जित हुए बिना प्रेम का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि प्रेम की पहली शर्त यही है कि वहां मैं नहीं होता, क्योंकि मैं तो शर्तों के साथ खड़ा होगा, और प्रेम शर्त विहीन प्रवाह है, जहां पर कोई शर्त ना हो तब जाके प्रेम की घटना घटती है।
0: तो आप ये बताएं कि सांसारिक दुखों का समूल नाश कैसे हो?
1: जब ब्रह्मा जी ने ये जो साधन बताए, तप धर्म दान सत्य तीर्थ सेवन, तो उन्हें भी लगा कि इससे समूल नाश नहीं होगा, तो उन्होंने और गहरे में विचार किया, और पुनः विचार करने के बाद जो उन्हें लगा कि सांसारिक दुख का समूल विनाश इन साधनों से तो नहीं हो सकता, बल्कि परम निर्वाण रूप मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। अब यहां पर एक सुंदर बात यहां उद्घाटित किया ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कि देखो, मोक्ष ज्ञान के बिना संभव नहीं है। कोई सोचे कि हम संसार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति को भी संसार का विषय बना करके मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे, ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं होती। और वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान है अहंकार के विसर्जन का ज्ञान। आप देखें, जब किसी व्यक्ति वस्तु या विषय का ज्ञान आपको होता है तो तीन की स्थिति बनती है, एक तो गेय, मतलब जिस विषय को आपने जाना, उसका फिर ज्ञाता जिसने जाना, और इन दोनों के योग से जो प्राप्त हुआ उसे ज्ञान कहा गया। इसको हम लोग कहते हैं त्रिपुटी अध्यात्म की भाषा में। तो जब तक इस त्रिपुटी से आप मुक्त नहीं होंगे, यानी ज्ञाता, गेय और ज्ञान की त्रिपुटी जब तक बनी हुई है, तब तक मैं बना हुआ है। क्योंकि इसीलिए संसार में जब हम किसी चीज को जानते हैं तो कहते हैं मैं ये जानता हूं या मैं ये नहीं जानता हूं, क्योंकि ये त्रिपुटी से प्राप्त ज्ञान है। और इन त्रिपुटी से मुक्त होने के बाद जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान मोक्ष प्रदान करता है, और उसी को मोक्ष कथा कहा ब्रह्मा जी ने, कि यही मोक्ष कथा जो है वो व्यक्ति की बुद्धि को परम शांत करने वाली है और संसार के समस्त दुखों का समूल नाश करने वाली है।
0: शशिकांत जी, हमने आज चर्चा का विषय ही रखा वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी और उनके जन्म का वर्णन। तो सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि ब्रह्मा जी के जन्म की क्या कथा है।
1: श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक, सबका आश्रय स्थान, नित्य चेतन, अविनाशी तथा समस्त प्राणियों में प्रकाशक रूप से वर्तमान और अनंत विलासों का एकमात्र अधिष्ठान है। प्रकृति की साम्यावस्था और विषमावस्था में भी वह निर्विकार रूप से स्थित रहता है। उसी परमात्मा में विष्णु का प्राकट्य हुआ, यानी विष्णु का प्राकट्य परमात्मा में हुआ। यहां भी हमें समझना होगा कि विष्णु पालनहार हैं, यानी सृष्टि में पालन की अगर क्षमता नहीं है तो वहां सृष्टि नहीं होगी। तो सबसे पहले सृष्टि में पालने की शक्ति आती है, यानी विष्णु आते हैं, और विष्णु जब आते हैं तो विष्णु के प्रकट्य के बाद ठीक उसी तरह से जैसे प्रवहनशील जल से परिपूर्ण सागर से तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन विष्णु के हृदय कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद तथा वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं। अब यहां पर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य दिखाया गया है, और जब ब्रह्मा प्रकट हुए, सृष्टि हुई, तो सृष्टि में वेद के जो नियम हैं या वेद में जो तीन गुणों के सिद्धांतों का जो वर्णन है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि त्रय गुण या विषया वेदा निस्त्रय गुण या भवार्जुन, कि यानी जो वेद में है वो तीन गुणों की बात होती है, तो ऐसे में वेद और वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं, यानी प्रजापिता जो है, ये जो सृष्टि का जो नियम है उन समस्त नियमों के ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी, और उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदाय से संयुक्त होकर अनेक विध विकल्पों की सृष्टि करने वाले मन की भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि रचना की। ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की है संकल्पों से, लेकिन संकल्पों की पुष्टि बिना नियमों के नहीं होती। इसीलिए हम श्रोताओं को कहेंगे कि जब भी किसी संकल्प की पूर्ति करना आप चाहते हैं तो शास्त्र विहित जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का अनुपालन करके आप उन अपने संकल्प की सिद्धि कर सकते हैं।
0: बहुत सुंदर बात। अब मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि वशिष्ठ जी का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ।
1: वशिष्ठ जी का जन्म जब हुआ तो वशिष्ठ जी ने अपने जन्म की कथा को राम जी को ऐसे सुनाया, कहा कि कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे सामने बैठे मुझको प्रकट किया, उत्पन्न किया, और निष्पाप राम जैसे एक तरंग से शीघ्र ही दूसरी तरंग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी अनिर्वचनीय माया से उत्पन्न हुआ और फिर तुरंत ही अपने उन पितृदेव के समीप जा पहुंचा, जिनके हाथ में कमंडलू और रुद्राक्ष की माला शोभा पा रहे थे। मैंने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया। उस समय मैं भी कमंडलू और रुद्राक्ष की माला से संयुक्त था। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी से जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ तो उनका स्वरूप बिल्कुल ब्रह्मा जी की तरह से है, मतलब वो भी कमंडलू और रुद्राक्ष की माला लेके हैं और ब्रह्मा जी जैसा ज्ञान उनके पास भी है। तो कहते हैं कि बेटा यहाँ आओ, ऐसा मेरे पिता ने मुझसे कहा। मुझसे यूं कहकर उन्होंने अपने आसन भूत कमल की ओर मुझे भी बैठने को कहा और हाथ पकड़कर बिठा लिया। फिर मृगचर्म से ही मेरा परिधान था। ऐसे मुझसे मृगचर्मधारी मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, हम लोग देखते हैं चंद्रमा को ग्रहण लगता है, चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार वानर के समान चंचल अज्ञान दो घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे।
0: अच्छा,
1: ऐसा ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कहा।
0: क्यों कहा ऐसा?
1: हाँ, ये सुंदर आपका सवाल है। अब ये देखिए इसलिए कहा, इस पर विचार करें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि समूल दुख का नाश ज्ञान से होगा, और चूंकि ब्रह्मा जी से प्रकट जो वशिष्ठ जी हैं इनमें भी ब्रह्मा जी जैसा ही ज्ञान है, तो ज्ञान से ज्ञान की बात नहीं हो सकती।
0: हाँ।
1: वहां तो मौन है ना फिर।
0: हाँ।
1: है ना, आप जो कुछ कहेंगे वो सब मैं जानता हूँ। हमने भागवत की कथा में देखा भी है कि जब सुखदेव जी ने ज्ञान को अपने स्वयं से प्रकट किया तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि जो बात आप मुझे बता रहे हैं व्यास जी को, यही तो मैं जानता हूँ और वही बात आप मुझसे कह रहे हैं, वही बात शास्त्रों में भी है, लेकिन उस बात से मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो फिर उन्होंने उनको जनक जी के पास भेजा। वहां पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज्ञान स्वयं से अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक आप अज्ञान से ग्रसित ना हो। देखिए एक बात है कि कोई भी दवा बीमार के लिए है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए दवा क्या कोई प्रयोजन नहीं है? ठीक वैसे ही जो ज्ञान से संपन्न है उसके लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता। इसीलिए इस ग्रंथ के बारे में कहा भी गया है कि यह ग्रंथ उन लोगों के लिए है जो न अज्ञानी हो और न ही पूर्ण ज्ञानी हो, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी है तो ये सारा ज्ञान जो इसमें दिया गया उनके पास है
0: जी, जी, जी।
1: और अज्ञानी है तो फिर इस ज्ञान का कोई उनके लिए प्रयोजन नहीं रह जाता।
0: ऐसी बात है कि अंधकार के अस्तित्व के बगैर प्रकाश के अस्तित्व को आप कैसे जान सकेंगे।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रकाश की आवश्यकता ही महसूस तब होती है जब अंधकार हो। प्रकाश में रहने वाला प्रकाश के मूल्य को जानता भी नहीं है,
0: जब
1: ढूंढेगा। जैसे संसार में अगर दुख ना हो तो सुख की खोज खत्म हो जाए। सुख की खोज इस बात का प्रमाण देती है कि सुख खोजने वाला दुखी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। और लगता उसे है कि वो सुख खोज, यही तो माया है। जी, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसे ही यह ज्ञान तुम्हारे में प्रविष्ट हो जाए, ऐसी बात ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी के लिए कहा।
0: तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, इसको भी थोड़ा सा और विस्तार दीजिए आप।
1: देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए दुख का अनुभव होना जरूरी है। दुख बिना अज्ञान के नहीं होगा, ज्ञानी को दुख नहीं होता। आप देखिए, इस पर मैं एक प्रसंग मुझे आ रहा है याद, भगवान कृष्ण के गोकुल में रहने के समय का, कि जब उद्धव जी जाते हैं, उद्धव गीता में ये प्रसंग आता है कि भगवान जब अपने ग्वाल बालों को या वहां के प्रेमियों को याद करते हैं, गोपियों को, तो कहते हैं उद्धव जी की क्या याद करते हो, क्या है उन लोगों में तुम उन्हें याद कर रहे हो, यहाँ बैठ करके मथुरा में नगर में आ गए हो तुम और उन ग्रामीण लोगों को याद कर रहे हो
0: जी।
1: तो कहते हैं उद्धव, यही तो बात है कि मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा है, मुझे लगता है कि वो मुझे याद करते हैं। अगर जाकर के तुम ये ज्ञान उन्हें दे देते तो शायद वो मुझे याद नहीं करते और वो याद नहीं करते तो मैं भी उनको याद नहीं करता। तो उद्धव जी तो बहुत फूले नहीं समाए, कहीं तो अच्छा हो सका, ठीक है मैं जाता हूँ, उनको ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। और जब जाते हैं और जब राधा रानी के पास जाते हैं तो ऐसा प्रसंग आता है कि जब वो ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयास करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान में राधा रानी जी तो अधिष्ठात्री हैं, वो कहती हैं कि ब्रह्म तो सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसी को तो जानना है, तो आप कृष्ण के आखिर बहकावे में या कृष्ण के प्रेम में क्यों इतनी बेहवल हैं, जबकि वो कृष्ण तत्व तो आप में ही है। तो कहते हैं जब आपको ये पता है कि ब्रह्म मेरे में है तो ब्रह्म को ब्रह्म के उपदेश की क्या जरूरत है। तो ब्रह्म को ब्रह्म के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, जो ज्ञानी है उसे क्या ज्ञान दोगे, है ना। और जब ज्ञानी है तो उसे दुख नहीं होगा, और दुख हो रहा है इसका मतलब क्या ज्ञानी है। तो बिना अज्ञान के, तो जब ब्रह्मा जी ने इनके अंदर जब अज्ञान को प्रवेश कराया तो कहते हैं, ये खुद ही कहे हैं कि यूं पिता द्वारा अभिशप्त होने पर उनके संकल्प के अनंतर अपने संपूर्ण शुद्ध स्वरूप को मैं भूल गया। जैसे अज्ञान का प्रवेश हुआ, ये खुद वो कन्फेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी परम ज्ञान में था लेकिन जैसे ही पिता ने ये कहा कि जैसे चंद्रमा में कलंक आता है ऐसे ही अज्ञान तुम में प्रवेश करे, तो ऐसा कहते ही उनके मैं अपने स्वरूप को भूल गया। और मेरी बुद्धि तत्व ज्ञान से रहित हो गई और मैं दुख शोक संतप्त से दीनता को प्राप्त हो गया।
0: अच्छा,
1: ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं
0: जी,
1: कि
0: जी,
1: दीनता
0: जी।
1: को प्राप्त हो गया। उस समय मैं हाय बड़े कष्ट की बात हुई, यह संसार नामक दोष मुझमें कहां प्राप्त हो गया। ये वशिष्ठ जी के अंदर अज्ञान के प्रवेश करते ही ये भाव उत्पन्न हुआ, ये संसार नामक दोष। देखिए चूंकि ज्ञानी है यहाँ तो हम लोग को संसार दोष लगता ही नहीं है, हम तो सारे दोष को दूर करने के लिए ही संसार का चिंतन करते हैं।
0: जी जी,
1: तो संसार के दुखों को मिटाने के लिए हम जिन साधनों की कल्पना या कामना हम भगवान से करते हैं वो भी संसार के ही साधन होते हैं। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि जिन साधनों को प्राप्त करके आज तक हम परम साध्य सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर सके, तो आगे जिन साधनों से हम सुख और शांति की कामना करके बैठे हैं क्या वो साधन सुख और शांति को ला पाएंगे? क्योंकि इसके पहले के साधनों को हम चाह करके ही तो इकट्ठा किए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम शांत तो नहीं हुए। किसी शायर ने कहा भी है, ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो जैसे ही साधन मिलेगा, भले ही वो सोना क्यों ना हो, वो मिट्टी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ तो सोने को भी मिट्टी बनाना हमें आता है। सोना तभी तक सोना है जब तक हमें प्राप्त नहीं है, प्राप्त हो जाने के बाद हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे जीवन की कहानी है और यही कहानी हमें हमेशा अधूरा बनाए रहता है, रखती है, और हमें लगता है कि हमारे जीवन की कहानी अधूरी है। जबकि सच ये है कि हम पूर्ण होना जानते ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण होना ज्ञान से ओम पूर्ण मदः पूर्णात् पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये परम ज्ञान में इस अखी अनुभूति होती है, उस पूर्णता को हम जान पाते हैं। अज्ञान तो अपूर्णता का द्योतक है और वही दुखी करता है।
0: तो फिर ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को क्या आदेश दिया?
1: ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को आदेश दिया कि पुत्र, मैं प्रथमतः तुम्हें शाप द्वारा ज्ञानहीन करके पुनः समस्त अधिकारी जनों के ज्ञान की सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का पिपासु बनाया हूं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके अंदर ज्ञान की पिपासा पैदा की। हम लोगों के अंदर जो सामान्य जीव हैं वो ये सोचते हैं कि हमें संसार की पिपासा उनके अंदर बनी हुई है, वो संसार की पिपासा से संसार की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, जबकि संसार की पीड़ा ज्ञान की पिपासा से दूर होगी। क्योंकि संसार वास्तव में देखें तो अज्ञान के कारण खड़ा हुआ है, ज्ञान में तो सिर्फ ब्रह्म की सत्ता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले तुमको मैंने ऐसा कहा और उसके बाद अब तुम्हारा शाप शांत हो गया है और तुम्हें परमोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे तुम मेरी ही सदृश अद्वितीय आत्मस्वरूप हो गए हो। साधो, अब तुम प्राणियों पर अनुग्रह करके भूलोक में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में स्थित भारत में जाओ और वहां पर ये ज्ञान लोगों को दो।
0: जी,
1: तो इस तरह से उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि ये तुमको मैं कह रहा हूं कि तुम भूलोक में भारतवर्ष में जाओ जो जम्बू द्वीप में स्थित है, और वहां पर जो प्राणी अज्ञान से शोक संतप्त हैं उनके शोक को नष्ट करो, ये आदेश दिया।
0: अच्छा, ये बताएं कि वशिष्ठ जी मृत्यु लोक में कब तक रहे?
1: ये सुंदर आपने बात कही, वशिष्ठ जी मृत्यु लोक में तब तक रहे जब तक सृष्टि की परंपरा है। इसके संदर्भ में कहते हैं कि परोपकार निष्ठ पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, ब्रह्मा जी कहते हैं वशिष्ठ जी से, अतः वहां के लोगों को कर्मकांड परायण जो हैं लोग उन्हें कर्मकांड की क्रम से शिक्षा देना, और जो लोग विवेकशील विरक्त चित्त और महाबुद्धिमान हो उन्हें परमानंददायक ज्ञान का उपदेश करना, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहां पर एक चीज देखिए कि संसार में कर्मकांड भी पोषित है, लेकिन कर्मकांड से हम क्या प्राप्त करते हैं? हम अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, जिसका योग नहीं है उसके योग की बात करते हैं, और जो मिला हुआ है उसके क्षेम की बात करते हैं कि वो बना रहे। ये संसार में कर्मकांड के द्वारा इन्हीं की सिद्धि होती है। लेकिन जो विवेकशील लोग हैं उन्हें ये पता है कि संसार के किसी भी प्राप्तव्य से एक सतत जो सुख है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे में वो विवेकशील लोग विरक्त चित्त हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि यहाँ पर विषयों में अनुरक्त होने से चित्त को शांति नहीं मिलती बल्कि चित्त में अशांति बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे यज्ञ में हविष डालने के बाद आग और तेज होती है, ऐसे ही संसार में विषयों की प्राप्ति होने के बाद विषयों को पाने की कामना और तीव्र हो जाती है। ये लगभग हर सभी लोगों का अनुभव होगा, लेकिन फिर भी हम विषयों की आसक्ति को मिटाने के लिए अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जबकि कामना अपने आप में एक बहुत बड़ी वासना है। तो वो कहते हैं कि वो विरक्त चित्त हो गए हैं विवेकशील लोग, उनके लिए तुम्हें परमानंददायक ज्ञान का उपदेश करना है। ज्ञान का उपदेश उनके लिए है जिनको संसार से चित्त जिनकी विरक्त हो गई हो या जिनका वैराग्य सिद्ध हुआ हो। अन्यथा आप उन लोगों को ज्ञान का उपदेश देंगे जिन्हें संसार की कामना है, निश्चित ही वो ज्ञान उनके काम का विषय नहीं है। तो इस तरीके से वशिष्ठ जी ने संसार में जब तक सृष्टि परंपरा है तब तक रह करके यहाँ पर जिसको जिस तरह की आवश्यकता है उसकी उन्होंने आपूर्ति की।
0: अच्छा, ये बताएं कि अंतःकरण का रोग है क्या?
1: अंतःकरण का रोग अज्ञान है, क्योंकि अंतःकरण के अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर महान लोग कष्ट भोग रहे हैं, उनका उद्धार करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक यह सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक तुम्हें यहाँ रहना होगा, और वशिष्ठ जी कहते हैं कि तब तक मैं यहाँ रहूंगा भी। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया, उसी प्रकार उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तथा नारद आदि अन्यान्य ऋषियों को भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुम लोग भारतवर्ष में जाकर पवित्र कर्मकांड और ज्ञान कांड के उपदेश के द्वारा वहां के निवासियों को अंतःकरण के अज्ञान रूपी रोग से मुक्त करो, क्योंकि वो अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर कष्ट भोग रहे हैं, और उनका उद्धार जब भी होगा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी।
0: तो ऐसे ही उद्धार होता है ज्ञान की प्राप्ति से?
1: अज्ञान की प्राप्ति से ही उद्धार होता है, और ज्ञान की प्राप्ति कराना ही मोक्ष कथा है।
0: अच्छा,
1: मोक्ष कथा मतलब ये हुआ कि जहाँ आपका जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला बंधन समाप्त हो जाए, और अज्ञान के कारण ही मैं खड़ा होता है, अहंता ममता आती है, देहात्म भाव के साथ व्यक्ति बधा रहता है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको अपने परम चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप का बोध होता है, तो फिर वो जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है।
0: जी जी, तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम के आज के अंक में हमने चर्चा की वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी और अपने जन्म के वर्णन पर। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम योग संवाद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा आज का विशेष कार्यक्रम।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आप सभी को मनीषा
2: और विजयकांत का नमस्कार। श्रोताओं, भारत केवल विविधताओं और संस्कृतियों की धरती नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभाओं की जन्मभूमि भी रहा है। इस देश ने समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, ज्ञान, साहस और कर्मठता से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया।
1: भारत की प्रतिभा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रही। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य और दर्शन के माध्यम से विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से समाज के यथार्थ को आवाज दी और लता मंगेशकर ने अपनी स्वर साधना से भारतीय संगीत को विश्व भर में पहचान दिलाई।
2: और जब बात आधुनिक भारत की प्रतिभाओं की होती है तो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, खिलाड़ियों, कलाकारों और युवाओं की उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सफलता हो, ओलंपिक में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हो या विश्व मंच पर भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां, हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा अपनी चमक बिखेर रही है।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
2: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाए। क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वह खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: स्वागत है आपका ज्ञान, जिज्ञासा और खोज की उस दुनिया में जहां हर सवाल एक नई संभावना को जन्म देता है, जहां एक छोटा सा प्रयोग भविष्य की बड़ी खोज बन सकता है और जहां युवा मस्तिष्क अपनी सोच और प्रतिभा से दुनिया को चौंका सकते हैं।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति समर्पित है भारत के उन युवा वैज्ञानिक मस्तिष्कों को जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और परिणाम आया तो 5 के गले में सजा स्वर्ण पदक। यह उपलब्धि केवल 5 विद्यार्थियों की सफलता नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक सोच, हमारे शिक्षकों की मेहनत और हमारी युवा प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है और यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण भी है।
1: श्रोताओं, ये कहानी उस भारत की है जो सदियों से ज्ञान की धरती रहा है, जिसने दुनिया को शून्य का रहस्य समझाया है, जिसने विज्ञान, गणित और दर्शन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिस धरती पर आर्यभट्ट ने आकाश को समझने का प्रयास किया, जिस भारत ने सीवी रमन की खोज से प्रकाश की दुनिया में नई रोशनी पैदा की और आज उसी भारत की युवा प्रतिभा ने भौतिकी के विश्व मंच पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया है।
2: किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों में नहीं होती बल्कि उन युवा मस्तिष्कों में होती है जो ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में उस देश का भविष्य लिखते हैं। श्रोताओं, ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है।
1: 5 युवा, 5 प्रतिभाएं और 5 स्वर्ण पदक। जी हाँ श्रोताओं, आज भारत ऐसे ही 5 युवा मस्तिष्क पर गर्व कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के पांचों प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ पांच पदकों की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्रतिभा की, परिश्रम की, ज्ञान की और उस भारत की जिसकी युवा शक्ति भविष्य के नए अध्याय लिख रही है।
2: ये उन पांच युवा सितारों की कहानी है जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर अपने ज्ञान से रोशन किया भारत का नाम, भारत का मान और भारत का तिरंगा। आज विज्ञान पत्रिका में जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड, कितनी कठिन होती है इसकी परीक्षा, कैसे चुने जाते हैं भारत के ये युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी और आखिर कैसे भारत ने विज्ञान के इस विश्व मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खुलने जा रहा है विज्ञान की दुनिया का एक नया पन्ना।
1: आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है IPHO। इसकी स्थापना 1967 में पोलैंड के वार्सो में हुई थी। IPHO का आयोजन प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में किया जाता है, जिसमें पांच महाद्वीपों के 80 से अधिक देशों के प्रतिभाशाली युवा भौतिकी विज्ञानी भाग लेते हैं। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए भौतिकी विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता है। इसे आप भौतिकी का ओलंपिक भी कह सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता और प्रायोगिक कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखना है।
2: भौतिकी सिर्फ किताबों में लिखे सूत्रों का नाम नहीं है, यह उस जिज्ञासा का भी नाम है जो पूछती है यह दुनिया काम कैसे करती है, आकाश में तारे क्यों चमकते हैं, प्रकाश की गति कैसी है, पदार्थ के भीतर छिपे रहस्य क्या हैं। और जब इन सवालों की तलाश में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा विद्यार्थी एक मंच पर आते हैं तो भारत भी अपनी प्रतिभा के साथ वहां मौजूद होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के विश्व मंच पर भारत के पांच युवा विद्यार्थियों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। लेकिन श्रोताओं, यह उपलब्धि केवल 5 पदकों की कहानी नहीं है, यह उस वैज्ञानिक भारत की कहानी है जिसने वर्षों से अपने युवाओं में जिज्ञासा, तर्क और खोज की भावना को विकसित किया है।
1: ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO एक वैश्विक ओलंपियाड है जो प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। IPHO का उद्देश्य जटिल समस्या समाधान और प्रायोगिक मूल्यांकन के माध्यम से माध्यमिक छात्रों के भौतिक ज्ञान का आकलन करना है। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने और अपने ज्ञान का परीक्षण करने का शानदार अवसर मिलता है।
2: IPHO में भाग लेने के लिए छात्रों को पहले राष्ट्रीय स्तर की भौतिकी ओलंपियाड उत्तीर्ण करनी होती है। प्रत्येक राष्ट्रीय टीम में 5 छात्र होते हैं और प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया IPHO भौतिकी में शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करता है।
1: छात्रों का माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन छात्रों ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी कर ली है वो भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा शुरू न की हो। राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के लिए अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। IPHO का पाठ्यक्रम विशेष रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए तैयार किया गया है।
2: भौतिकी ओलंपियाड कार्यक्रम 5 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय मानक भौतिकी परीक्षा यानी NSEP। भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ IAPT द्वारा NSE परीक्षा आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय मानक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा कक्षा 12 के भौतिकी पाठ्यक्रम को कवर करती है। IPHO में भाग लेने के पात्र हो जाते हैं। अभिविन्यास सह चयन शिविर OCSA। भारतीय राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड से लगभग शीर्ष 35 छात्रों को अभिविन्यास सह चयन शिविर के लिए चुना जाता है। HBCSE छात्रों को उनकी अवधारणाओं, प्रायोगिक ज्ञान, समस्या समाधान और कौशल पर काम करने के लिए इस शिविर का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के लिए प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण शिविर छात्रों को भौतिकी की अवधारणाओं पर प्रशिक्षित करता है और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भागीदारी अंतिम चरण IPHO या अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड है, जिसमें सभी प्रतिभागी देशों के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। IPHO परीक्षा के दो चरण होते हैं, व्यावहारिक और सैद्धांतिक परीक्षा।
1: इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO विद्यालय स्तर की भौतिकी की विश्व चैंपियनशिप है। इसका 56वां संस्करण 5 से 12 जुलाई 2026 तक कोलंबिया के बुकार मांगा शहर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 85 से अधिक देशों के 381 छात्र शामिल हुए। ये सभी अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ भौतिक विद्यार्थी थे।
2: भारत ने कोलंबिया के बुकारा मंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उसकी टीम के सभी 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते और देश ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल किया।
1: श्रोताओं, ये उपलब्धि एक ऐसी प्रतियोगिता में हासिल हुई जिसमें 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया था, जो विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में इसकी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। देश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब फिजिक्स ओलंपियाड के वैश्विक मंच पर हमारी पूरी टीम ने एक साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले 2018 में भारत ने ये कमाल किया था।
2: स्वर्ण पदक जीतने वाले 5 भारतीय छात्र पुणे महाराष्ट्र से कनिष्क जैन हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से रिद्धेश अनंत बेंडाले, द्वारका नई दिल्ली से ऋषित गर्ग, मुंबई महाराष्ट्र से श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी अहमदाबाद गुजरात से। कनिष्क, रिद्धेश, ऋषित, श्रेष्ठ और स्वरित, आप सभी को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। आशा है कि देश के अधिक से अधिक लोग आपकी इस ऐतिहासिक सफलता को जानेंगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे।
1: JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करने वाले और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA के लिए चयनित कक्षा 12वीं के छात्र कनिष्क जैन ने इसे बेहतरीन अनुभव बताया। कनिष्क के अनुसार कोटा में जो अकादमिक सपोर्ट उन्हें मिला वो सर्वश्रेष्ठ था। फाइनल मुकाबले में दुनिया भर के प्रतिभावान छात्रों से मिलने का मौका मिला। संस्थान की मजबूत पढ़ाई बेहद उपयोगी साबित हुई।
2: ऑफिशियल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के इतिहास में कोटा कोचिंग के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन शानदार रहा। संस्थान के छात्रों ने अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 188 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें 90 गोल्ड, 75 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
1: कठिन 4 चरणों को पार कर मिली सफलता में हम आगे बात करें तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए छात्रों को कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की ओर से आयोजित NSEP परीक्षा में कोटा के 138 छात्र चुने गए। इसके बाद होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा आयोजित दूसरे चरण में 20 छात्रों ने अगले दौर में जगह बनाई
2: और तीसरे चरण के ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया। इसमें 4 छात्र कोटा कोचिंग के थे। आखिरी चरण में कोलंबिया के बुकारा मांगा में आयोजित फाइनल मुकाबले में 87 देशों के 381 दिग्गजों के बीच भारतीय टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर तिरंगा लहराया।
1: इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत का प्रभावशाली रिकॉर्ड और भी मजबूत हुआ है, जिसमें पिछले एक दशक में प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम पर जगह बनाई है। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञात प्रश्नों को तेजी से हल करना सिखाते हैं, जबकि ओलंपियाड में ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वहाँ पहले गहरी समझ, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता ही काम आती है
2: और इसलिए यह उपलब्धि केवल 5 छात्रों की नहीं बल्कि उन शिक्षकों, वैज्ञानिकों और संस्थानों की भी है जिन्होंने वर्षों तक इन प्रतिभाओं को निखारा। HBCSE के अनुसार भारत के लगभग 64% ओलंपियाड पदक विजेता आगे चलकर PhD करते हैं। लेकिन लगभग 32% ही भारत में स्थायी रूप से कार्य करते हैं। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रशिक्षित करने में तो हम सफल हैं, लेकिन उन्हें देश में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। IPHO का सिलेबस केवल 12वीं तक सीमित नहीं है, इसमें स्नातक स्तर के ये टॉपिक शामिल हैं: यांत्रिकी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, विद्युत और चुंबकत्व में ट्रांजिएंट्स, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकीय भौतिकी, प्रकाशिक तरंगे और आधुनिक भौतिकी के बेसिक्स।
1: ये सफलता देश के राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम की मजबूती को दर्शाती है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है। HBCSC ओलंपियाड कार्यक्रम के लिए भारत के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है और एक कठोर बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया, ओरिएंटेशन कैंप और गहन कोचिंग के माध्यम से विज्ञान और गणित में प्रतिभाशाली पूर्व विश्वविद्यालय छात्रों की पहचान, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, हमारे युवा भौतिकविदों की ये अभूतपूर्व उपलब्धि राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।
2: उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 स्वर्ण पदक जीतना और संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त करना भारत के छात्रों की प्रतिभा, समर्पण और वैज्ञानिक सोच के साथ HBCSE TIFR ओलंपियाड कार्यक्रम के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने छात्रों के अभिभावकों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता कई और युवाओं को विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी और वैज्ञानिक शिक्षा और नवाचार में भारत की स्थिति भी मजबूत करेगी। DAE ने भारतीय टीम के नेताओं HBCSE TIFR के प्रोफेसर अन्वेश मजुमदार और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की डॉक्टर लीना जोशी, वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों IISER कोलकाता के प्रोफेसर आनंद दास गुप्ता और गोगेट जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरी की निशा केलकर के साथ वैश्विक प्रतियोगिता के लिए टीम तैयार करने के लिए HBCSE में फिजिक्स ओलंपियाड मेंटर पूल को भी बधाई दी।
1: HBCSE के निदेशक प्रोफेसर अर्णब भट्टाचार्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भारत की निरंतर सफलता दशकों से जारी निरंतर मार्गदर्शन, संस्थागत सहयोग और शिक्षकों एवं छात्रों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को वैश्विक पहचान दिलाने में DAE के वर्षों के निरंतर समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में मिली सफलता विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी और वैज्ञानिक प्रतिभाओं के पोषण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश के भविष्य के नेतृत्व के लिए मजबूत नींव बनाने के प्रति DAE की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
2: JEE जैसी परीक्षाएं विद्यार्थियों को कठिन प्रश्नों को कम समय में हल करना सिखाती हैं, लेकिन ओलंपियाड में दुनिया कुछ अलग ही है। यहाँ प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसे आपने जीवन में पहली बार देखा हो। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, यहाँ सिर्फ याद

0: आ सकती है। तो आइए आज इन पांच युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को दिल से सलाम करें, उनके माता पिता को बधाई दें, उनके शिक्षकों को नमन करें, उनके प्रशिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों का अभिनंदन करें और अपने देश के हर उस बच्चे से कहें, सपने बड़े रखो, सवाल पूछो, जिज्ञासु बनो और सीखने से कभी मत रुको, क्योंकि अगला स्वर्ण पदक, अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज और भारत का अगला विश्व स्तरीय वैज्ञानिक शायद आपके बीच ही बैठा हो।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।
0: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वो खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: आप सुन रहे थे भारत के पांच युवा भौतिकी सितारों की ये स्वर्णिम गाथा। भारत की प्रतिभा को सलाम, जय हिंद। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन विजयकांत नायक और
0: मनीषा चतुर्वेदी,
1: लेखन विनीता जैन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
2: हो

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना, नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है। खुलकर

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: खुलकर

रेडियो रिपोर्ट में आज हम आपको सबसे पहले लिए चल रहे हैं अध्ययन भवन में, जहां रविवार यानी 27 सितंबर की शाम नाटक कैक्टस फ्लावर का मंचन किया।

0: तुम्हारी आंटी का फोन आया था। अरे इसकी जो गुना बेस्ड आंटी है ना, वो ऑलवेज मुझे फोन कॉल करके इसके वेयर अबाउट्स पता करती है कि कॉलेज जाने से पहले इसने गैस की नॉब बंद की कि नहीं, पानी का टैप बंद किया कि नहीं, वेयर शी गोस, व्हेन शी गोस, विद हुम शी गोस एंड व्हेन शी कम्स बैक, सब पूछती है इसकी आंटी।
1: अच्छा, मौसी तो से ये सब कुछ पूछती है? मौसी को तो अपने क्या ही बोलूं। हां
2: तुम इसे जानती हो?
1: वसंत ऋतु के आते ही सभी पेड़ों पर बहार क्यों आ जाती है? है कोई जवाब? सच पूछो तो इस सवाल का जवाब खुद मुझे भी नहीं पता। बस से मिलकर अच्छा लगता है, इसका बड़ा सहारा लगता है, लगता है कि हमेशा साथ निभाएगा, आपकी धोखा नहीं देगा।
3: मैं और दीपक 6th स्टैंडर्ड से एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठे हैं।
1: हाँ, तो फिर आपको शादी के बाद देवर जी कहूँ।

और आइए अब रेडियो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और आपको अध्ययन भवन से लिए चलते हैं शहीद भवन, जहां रविवार की शाम ही महफिल सजी पुराने फिल्मी नगमों की।

और आइए अब रेडियो रिपोर्ट में और आगे बढ़ते हैं और शहीद भवन से आपको लिए चलते हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां रविवार की शाम ही फिल्मी नगमों की प्रस्तुति दी गई।

0: के बिना कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं होने वाला। चरणामृत में गाय का दूध, घी व दही पड़ना आज अनिवार्य है। यहां तक कहा गया है कि गाय के शरीर में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। आपने गाय को पूज लिया तो सभी देवी देवताओं को पूज लिया।
1: श्रोताओं, वैसे तो कन्यादान को श्रेष्ठ दान माना जाता है, पर हमारे यहाँ गाय का दान इससे भी अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, इस लोक के लिए भी और परलोक के लिए भी। पिता जब अपनी बेटी की शादी करता है तो दहेज में उसे गाय देता है। पुरोहित को भी दक्षिणा गाय के रूप में ही दी जाती है।
0: श्रोताओं, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति ने 10,000 गायें दान में दे दी। आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी संख्याओं में गाय दान दी जाती थी, यह भी आप समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में हमारे देश में दूध व दही की नदियां बहा करती थीं।
1: परलोक में भी गाय ही इंसान को ताड़ती थी, इसीलिए मृत्यु के वक्त गोदान करना अनिवार्य माना जाता था। जिसके पास गाय खरीदने के लिए पैसा न होता, वो प्रतीकात्मक गोदान करता। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से ये कुछ पंक्तियां हम आपको सुनवा रहे हैं।
0: हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो और गोदान करा दो। दादा चले, और भी कई आवाज आई। हाँ हाँ, गोदान करा दो, यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी 20 आने लाई थी, और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में गाय नहीं है, ना बच्चिया है, ना पैसे हैं। ये पैसे हैं और यही इनका गोदान है।
1: चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से लौटते हैं ऋषि मुनियों की दुनिया में। जब खेती का आधार गाय, सेहत का आधार गाय, पूजा का आधार भी गाय, करेंसी तो वो भी गाय, संपत्ति गाय, इस दुनिया में गाय

0: किया गया।
1: ज़ोरास्टर लोगों में कहा जाता है कि धरती की आत्मा गाय के भीतर होती है और किसी भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं है कि इसके साथ बुरा बर्ताव करे। श्रोताओं, जिस तरह हमारे यहाँ वेद पवित्र हैं, वैसे ही पारसियों में अवेस्ता। इस ग्रंथ में कहा गया है कि गौमूत्र सभी चीजों को शुद्ध कर देता है, सभी तरह की बीमारियों के लिए ये रामबाण है।
0: चीन के लोगों की बात करें तो वहाँ कहा जाता है कि यहाँ के लोग सब कुछ खा सकते हैं, यहाँ तक कि सांप, छछुंदर, कुत्ते, बिल्ली भी। पर आपको अचरज होगा कि पुराने जमाने में चीन में गाय को मारना सर्वथा वर्जित था। इस संबंध में यहाँ का जनमत इतना प्रबल था कि राजा लोग भी गाय का मांस खाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे।
1: जापान की बात करें तो पुराने जापान में भी गाय का मांस खाने की मनाही थी।
0: श्रोता, गो संस्कृति प्राचीन मिस्र का भी अंग रही है। वजह यह थी कि इसे हाथोर देवी का पवित्र प्रतीक माना जाता था।
1: श्रोताओं, आपने कई बार सुना होगा कि एक वृक्ष को काटने से उतना फायदा नहीं होता जितना उसके लगे रहने से होता है। ये बात वास्तव में गाय के संदर्भ में भी अक्षरशः सत्य है।
0: श्रोताओं, एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब व्यक्ति का स्वभाव काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि वह क्या खाता है। शराब पीने वाला तामसिक हो जाता है और वह तमाम तरह के बुरे काम में लग जाता है। लेकिन गाय के दूध की विशेषता यह होती है कि वह सात्विक प्रवृत्ति प्रदान करता है, और यही कारण है कि गाय के दूध से बनी चीजों के वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होते हैं।
1: श्रोताओं, कहावत मिलती है कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर जाए, गाय ही उसकी माता होती है। मतलब जिस तरह एक माँ अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे को पालती है, वैसे ही गाय भी उसे पालती है, क्योंकि भैंस का दूध ये काम नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे का नाजुक डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ठीक से पचा नहीं पाता।
0: श्रोताओं, गाय के दूध के संबंध में एक बात ध्यान में आती है, वह यह कि इसका दूध हल्का सा पीलापन लिए होता है, और यहाँ तक कि घी भी। इसके विपरीत भैंस का दूध घी सफेद होता है। क्या आप जानते हैं कि इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है क्रोटीन, वही क्रोटीन जो गाजर में मिलता है। श्रोताओं, कहते हैं कि गाय का दूध बल, बुद्धि व स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है, जबकि भैंस का दूध मोटापा व सुस्ती। ज्यादा कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आप इन दोनों जानवरों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, उत्तर आपको स्वयं ही मिल जाएगा। अरे भाई, जैसा जानवर होगा वैसा ही तो दूध होगा। आप गाय को जरा आवाज देकर देखिए, फौरन उसका सिर ऊंचा नीचा होने लगेगा, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। लेकिन भैंस को बुलाइए, पहले तो वह हिलेगी नहीं, और किसी तरह से हिल भी गई तो रिएक्शन इतना स्लो होगा आप खींच उठेंगे। तभी तो वही पुराना मुहावरा है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी गुर्राए। गाय की ही तरह इसका बछड़ा भी बेहद फुर्तीला होता है, पैदा होते ही दौड़ना शुरू कर देता है, पर भैंस का पाड़ा आप खुद जानते हैं कितना सुस्त होता है।
1: श्रोताओं, यूं तो किसी भी प्राणी के मलमूत्र को खाद में बदला जा सकता है और उससे मीथेन गैस प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गाय का गोबर इस मायने में सबसे अलग है कि इसमें कीटाणुनाशी शक्ति होती है। इसलिए पुराने जमाने से ही गाय के गोबर से घर लीपने की परिपाटी रही है।
0: गाय का गोबर जब जलाया जाता है तो इससे उठने वाला धुआं वातावरण में फैले जर्म्स को मार डालता है। कहा जाता है कि गाय का गोबर एंटी रेडियो एक्टिविटी, एंटीसेप्टिक व एंटी थर्मल प्रॉपर्टीज वाला होता है। इसलिए जब घर की फर्श दीवारें से लीपी जाती हैं, तो उस घर में रहने वाले लोगों की न केवल बीमारियों से रक्षा होती है, बल्कि घर का वातावरण भी शीतल बना रहता है।
1: एक नई खोज में बताया गया है कि 1984 में जब भोपाल गैस कांड हुआ था, तो जो लोग गाय के गोबर से लिपे घरों में रहते थे वे बच गए थे। सुनने में तो ये भी आया है कि भारत और रूस में आज भी एटॉमिक पावर सेंटर्स को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की शील्डिंग की जाती है।
0: रूस के आसपास के इलाके के लोग तो इस मामले में इतने जागरूक हैं कि किसी परमाणु दुर्घटना के समय रेडिएशन से अपनी हिफाजत सुनिश्चित करने के लिए वे अपने घरों को गाय के गोबर से रेडिएशन प्रूफ बना लेते हैं। यहाँ तक कि नासा के मानव युक्त स्पेस कैप्सूल को रेडिएशन से बचाने के लिए गाय के गोबर की एक पतली कोटिंग की जाती है।
1: गाय के गोबर में रक्षा करने का जो गुण पाया जाता है उसने इसे धार्मिक महत्व का बना दिया है। धार्मिक कार्यक्रमों में भी अगर यज्ञ वेदिका बनानी हो तो पहले उस जगह को गोबर से लीप कर पवित्र बनाया जाता है। श्रोताओं, यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, गोबर से लीप कर पवित्र बनाया जाता है। तो क्या बात होगी उस प्राणी की जिसका मल तक इतना पवित्र हो।
0: एक वाक्य सुनाते हैं आपको। बनारस के पास रामनगर की एक पुरानी रियासत थी। एक बार राजा के कोई संतान न हुई। प्रश्न यह उठा कि उत्तराधिकार किसे दिया जाए। अंत में सोचा गया कि इसके लिए लोगों की परीक्षा ली जाए। कुछ लोगों को भोजन पर बुलाया गया। भोजन के बाद हाथ धोने की जगह पर एक टोकरी में साबुन और दूसरी टोकरी में गोबर रख दिया गया। केवल एक ही व्यक्ति ऐसा निकला जिसने गोबर से हाथ धोए। आप समझ गए होंगे कि गद्दी उसे ही मिली थी।
1: गोबर गैस प्लांट हमारे किसानों के लिए कितने फायदेमंद है ये तो आप जानते ही हैं। ये उनके घर में गैस का चूल्हा जलाते हैं और खेतों में सोना उगाते हैं। इस संबंध में हाल ही में एक आईटी कंपनी द्वारा एक शोध कराया गया। इस शोध में पाया गया कि 10,000 गायों की क्षमता वाली डेयरी में हर साल 2,00,000 मीट्रिक टन खाद पैदा की जा सकती है और हर दिन 3 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है।
0: गाय के एक अन्य प्रोजेक्ट गोमूत्र की बात करें तो यह हर तरह की बीमारियों के लिए कितना फायदेमंद होता है हम बार बार सुनते आ रहे हैं। कहते तो यहाँ तक हैं कि अगर टीबी का मरीज एक निश्चित समय तक गाय की बच्चे के मूत्र का सेवन करे तो उसकी टीबी जड़ से उखड़ जाती है। अहमदाबाद के पास एक रिसर्च लैब में तो गोबर व गोमूत्र का इस्तेमाल करके सीरीज ऑफ मेडिसिन बनाई जा रही है। इस लैब का दावा है कि सांसों की दुर्गंध से लेकर के कैंसर तक की बीमारियां इन दवाओं से ठीक हो सकती हैं। यहां काऊ प्रोडक्ट के रूप में साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, मॉस्किटो क्वाइल से लेकर के अनगिनत आइटम्स बनाए जा रहे हैं।
1: इस लैब के कुछ शोध नतीजे हम आपको भी सुनाना चाहेंगे। गाय के ताजे गोबर पर नंगे पांव चलें, ये बैक्टीरिया मारता है और घाव भरता है। गाय का सूखा गोबर त्वचा पर मलने से डेड स्किन निकल जाती है और रक्त संचार तेज हो जाता है। एक 42 वर्षीय गृहिणी अपने ब्लॉग में लिखती हैं, मेरा विश्वास कीजिए, अपने लीवर की बीमारी में मैंने एलोपैथ आजमाया, होम्योपैथ आजमाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, पर आज गौमूत्र के कारण मैं स्वस्थ हूँ।
0: कहते हैं जो लोग गाय दोहने का काम नियमित रूप से करते हैं वे कम बीमार पड़ते हैं। कारण यह है कि गोमूत्र के वेपर उनकी सांसों के माध्यम से शरीर में पहुंचते रहते हैं।
1: प्राचीन ग्रंथों में जिक्र मिलता है कि गाय की पीठ पर सूर्य केतु नामक एक नाड़ी पाई जाती है जो नेगेटिव रेडिएशंस को सोख लेती है और वातावरण को स्वच्छ रखती है। मतलब ये कि जितनी अधिक गाय उतना स्वच्छ वातावरण।
0: गाय के घी की भी बड़ी महिमा मिलती है। आपने भी सुना होगा कि तमाम तरह की बीमारियों में गाय का पुराना घी इस्तेमाल होता है। कहते हैं जब हवन में गाय के घी की आहुति दी जाती है तो इससे उठने वाला धुआं धरती के ओजोन परत को मजबूत करता है। श्रोताओं, आप सुनते होंगे कि इस समय ओजोन परत को हो रहे नुकसान से हमारे साइंटिस्ट कितने चिंतित हैं।
1: हाल ही में मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से हुई कि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन ही लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। हालांकि किसी सर्टिफाइड लैब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, पर अगर ऐसा है तो ये बहुत ही विलक्षण बात है और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही फायदेमंद।
0: श्रोताओं, आज तो हमने ठान ही लिया है कि गाय से पूरा परिचय आपका कराकर ही छोड़ेंगे। तो लीजिए हाजिर है गाय के संबंध में कुछ और ऐसी जानकारियां जो शायद आपने अभी तक न सुनी हो।
1: गाय सीढ़ी चढ़ तो सकती है पर उतर नहीं सकती और इसकी वजह यह होती है कि उसके घुटने ठीक से मुड़ नहीं पाते। दूसरी जानकारी, गायों में सूंघने की क्षमता जबरदस्त होती है। वे लगभग 10 किलोमीटर दूर तक की चीजों को सूंघ लेती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर दूध की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध होलस्टीन नस्ल की गाय ही देती है। वैसे भी दुनिया में 90% दूध गायों से ही प्राप्त किया जाता है।
0: एक गाय साल भर में औसतन 10,000 टन गोबर की खाद प्रदान करती है। कहा जाता है कि अगर गाय न रहती तो आज जंगल देखने को न मिलते। आप अचरज में पड़ गए ना। दरअसल जलाऊ ईंधन की भारी पूर्ति गोबर के उपलों से हो रही है, नहीं तो लोग जलाऊ लकड़ी के लिए अब पूरे के पूरे जंगल साफ कर चुके होते। गाय औसतन 25 साल जिंदा रहती हैं, लेकिन शर्त यह है कि लोग उन्हें जीने दें। श्रोताओं, वैसे तो हर देशभक्त को अपना देश दुनिया में सबसे न्यारा लगता है, पर भारत के संदर्भ में यह एक सच्चाई है। लोग कहते हैं कि बरसात होने पर भारत की मिट्टी में जो सौंधी सौंधी खुशबू उठती है, वैसी विदेशों में नहीं उठती।
1: गायों की बात करें तो दुनिया में दुधारू गायें एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन उन्हें देखकर एक सुस्ती का एहसास होता है। इसके उलट भारत की गायें काफी फुर्तीली होती हैं। उनके देखने, समझने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बड़ी ही जबरदस्त होती है। शायद इसीलिए कहावत है कि भैंस का दूध वजन बढ़ाता है, जबकि गाय का दूध दिमाग।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम संस्कृति संवाद, और आज हम चर्चा कर रहे थे गाय की महिमा की। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने, और स्वर थे प्रमोद शर्मा
1: और कंचन राजानी के।
0: अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
0: अगले सप्ताह कुछ नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजन

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा, और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रही हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ज्वालामुखी।

डिग्री लेने के बाद मैं नित्य लाइब्रेरी जाया करता था, पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं। किताबों को तो मैंने ना छूने की कसम खा ली थी। जिस दिन गजट में अपना नाम देखा, उसी दिन मिल और कैंट को उठाकर ताक पर रख दिया। मैं केवल अंग्रेजी पत्रों के वांटेड कॉलमों को देखा करता। जीवन यात्रा की फिक्र सवार थी। मेरे दादा या परदादा ने किसी अंग्रेज को गदर के दिन बचाया होता अथवा किसी इलाके का जमींदार होता तो कहीं नॉमिनेशन के लिए उद्योग करता, पर मेरे पास कोई सिफारिश न थी। शोक, कुत्ते, बिल्लियों और मोटरों की मांग सबको थी, पर बीए पास का कोई पुरसा हाल न था। महीनों इसी तरह दौड़ते गुजर गए, पर अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह नजर न आई। मुझे अक्सर अपने बीए होने पर क्रोध आता था। ड्राइवर, फायरमैन, मिस्त्री, खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों तक बेकार न बैठना पड़ता। एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी। किसी रईस को एक ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी जो विद्वान, रसिक, सहृदय और रूपवान हो। वेतन 1000 मासिक। मैं उछल पड़ा। कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और ये पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती। उसी दिन मैंने अपना विनय पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया, पर अपने आत्मीय गणों में से किसी से इसका जिक्र न किया कि कहीं लोग मेरी हंसी न उड़ाएं। मेरे लिए 30 रुपए मासिक भी बहुत थे, 1000 कौन देगा। पर दिल से यह ख्याल दूर न होता। बैठे बैठे शेख चिल्ली के मंसूबे बांधा करता, फिर होश में आकर अपने आप को समझाता कि मुझ में ऐसे ऊंचे पद के लिए कौन सी योग्यता है। मैं अभी कॉलेज से निकला हुआ पुस्तकों का पुतला हूं, दुनिया से बेखबर। इस पद के लिए एक से एक विद्वान, अनुभवी पुरुष मुंह फुलाए बैठे होंगे, मेरे लिए कोई आशा नहीं। मैं रूपवान सही, सजीला सही, मगर पदों के लिए रूपवान होना काफी नहीं होता। विज्ञापन में इसकी चर्चा करने से केवल इतना अभिप्राय होगा कि कुरूप आदमी की जरूरत नहीं, और ये उचित भी है, बल्कि बहुत सजीलापन तो ऊंचे पदों के लिए कुछ शोभा नहीं देता। मध्यम श्रेणी का तोंद, भरा हुआ शरीर, फूले हुए गाल और गौरव युक्त वाक्य शैली, ये उच्च पदाधिकारियों के लक्षण हैं, और मुझे इनमें से एक भी मयस्सर नहीं है। इसी आशा और भय में एक सप्ताह गुजर गया और मैं निराश हो गया। मैं भी कैसा ऊंचा हूं कि एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा। इसी को बड़कपन कहते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, किसी दिल्लगीबाज ने आज के शिक्षित समाज की मूर्खता की परीक्षा करने के लिए ये स्वांग रचा है। मुझे इतना भी न सूझा, मगर 8वें दिन प्रातः काल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। लपका हुआ आया, तार खोल कर देखा, लिखा था, स्वीकार है, शीघ्र आओ ऐशगढ़। मगर यह सुख संवाद पाकर मुझे वो आनंद न हुआ जिसकी आशा थी। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। किसी तरह विश्वास न आता था, जरूर किसी दिल लगीबाज की शरारत है, मगर कोई मुजायका नहीं। मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तार दे दूं कि 1 महीने की तनख्वाह भेज दो, आप ही सारी कलई खुल जाएगी। मगर फिर विचार किया, कहीं वास्तव में नसीब जागा हो तो दंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो दिल लगी ही सही, जीवन में यह घटना भी स्मरणीय रहेगी। इस तिलिस्म को खोल ही डालूं। ये निश्चय करके तार द्वारा आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गया। पूछने पर मालूम हुआ कि वो स्थान दक्षिण की ओर है। टाइम टेबल में उसका वृत्तांत विस्तार के साथ लिखा हुआ था। स्थान अति रमणीय है, पर जलवायु स्वास्थ्यकर नहीं। हाँ, हष्ट पुष्ट नवयुवकों पर उसका असर शीघ्र नहीं होता। दृश्य बहुत मनोहर है, पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं। यथा साध्य अंधेरी घाटियों में न जाना चाहिए। ये वृत्तांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ी। जहरीले जानवर हैं तो हुआ करें, कहां नहीं है। मैं अंधेरी घाटियों के पास भूलकर भी न जाऊंगा। आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला। पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि 2-4 दिन में फिर अपना सा मुंह लेकर लौटना पड़ेगा। गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तो सिगार और पत्रों में दिल बहलाता रहा, फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई। आंखें खुली और खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो उषाकाल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया। दोनों ओर हरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां, उन पर चरती हुई उजली उजली गाय और भेड़े सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी। जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुखद पहाड़ियों में होती, जंगल के फल खाता, झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता। यकायक दृश्य बदला,
एक विस्तृत झील दिखाई दी जिसमें कमल खिले हुए थे। कहीं उजले उजले पक्षी तैरते थे और कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं के सदृश डगमगाती चली जाती थी। ये दृश्य भी बदला। पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया। झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ, मानो शांति और संतोष ने यहां अपना निवास स्थान बनाया हो। कहीं बच्चे खेलते थे, कहीं गायों के बछड़े किलोल करते थे। फिर एक घना जंगल मिला। झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए, जो गाड़ी की हाहाकार सुनते ही चौकड़ियां भरते दूर भाग जाते थे। ये सब दृश्य स्वप्न के चित्रों के समान आंखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे। उनमें एक अवर्णनीय शांतिदायिनी शोभा थी, जिससे दृश्य में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे। आखिर ऐशगढ़ निकट आया। मैंने बिस्तर संभाला, जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया। मेरी छाती धड़कने लगी, गाड़ी रुकी। मैंने उतरकर इधर उधर देखा, कुलियों को पुकारने लगा। कितने में दो वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा, आप वहां से आ रहे हैं ना, चलिए मोटर तैयार है। मेरी बांछें खिल गईं। अब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य ना हुआ था। शान के साथ जा बैठा। मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटेहाल में क्यों आया। अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता। खैर, मोटर चली। दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी। सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधारा के सदृश बल खाती चली गई थी। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया। सागर के उस पार पर एक विशाल भवन बना हुआ था। भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था। सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ, सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आमोद से भरा हुआ था। हम सदर दरवाजे पर पहुंचे। कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें से एक शौकीन मुंशी जी थे, जो बाल संवारे आंखों में सुरमा लगाए हुए थे। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले, सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें, संध्या समय मुलाकात कीजिएगा। मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है। न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ, क्योंकि अपने स्वामी के नाम से अनभिज्ञ होने का परिचय नहीं देना चाहता था। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था। मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा न थी। अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विह्वल हो गया। पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे। सामने छज्जा था, नीचे झील थी, और मैं, जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था, इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था। तीसरे पहर उन्हीं शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है। मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे, तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला। उस समय मेरे मन में ये शंका उठ रही थी कि कहीं मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट ना हो जाएं और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किए हों उनमें कोई अंतर ना पड़ जाए। तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था। हम कई बरामदों से होते हुए अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित हो गया। मेरे सामने सौंदर्य की ज्वाला दीप्तिमान थी। फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है। फूल में ठंडक है और सुगंध है, दीपक में प्रकाश और उद्दीपन। फूल पर भ्रमर उड़ उड़कर उसका रस लेता है, दीपक पर पतंगा जलकर राख हो जाता है। मेरे सामने कारचोबी मसनत पर जो सुंदरी विराजमान थी वो सौंदर्य की प्रकाशमय ज्वाला थी। फूल की पंखुड़ियां हो सकती हैं, ज्वाला को विभक्त करना असंभव है। उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है। वो नख शिख तक एक ज्वाला थी, वही दीपन, वही चमक, वही लालिमा, वही प्रभा। कोई चित्रकार प्रतिभा सौंदर्य का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था। रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा, आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने संभल कर उत्तर दिया, जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। यह स्थान पसंद आया? मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया, ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा।
हाँ, गाइडबुक देखने से विदित हुआ कि यहाँ की जलवायु जैसी सुखद प्रतीत होती है यथार्थ में वैसी नहीं। विषैले पशुओं की भी शिकायत थी। ये सुनते ही रमणी का मुख सूर्य कांतिहीन हो गया। मैंने तो ये चर्चा इसलिए कर दी थी कि जिससे प्रकट हो जाए कि यहां मुझे आने में कुछ त्याग करना पड़ा है, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ। पर क्षण भर में सूर्य मेघमंडल से बाहर आया और बोली, ये स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है। गुण का निरादर करने वाले सभी होते हैं, और यदि जलवायु कुछ हानिकर हो भी तो आप जैसे मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है। रहे विषैले जीव जंतु तो वह आपके नेत्रों के सामने विचर रही हैं। अगर मोर हिरण हंस विषैले जीव हैं तो निसंदेह है यहां विषैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न हो गया। गर्व से बोला, गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है। इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया और वो बोली, आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और ये मनुष्य का एक उच्च गुण है। मैं आपका चित्र देखते ही समझ गई थी। आपको ही सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास 100,000 से अधिक प्रार्थना पत्र आए। कितने एमए थे और कोई डीएससी था या कोई जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए था। मानो मुझे यहाँ किसी दार्शनिक विषय की जांच करानी थी। मुझे अब की ये अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है। कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी, मानो देश में लेखकों और पंडितों की ही आवश्यकता है। काल गति का लेशमात्र भी परिचय नहीं है। प्राचीन कर्म कथाएं अब केवल अंध भक्तों के रसास्वादन के लिए ही हैं और उनसे कोई लाभ नहीं है। यह भौतिक उन्नति का समय है। आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं। कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे। कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थीं जिन्हें देखकर घंटों हंसी। मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा दिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूं। मैं उस विद्या को रोग समझती हूं जो मनुष्य को वनमानुष बना दे। आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गईं। तत्क्षण आपको बुलाने को तार दे दिया। मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह्य गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं। और एक सुंदरी के मुखकंठ से वो चलते हुए जादू के समान है। मैं कह उठा, यथा साध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर ना मिलेगा। सुंदरी ने मेरी ओर प्रशंसा पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, इसका मुझे पहले ही विश्वास है। आइए अब कुछ काम की बातें हो जाएं। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए। मेरे भक्तों की संख्या बहुत है। वो संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करती हैं। उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे। कोई मुझसे सहायता मांगता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई सराहता है, कोई गालियां देता है। इन सब प्राणियों को संतुष्ट रखना आपका काम है। देखिए, ये आज के पत्रों का ढेर है। एक महाशय कहते हैं, बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था। अब उनका पुत्र वयस्क प्राप्त हो चुका है और मुझसे अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है। इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपयोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना खर रहा है। आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? इनको उत्तर दीजिए कि इस कूटनीति से काम लो। अपने भतीजे को कपट प्रेम से मिला लो और जब वो निशंक हो जाए उससे एक सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लो। इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बेनामा लिखा लो। यदि 1 लगाकर 2 मिलते हो तो आगा पीछा मत करो। ये उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। नीति ज्ञान को धक्का सा लगा। सोचने लगा, ये रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है? ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को राय न देगा। उसकी ओर संदेहात्मक भाव से देखकर बोला, ये तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है। कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, न्याय की भली कही आपने। ये केवल धर्मांध मनुष्यों के मन का समझौता है। संसार में इसका अस्तित्व नहीं। आप ऋण लेकर मर जाएं, लड़का कौड़ी कौड़ी भरे, विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं, मैं घोर अत्याचार समझती हूं। इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है। एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है,
लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। धर्मात्मा लोग इसे भी न्याय कहते हैं, किंतु यहां भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है। भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा, कितनों का गला दबाया और इस प्रकार संचय किया कि किसी को भी आंख दिखाने का साहस ना हुआ। डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वो अपने धन और प्रभुत्व के बल से उस पर वज्र प्रहार कर बैठे। मैं इसे न्याय नहीं कहती। संसार में धन छल कपट धूर्तता का राज्य है, यही जीवन संग्राम है। यहां प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सकें, न्याय अनुकूल और उचित है। धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे। ये देखिए, ये एक दूसरे सज्जन का पत्र है। वो कहते हैं, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया, प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की, पर अब कोई बात भी नहीं पूछता। अब तक ये आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा, पर 3 साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि ये केवल धार्मिक नियम है। 3 साल में घर की पूंजी भी खा चुका, अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूं। मुझ हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। इनको उत्तर दीजिए कि जाली दस्तावेज बनवाइए और झूठे दावे चलवाकर उनकी डिग्री करा लीजिए। थोड़े ही दिनों में आपका क्लेश निवारण हो जाएगा। ये देखिए, एक और सज्जन कहते हैं, लड़की सयानी हो गई है। जहां जाता हूं लोग दहेज की गठरी मांगते हैं। यहां पेट की रोटियों का भी ठिकाना नहीं। किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूं। चारों ओर निंदा हो रही है। जो आज्ञा हो उसका पालन करूं। इन्हें लिखिए, कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुर्राट सेठ से कर दीजिए। वो दहेज लेने की जगह कुछ उल्टे और दे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कैसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है। अभी कुछ दिनों तक आपको ये काम कठिन जान पड़ेगा, पर आप चतुर मनुष्य हैं। शीघ्र ही आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई काम नहीं है। आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और आजन्म वो आपका यश गाएंगे। मुझे यहां रहते 1 महीने से अधिक हो गया, पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है, मैं किसका सेवक हूं। इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहां से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य का ही आडंबर दिखाई देता था। मेरे आश्चर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में आ फंसा हूं। इन जिज्ञासुओं का इस रमणी से क्या संबंध है, ये भेद भी न खुलता था। मुझे नित्य उससे साक्षात होता था। उसके सम्मुख जाते ही मैं चेत सा हो जाता था। उसके चितवनों में एक प्रबल आकर्षण था जो मेरे प्राणों को खींच लिया करता था। मैं वाक्य शून्य हो जाता, केवल छुपी हुई आंखों से उसे देखा करता था। पर मुझे उसकी मृदुल मुस्कान और रसमयी आलोचनाओं तथा मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मान

कभी कभी जब वो संध्या समय अपनी मोटर बोट पर बैठकर सागर की सैर करती तो ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा आकाश में तैर रहा है। मुझे इस दृश्य में अनुपम सुख प्राप्त होता था। मुझे अब अपने नियत कार्यों का खूब अभ्यास हो गया था। मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का एक पोथा पहुंच जाता था, मालूम नहीं कि डाक से आता था। लिफाफों पर कोई मोहर न होती थी। मुझे इन जिज्ञासुओं में बहुधा वो लोग मिलते थे जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था। कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी। बड़े बड़े विद्वान, लेखक और अध्यापक, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस, यहां तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते थे। उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वो सब मुझे रंगे हुए सियार दिखाई देते थे। जिन लेखकों को अपनी भाषा का स्तंभ समझता था उनसे घृणा होने लगी। वो केवल उचक्के थे जिनकी सारी कीर्ति चोरी, अनुवाद और कतर ब्योत पर निर्भर थी। जिन धर्मों के आचार्यों को मैं पूजता था वो स्वार्थ, तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे। मुझे धीरे धीरे यह अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा ही क्रूर, वैसा ही वासनाओं का गुलाम बना हुआ है। बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के कारण इतने कुटिल, दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे। एक दिन संध्या समय उस रमणी ने मुझे बुलाया। मैं अपने घमंड में समझता था कि मेरे बांकेपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है। अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल संवारे और विरक्त भाव से जाकर बैठ गया। यदि वो मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी तो मैं भी शिकार बनकर उसे खिलाना चाहता था। जो ही मैं पहुंचा, उस लावण्यमय ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, पर मुख चंद्र कुछ मलिन था। मैंने अधीर होकर पूछा, सरकार का जी तो अच्छा है? उसने निराश भाव से उत्तर दिया, जी हां, एक कठिन रोग में फंस गई हूं। अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूं, पर अब रोग असाध्य होता जाता है। उसकी औषधि एक निर्दयी मनुष्य के पास है। वो मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है, पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। मैं इशारा समझ गया। सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, सांस बड़े वेग से चलने लगी। मैं एक उन्मत्तता का अनुभव करने लगा। निर्भय होकर बोला, संभव है जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो वो भी आपको ऐसा समझता हो और भय से मुख खोलने का साहस न कर सकता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे दोनों ओर की आग बुझे। प्रियतम, अब मैं अपनी हृदय की दहकती हुई विरह अग्नि को नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपकी भेंट है। मेरे पास वो खजाने हैं जो कभी खाली ना होंगे। मेरे पास वो साधन है जो आपकी कीर्ति को शिखर पर पहुंचा देंगे। समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूं। बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। मेरे पास वो मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूं। आइए मेरे हृदय से लिपटकर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए। रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग की सी कांति थी। वो दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी। परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है, उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया। उसकी इस प्रेमातुरता से मैं भयभीत हो गया, जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों से सोने की ईंट लेते समय भयभीत हो जाए। मेरा चित्त एक अज्ञात शंका से कांप उठा। रमणी ने मेरी ओर अग्निमय नेत्रों से देखा, मानो किसी सिंहनी के मुंह से उसका आहार छिन जाए, और सरोष होकर बोली, ये भीरुता क्यों? मैं आपका एक तुच्छ सेवक हूं, इस महान आदर का पात्र नहीं। रमणी बोली, आप मुझसे घृणा करती हैं? ये आपका मेरे साथ अन्याय है। मैं इस योग्य भी तो नहीं कि आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं। आप दीपक हैं, मैं पतंग हूं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। रमणी नैराश्यपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली, वास्तव में आप बहुत निर्दयी हैं। मैं ऐसा ना समझती थी। आप में अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार लिपटे हुए हैं। पुस्तकों और सदाचार की बीड़ी आपके पैरों से नहीं निकली। मैं शीघ्र ही अपने कमरे में चला आया और चित्त के स्थिर होने पर जब मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई। ये गुप्त शक्ति क्या थी?

मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ था उसके सामने झील के दूसरी तरफ एक छोटा सा झोंपड़ा था। उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे। उनकी कमर तो झुक गई थी पर चेहरा तेजमय था। वो कभी कभी महल में आया करते थे। रमणी न जाने क्यों उनसे घृणा करती थी, मन में उनसे कुछ डरती थी, उन्हें देखते ही घबरा जाती, मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई है। उसका मुख फीका पड़ जाता, जाकर अपना मुख छुपा लेती। मुझे उसकी ये दशा देखकर कौतूहल होता था। कई बार उसने मुझसे उनकी चर्चा की थी परंतु अत्यंत अपमान के भाव से। वो मुझे उनसे दूर दूर रहने का उपदेश दिया करती और यदि कभी उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते थे। कई कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी। उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई थी। उधेड़े बुन में पड़ा हुआ था। कभी जी चाहता आओ आंख बंद करके प्रेम रसपान करें, संसार के पदार्थों का सुख भोगें, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहां मिलते हैं। फिर आप ही आप मन कुछ खींच जाता, घृणा उत्पन्न हो जाती थी। रात के 10 बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए। यद्यपि मैं अपनी स्वामिनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था परंतु उनके मुख पर ऐसी शांति थी और उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती थी। मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बिठा दिया। उन्होंने मेरी ओर दयापूर्ण भाव से देखकर कहा, मेरे आने से तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। महात्मा जी निश्चिंत होकर बोले, अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ। मैं तुम्हें यही चेतावनी देने के लिए आया हूं, तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं कि यहां से चले जाओ। मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट झेलोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त ना हो सकोगे। मेरा झोंपड़ा तुम्हारे सामने था, मैं भी कभी कभी यहां आया करता था परंतु तुमने मुझसे मिलने की आवश्यकता न समझी। यदि पहले ही दिन तुम मुझसे मिलते तो सहस्त्रों मनुष्यों का सर्वनाश करने के अपराध से बच जाते। निसंदेह यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था जिसने आज तुम्हारी रक्षा की। अगर ये पिशाचिनी एक बार तुमसे प्रेमालिंगन कर लेती तो फिर तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते। वो जिस पर रीझती है उसकी वही गत बनाती है, यही इसका प्रेम है। चलो जरा इस अजायब खाने की सैर करो, तब तुम समझोगे कि आज तुम किस आफत से बचे। ये कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया, तुरंत एक दरवाजा निकल आया। ये नीचे उतरने की सीढ़ी थी। महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया। घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया। उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उनका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इटली के अमरकवि डेंटी ने नर्क का जो दृश्य दिखाया है उससे कहीं भयावह रोमांचकारी और नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धताओं में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कराह रहे थे। उनके शरीर मनुष्य कैसे थे लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था। कोई कुत्ते से मिलता था, कोई गीदड़ से, कोई बन बिलाव से, कोई सांप से। एक स्थान पर मोटा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मुख लगाए उसका रक्त चूस रहा था। एक और दो गिद्ध की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी हुई लाश पर बैठ उसका मांस नोच रहे थे। एक जगह एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था पर बालक उसके गले में अटका हुआ था। दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। एक जगह मैंने एक अत्यंत पैशाचिक घटना देखी। दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी। वो मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था। मुझसे अबौर न देखा गया, तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया। महात्मा जी मेरे साथ चले आए। जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा, इतनी जल्दी घबरा गए, अभी तो इस रहस्य का एक भाग भी नहीं देखा। ये तुम्हारी स्वामिनी के विहार का स्थान है और यही उनके पालतू जीव हैं। इन जीवों के पिशाचाभिनय देखने में उनका विशेष मनोरंजन होता है। ये सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे पर उनकी ये दुर्गति हो रही है।
अब तो मैं यही सलाह देता हूं कि दम यहां से भागो, नहीं तो रमणी के दूसरे वार से कदापि न बचोगे। ये कहकर वो महात्मा अदृश्य हो गए। मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्धरात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से बाहर निकला। शीतल आनंदमय समीर चल रही थी। सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे, मेहंदी की सुगंधी उड़ रही थी। मैं चलने को चला पर संसार सुख भोग का ऐसा सुअवसर छोड़ते हुए दुख होता था। इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खींचता था। मैं कई बार चला, कई बार लौटा, पर अंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई। मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील के किनारे किनारे गिरता पड़ता, कीचड़ में फंसता सड़क तक आ पहुंचा। यहां आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ, मानो कोई चिड़िया बाज के पंजों से छूट आई हो।

यद्यपि मैं एक मास के बाद लौटा था, पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। कमरे में जरा भी गर्द या धूल न थी। मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो मुझे अभी तक मुझे प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बुलाया करते हैं। सभी कहते हैं कि मैं एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। महीना भर गायब रहने की तो बात ही क्या। इसलिए मुझे भी विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा हो। कुछ भी हो, परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि मैं उस पाप कुंड से बचकर निकल आया। चाहे स्वप्न ही हो, पर मैं उसे अपने जीवन का एक वास्तविक अनुभव समझता हूं, क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दी।

0: तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें आपने सुनी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी ज्वालामुखी। फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए निकली ही होगी तो आ ही जा अभी मुरझाने के डर से डर जाए फूल अंगूर भी रस पीने सूख जाने से डर जाऊं क्यों तुझसे मैं किस लिए मेरे इस प्याले में पीते पीते कभी न खत्म होने वाली है अभी भरी आंसुओं की मदिरा बस

आ आ यदि तू भूखी है, नैवेद्य के लिए और अभी दिन, यद्यपि यौवन युक्त फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं, फिर भी सारे मेरे छोटे मोटे काम खत्म हो गए हैं इस दिन के, किसी तरह जुगाड़ कर ऋण चुकता किया, जन्मार्जित जो सब ऋषि ऋण के लिए, श्रुति जननी चरण तीर सेवन करके, आश्रय कर ध्रुव पद का संतन उसके, आ मृत्यु आ आ तू या आने के लिए, निकली ही होगी तो आ ही जा।

और आचरण करके एक तप, ऐसे आशा के श्मशान में घोर तपस्या देवर्ण के लिए रणवाद्य बजा के धड़ धड़ और बढ़ भागे हमला करके ठीक उसी क्षण को जब हो गई प्रभु की प्रथम रणाज्ञा और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी और उसी रणयज्ञ अग्नि में जली अस्थि अस्थि मांस मांस ईंधन जैसी आह मृत्यु आह मृत्यु आह आह तू या आने के लिए निकली ही होगी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाते हैं भक्ति पद। आवाजें हैं हेमंत चौहान और साथी कलाकारों की।

मेरी बेटी गीता सौराष्ट्र के बहुत बड़े संत डूंगरपुरी महाराज उसकी एक रचना ले रही हूँ।

हमारे सौराष्ट्र के आद्य कवि नरसिंह मेहता, उसकी एक रचना मेरा बेटा मयूर। अमेरे व्यवारिया संतो राम नामना, व्यापारी आवे छे बधा गाम गामना, अमेरे व्यवारिया संतो राम नामना।

सौराष्ट्र के परम संत सदगुरु दासी जीवन साहिब की एक रचना है, देखंदा को याद दिल माए जनन जनन जन जाल री वागे।

गीता एक सौराष्ट्र का लोकगीत है, बाग मा रायणू ना जाड़, वो पेश करी है।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति पद, कलाकार थे हेमंत चौहान और साथी। आज का कार्यक्रम भारत भारती बस यहीं तक। अब दीजिए अपने दोस्त दानिश को इजाजत इस प्रोग्राम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: तो ये था श्रोताओं आज का हमारा दोपहर का प्रसारण 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। हमारा प्रसारण यूं ही रात्रि 10 बजे तक जारी रहेगा, दीजिए अनुमति पूर्वाघले को और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ भगवती सक्सेना। हमारी ये सभा रात्रि 10 बजे तक निरंतर रहेगी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 30 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत और भार्गव शौनक। देवता हैं इंद्र, इंद्रासोम, सरस्वती, बृहस्पति एवं मरुद्गण। छंद है त्रिष्टुप व जगती।
1: ऋतम देवाय कृणवते सवित्र इंद्रायाग्ने न रमंत आपह अहरहर्यात्यक्तु रपाम कियात्या प्रथमः सर्ग आसाम। जल प्रेरक तेजस्वी तथा सर्व प्रेरक वृत्रहंता इंद्रदेव के निमित्त यज्ञादि कर्म कभी भी नहीं रुकते। जब से यज्ञादि कर्म प्रचलित हुए तब से याजक गण सदैव यज्ञ कर्म करते हैं। यो वृत्राय सिनमत्रा भरिष्यत् प्र तम जनित्री विदुष उवाच पथो रदंती रनु जोषमस्मै दिवे दिवे धुनयो यन्त्यर्थम्। जो इंद्रदेव के शत्रु वृत्र के लिए अन्न प्रदान करता है उसकी बात इंद्रदेव से उनकी माता अदिति कह देती हैं। नदियां इंद्रदेव की कामनानुसार अपना मार्ग बनाती हुई निरंतर समुद्र की तरफ प्रवाहित होती रहती हैं। ऊर्ध्वो ह्यस्थादध्यंतरिक्षेधा वृत्राय प्रवधम जभार मिहं वसान उप हीमदुद्रोति ग्मायुधो अजयच्छ त्रुमिंद्रः। चूंकि अंतरिक्ष में बहुत ऊंचे स्थित होकर मेघ से आच्छादित वृत्र ने इंद्रदेव पर आक्रमण किया था इसीलिए इंद्रदेव ने अपने वज्र को वृत्र के ऊपर फेंका और तीक्ष्ण आयुधधारी इंद्रदेव ने वृत्र पर विजय प्राप्त किया। बृहस्पते तपुषास्नेव विद्य वृकद्वरसो असुरस्य वीरान यथा जघंत धृषता पुरा चिदेवा जहि शत्रुमस्माकमिंद्र। हे बृहस्पति देव असुर पुत्रों को अपने विद्युत के समान ताप देने वाले वज्र से छिन्न भिन्न करें प्रताड़ित करें। हे इंद्रदेव जिस प्रकार प्राचीन काल में आपने वज्र के द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी उसी तरह हमारे शत्रुओं को भी आज नष्ट करें। अवक्षिप दिवो अश्मानमुच्चा येन शत्रुम मंदसानो निजूर्वाह तोकस्य सातौ तनयस्य भूरे रस्माम अर्धम कृणुतादिंद्र गोनाम। हे इंद्रदेव स्तोताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर आपने जिस वज्र से शत्रु का विनाश किया था उसी वज्र को द्युलोक से हमारे शत्रुओं के ऊपर फेंकें। हमें भरण पोषण के योग्य साधन तथा गौधन से समृद्ध बनाएं ताकि हम संतति का पालन पोषण कर सकें। प्रहि क्रतुम वृहथो यम वनुथो रध्रस्य स्थो यजमानस्य चोदौ इन्द्रासोमा युवमस्माम् अविष्टमस्मिन् भयस्थे कृणुतम लोकम्। हे इंद्रदेव तथा सोमदेव, आप दोनों स्तोता यजमानों को चाहते हैं तथा उन्हें यज्ञ के विस्तार की प्रेरणा देते हैं। आप दोनों भययुक्त इस संसार में हम लोगों की रक्षा करें तथा हमारे जीवन को प्रकाशित करें। न मा तमन्न श्रमन्नोत तंद्रन्न वोचाम मा सुनोतेति सोमम यो मे प्रणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुन्वन्त मुप गोभिरायत। जो इंद्रदेव हमें उत्तम ज्ञान तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करके हमारी कामनाओं को पूरा करते हैं, जो सोमरस को शोधित करते समय हमारे पास गौवों सहित आते हैं, वे इंद्रदेव हमें कष्ट न दें, श्रम शक्ति प्रदान करें तथा हमें आलसी न बनाएं। हम भी कभी किसी से यह न कहें कि इंद्रदेव के लिए सोमरस तैयार न करो। सरस्वती त्वमस्माम् अविद्धि मरुत्वती धृषति जेशि शत्रून् त्यम् चिच्छर्धन्तम् तविशीय माणमिन्द्रो हन्ति वृषभम् शंडिकानाम्। हे मां सरस्वती, मरुतों के साथ संयुक्त होकर दृढ़ता पूर्वक हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आप हमारी रक्षा करें। अहंकारी तथा अत्यधिक बलशाली शांडववंशी शंडामर्क राक्षस को इंद्रदेव ने मारा था। यो नह सुनत्य उतवा जिघत्नु रभिख्याय तम तिगितेन विध्य बृहस्पत आयुधैर्जेशि शत्रून् द्रुहे रीशंतम परिधेहि राजन। हे बृहस्पति देव, हमारे बीच में जो छुपा हुआ हिंसक शत्रु हो उसे खोजकर तीक्ष्ण शस्त्रों से छेदें, हमारे शत्रुओं पर शस्त्रास्त्रों से विजय प्राप्त करें। हे राजा बृहस्पति देव, हिंसक अस्त्र द्रोहकारियों के ऊपर फेंकें। अस्मा के भी सत्व भी शूर शूरैर वीर्या कृधि यानी ते कर्त्वानि ज्योग भुवन्ननु धूपितासो हत्वी तेषामा भरा नो वसूनि। हे शूरवीर इंद्रदेव, हमारे बलशाली वीरों का सहयोग लेकर करने योग्य पराक्रमी कार्यों को करें, अहंकारी शत्रुओं को मारें तथा उनका धन हमें प्रदान करें। तम वह शर्धम मारुतम सुम्नयुर् गिरोप ब्रुवे नमसा दैव्यम जनम यथा रैम सर्ववीरम नशा महा अपत्य साचम श्रुत्यम दिवे दिवे। हे मरुद्गण, सुख की कामना से हम आपके तेजस्वी पराक्रम की स्तुति करते हैं, आपकी नमन पूर्वक प्रशंसा करते हैं। हमें पराक्रमी संतति से युक्त यशस्वी धन सदैव प्रदान करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 30 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्बू त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत।

यदि हम ईश्वर में आस्था रखें और ईश्वर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें कि ईश्वर ने जिस भी रूप में हमको इस संसार में भेजा है वो अपनी समझ से आपको पूरी तरह से उपयुक्त ही बनाकर भेजा है, इसलिए अपनी किसी भी कमी को कमी मत समझिए।

भक्ति हमें प्रभु के सामीप्य का अनुभव कराती है। भक्ति अर्थात प्रभु के प्रति भावमय होना, रसिक होना। रसिक कौन है? रसिक वो है जो बहते हुए भगवत रस को पी लेता है। भावुक वो है जिससे भगवत रस प्रवाहित होने लगता है। भावुक जो भाव प्रधान व्यक्ति है। भावुक का मतलब रोना नहीं है, भावुक अर्थ है भाव प्रधान, अर्थात जो भाव अपने आराध्य के प्रति 24 घंटे बना रहे, बिल्कुल पक्का रहे।

श्रोताओं, केवल भक्ति संगीत ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें प्रभु की अनुभूति करा सकता है और लगातार इसका श्रवण करने से हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है।

श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि एकांत में रहकर, आत्मसंयमित होकर, इच्छाओं से मुक्त होकर और दूसरों से कुछ भी ग्रहण न करते हुए ध्यान योग का अभ्यास करने वाला मन और आत्मा से एक हो जाता है।

श्री भगवान कहते हैं, एकांत और शांत स्थान का चयन करिए। साधना के समय अकेले रहिए, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर, फल की अपेक्षा या सांसारिक लालसाओं से मुक्त होकर ध्यान योग करिए।

0: श्रोताओं, ये थी भक्ति संगीत कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। अब ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक गई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए। नब्बे दशमलव 8 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रमों को श्रोताओं आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। शाम के ठीक 6 बजे हैं, समय मिला सकते हैं आप। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, वतन का राग।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है गोपाल सेन। सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, शिवसागर असम से ऋतु मुनी हांडिक और नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

जान कुर्बान तिरंगे पे कर जाएंगे, बन के खुशबू हवा में बिखर जाएंगे। याद रखे न रखे हमको जमाना, तेरी मिट्टी में ए वतन ठहर जाएंगे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में ऐसे अनगिनत बलिदानी हुए हैं जिन्हें याद करके आज भी देश की मिट्टी का मन भीग जाता है। मातंगिनी हाजरा एक ऐसी ही महान देशभक्त थीं जिनका बलिदान याद कर रोम रोम सिहर उठता है। 71 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए गोली खाई, लेकिन तिरंगे को झुकने नहीं दिया। एक अद्भुत वीरांगना जिन्हें गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता था। मातंगिनी हाजरा का जन्म पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला नामक गांव में 19 अक्टूबर सन 1870 को हुआ था। उनके पिता एक किसान थे। ये एक अत्यंत निर्धन परिवार था, इसीलिए मातंगिनी की शिक्षा दीक्षा भी नहीं हो सकी। पिता को बेटी के विवाह की चिंता थी और निर्धनता एक बाधा। मजबूर होकर पिता ने मात्र 12 साल की मातंगिनी का विवाह 60 साल के एक विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया। त्रिलोचन हाजरा का पहले से ही एक पुत्र भी था। इस तरह नन्ही सी मातंगिनी हाजरा को बेमेल बाल विवाह का दंश सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र होते होते वो विधवा हो गईं। उनकी अपनी कोई संतान नहीं हुई। ऐसी कठिन और दुखद परिस्थिति में वो अपने गांव लौट आईं। यहां एक झोपड़ी बनाकर वो रहने लगीं तथा मजदूरी करके जीवन यापन करने लगीं। नियति ने उन्हें बेसहारा कर दिया था, लेकिन वो स्वयं बेसहारों का सहारा बनी। वो किसी को भी परेशानी या तकलीफ में देखती तो उसकी सहायता करने का हर संभव प्रयास करती। इस तरह सबके दुख सुख में सहयोगी होने के कारण सभी लोग उन्हें मान सम्मान देने लगे। पूरे गांव में वो माँ की तरह पूजी हो गई। दूसरों का दुख बांटकर वो अपना जीवन धन्य करती रहीं।

मातंगिनी हाजरा का एकाकी जीवन दूसरों की सेवा करते हुए बीत रहा था। जैसे दूसरों की सेवा कर वो अपने जीवन का अकेलापन भर रही थीं, दूसरों के सुख में अपना सुख देख रही थीं। ये वो समय था जब भारत में स्वाधीनता आंदोलन की ज्वाला प्रचंड हो रही थी। पराधीन भारत की तंद्रा टूट चुकी थी। वंदे मातरम स्वाधीनता की लड़ाई का युद्ध घोष बन चुका था। भारतवासी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी को अपना रहे थे। गांधी जी की अगुवाई में देशव्यापी आंदोलन हो रहे थे। घर घर चरखा चल पड़ा था। लोग खादी पहनने का संकल्प ले रहे थे। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा हो चुकी थी। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का संदेश दिया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ की। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया। वंदे मातरम के जय घोष के साथ पूरे देश में जुलूस निकल रहे थे। मातंगिनी हाजरा पर इस पूरे वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के विचारों से वो अत्यंत प्रभावित थीं। एक दिन एक जुलूस मातंगिनी हाजरा के घर के पास से निकला। मातंगिनी हाजरा स्वयं को रोक नहीं पाईं। बंगाल की परंपरा के अनुसार शंख ध्वनि से उन्होंने इस जुलूस का स्वागत किया और वो भी इस जुलूस के साथ बढ़ चलीं। ये जुलूस तामलुक के कृष्णगंज बाजार पहुंचा और यहां एक सभा आयोजित हुई, जिसमें लोगों का आह्वान किया गया कि वो भी स्वाधीनता संग्राम में शामिल हों। मातंगिनी हाजरा ने यहीं शपथ ली कि वो देश की स्वाधीनता के लिए अपना तन मन और धन, अपना सर्वस्व समर्पित करेंगी। समूचा देश करबंदी आंदोलन में एक साथ उठ खड़ा हुआ था। तामलुक में भी ये आंदोलन जोरों पर था। इसे दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए। तामलुक में एंडरसन के विरोध में प्रदर्शन हुए। एक जुलूस एंडरसन के निवास की ओर बढ़ा। मातंगिनी हाजरा काला झंडा लिए आगे आगे चल रही थीं। वो निर्भय ब्रिटिश राज के विरोध में नारे लगाती हुई दरबार तक पहुंच गईं। काला झंडा लहराते हुए उन्होंने नारा लगाया, लाट साहब वापस जाओ। पुलिस हरकत में आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद उन्हें 6 महीने सश्रम कारावास की सजा हुई। उन्हें मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन मातंगिनी हाजरा के उत्साह में इससे कोई कमी नहीं आई। उन पर तो गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों का रंग चढ़ा हुआ था। वो आजीवन गांधी मूल्यों को ही समर्पित रहीं।

मातंगिनी हाजरा गांधी जी को अपना आदर्श मानती थीं। वो गांधी मार्ग पर ही चल रही थीं। वृद्धावस्था के कारण उनकी आंखें कमजोर हो चली थीं, लेकिन इसके बावजूद वो चरखे पर सूत कातती, खादी के कपड़े ही पहनती। सन 1935 में जब भीषण बाढ़ के बाद तामलुक क्षेत्र में हैजा और चेचक फैल गया, तब भी अपनी चिंता किए बगैर वो लोगों की देखभाल में जुट गईं। लोगों की सेवा और अंग्रेजी हुकूमत को भारत से बाहर करना, यही दो लक्ष्य उनके जीवन के थे। इसीलिए लोग उन्हें प्यार से गांधी बूढ़ी कहने लगे। करो या मरो के आह्वान के साथ सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजों भारत छोड़ो की गूंज से ब्रिटिश सत्ता की नींव हिल गई। गांधी जी के आह्वान के बाद सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन ये आंदोलन थमा नहीं। स्थानीय नेताओं ने पूरे भारत में इसे जारी रखा। ऐसे समय में मातंगिनी हाजरा भला कहाँ चुप बैठने वाली थीं। वो भी इस आंदोलन में कूद पड़ी। भारत छोड़ो आंदोलन में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे थे। तामलुक में हुए एक ऐसे ही प्रदर्शन में 3 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। इस घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त था। इसके विरोध में एक और बड़ी रैली निकालने का निर्णय किया गया। मातंगिनी हाजरा ने 71 वर्ष की उम्र में भी गांव-गांव घूमकर लोगों को एकत्रित किया। 29 सितंबर सन 1942 को लगभग 5,000 लोगों के साथ एक जुलूस आगे बढ़ा। आपराधिक न्यायालय भवन के उत्तर से मातंगिनी हाजरा जुलूस का नेतृत्व कर रही थीं। पुलिस ने भीड़ को रोकना चाहा। पहले चेतावनी दी और फिर गोलीबारी आरंभ हो गई। जुलूस में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन मातंगिनी हाजरा के हौसले बुलंद थे। पुलिस की गोलियों के बीच भी वो निर्भय आगे बढ़ती रहीं। उनके हाथों में तिरंगा झंडा था। वो एक चबूतरे पर चढ़ गईं और नारे लगाने लगीं। 71 साल की एक बुजुर्ग महिला का ऐसा साहस देखते ही बनता था। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों से वातावरण गूंज उठा कि तभी एक गोली उनके हाथ में आकर लगी। उन्होंने तिरंगे को गिरने नहीं दिया, तिरंगा दूसरे हाथ में थाम लिया। तभी एक और गोली उनके दूसरे हाथ में लगी। असहनीय पीड़ा में भी वो तिरंगे झंडे को थामे रहीं और नारे लगाती रहीं कि तभी एक गोली उनके माथे पर लगी। उनका मस्तक भारत माता के चरणों में झुका और वो शहीद हो गईं। मातंगिनी हाजरा के बलिदान से पूरा क्षेत्र आंदोलित हो उठा। अपनी गांधी बूढ़ी की मौत को यहाँ के लोग सह नहीं सके। इस बलिदान ने जैसे प्रतिरोध की ज्वाला को और प्रचंड कर दिया। लोगों का आक्रोश इतना अधिक बढ़ा कि मात्र कुछ दिनों में ही लोगों ने यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर कर दिया और अपनी स्वाधीन सरकार की स्थापना की। इस सरकार ने यहाँ 21 महीनों तक काम किया। ऐसी महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि मातंगिनी हाजरा का जन्म कब हुआ था? सवाल एक बार फिर सुन लें, मातंगिनी हाजरा का जन्म कब हुआ था? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें मैसेज के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: 2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं वर्षा सिंह।
1: और मैं हूं दीपक नेमा। लीजिए प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रकृति की पुकार।

0: अरे वाह वाह, क्या बात है, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हो और इतना खूबसूरत गाना भी गा रही हो।
1: हाँ, आपने ठीक कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों?
0: बताइए, आप ही बताइए क्यों।
1: दरअसल आज मैं सुबह काफी लंबी सैर करके आई हूँ और बाहर सुबह इतनी सुहानी लगी कि मन खुश हो गया। हरे भरे पेड़, कलकल बहता पानी और ठंडी ठंडी बयार, मन को इतना अच्छा लगा कि वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था।
0: बात तो सही कही आपने, प्रकृति की गोद है ही इतनी खूबसूरत कि वहाँ से उन नजारों से नजर ही नहीं हटती है।
1: मैंने तो सोच लिया है, जब भी फुर्सत मिलेगी तो बाहर इन नजारों के बीच जरूर जाऊंगी।
0: वर्षा, आप जानती हैं
1: जी
0: कि प्रकृति ने हमारे लिए चारों ओर ऐसी चीजें और ऐसा वातावरण दिया है कि हमारे मन को तो भाता ही है, साथ ही हमें ये स्वस्थ भी रखता है। यही तो है परी और आवरण, यानी पर्यावरण हमारी धरती का।
1: जी हाँ, पर्यावरण प्रकृति का सबसे बड़ा और कीमती उपहार है जो हमें मिला है, और हमारा कर्तव्य है कि हम सब इसे संभाल कर और बना कर रखें।
0: बात तो सही कही आपने, ये एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र है जहाँ हम जीवित रहते हैं और जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं।
1: हाँ, पर्यावरण से मतलब उस परिवेश से है जिसमें हमारी पृथ्वी विद्यमान है। पशु पक्षी, सूर्य का प्रकाश, जल, पेड़ पौधे, हवा और हम मनुष्य तथा सभी जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं।
0: हाँ, इसके संतुलन को बनाए रखने में भी सभी की समान भागीदारी है। थोड़ी भी गड़बड़ी पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाएगी।
1: हाँ, हर जीवित प्राणी अपनी विशेषताओं के साथ विकसित होता है। जैसे जलीय प्राणी पानी में सांस लेते देखे जा सकते हैं, और हवा में रहने वाले तो हवा में रहते ही हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अगर इन्हें अपने वातावरण से यदि हम अलग करें तो इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही पर्यावरण हर एक जीव के आसपास की दुनिया है जो उन्हें जीवित रखती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पर्यावरण पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों, जीव जंतु और मनुष्यों जैसे जीवित और वायु, जल और भूमि जैसे निर्जीव तत्वों से बना है।
0: प्रकृति ने अपनी कार्य प्रणाली को इस तरह से डिजाइन किया है कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं।
1: इनमें हम मनुष्य उन सभी प्राणियों में सबसे अधिक शक्तिशाली है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और उनका उपयोग करते हैं।
0: हाँ जी, अब जैसे हवा की बात करें तो ये न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि पेड़ पौधों के जीवित रहने के लिए भी जरूरी है। हवा के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, जीवन देने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और नाइट्रोजन जैसी कई गैसें वायुमंडल में पाई जाती है।
0: और इस पर्यावरण में जलमंडल भी नदियों, महासागरों, समुद्रों आदि जैसे कई जल निकायों से बना है।
1: इसी तरह स्थल मंडल चट्टान और मिट्टी से बना है, और जीव मंडल सभी जीवित प्राणियों का घर है।
0: वर्षा, हम ईश्वर प्रस्थ दुनिया में रहते हैं, इसमें से कुछ तत्व प्राकृतिक और कुछ हम मानवों द्वारा निर्मित है। हमारे आसपास की चीजें ही मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं।
1: लेकिन पर्यावरण के बिगड़ने के लिए हम मनुष्य ही जिम्मेदार हैं। पर्यावरण का विनाश एक बड़ा मुद्दा है जिसका समाधान हम मनुष्यों को ही करना चाहिए।
0: जलवायु, स्वच्छता, प्रदूषण और पेड़ पौधे, ये सभी चीजें हमारे दैनिक जीवन से सीधा संबंध रखते हैं। हम मनुष्य और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जलवायु प्रदूषण या वृक्षों का कम होना हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य दोनों पर बुरा असर डालते हैं।
0: अब देखिए ना वर्षा जी, हमारी अच्छी बुरी आदतें जैसे पेड़ पौधों को सहेजना, जलवायु प्रदूषण रोकना, स्वच्छता रखना, ये सब पर्यावरण को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल सही कहा, हमारी गलत आदतें जैसे पानी दूषित करना या जबरन पानी को बहाना, वृक्षों की जरूरत से ज्यादा कटाई करना, ये सारी बातें पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।
0: हाँ वर्षा जी, अब तो वो समय आ गया है कि हम अपनी इन बुरी और गलत आदतों के कारण पर्यावरण को प्रभावित करने का नतीजा प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर भुगत रहे हैं।
1: हमारे पर्यावरण में जैविक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं।
0: सामान्य शब्दों में अगर इसको समझें तो ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों और प्रक्रियाओं तथा घटनाओं से मिलकर बनी इकाई है।
1: पर्यावरण तो हमारे चारों ओर रहता है और हमारे जीवन की हर एक घटना इस पर निर्भर होती है। यानी किसी भी जीव जंतु के बीच ऐसा संबंध होता है जो पर्यावरण आश्रित होता है।
0: हाँ, पर अब मनुष्यों के हस्तक्षेप के कारण हम कह सकते हैं कि इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक या नैसर्गिक पर्यावरण और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण।
1: आपका कहना बिल्कुल सही है दीपक। बढ़ती जनसंख्या और बड़ी बड़ी इमारतों के कारण पर्यावरण की प्रकृति अब नष्ट होती जा रही है। हर जगह घने जंगलों को काट कर समाप्त किया जा रहा है।
0: हाँ, जबकि हमारे कवियों और लेखकों ने इन्हीं प्राकृतिक मनोहारी रूपों को अपने शब्दों में बांधा है जिसे हम पढ़ते हैं, परंतु जो खूबसूरती देखकर उन्होंने लिखा है वो अब देखने को नहीं मिलती है।
1: आपका इशारा किस ओर है दीपक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद सतपुड़ा के घने जंगल।
0: शायद नहीं, आपने बिल्कुल सही समझा है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में इन प्राचीन जंगलों का कितना अच्छा वर्णन मिलता है। कितने घने होंगे ये जंगल जब उन्होंने इन्हें देखकर इस कविता की रचना की होगी।
1: हाँ, कविता की एक पंक्ति में उस रूप का ऐसा सुंदर विवरण है और ऐसा सुंदर चित्रण है कि जब उसे पढ़े तो हमें दिखाई भी देने लगता है।
0: लेकिन वर्षा जी, बड़े अफसोस की बात है, आज वृक्षों की कटाई और बड़ी इमारतों को बनाने और नए नए उद्योगों को शुरू करने के कारण प्राकृतिक पर्यावरण बुरी तरह से नष्ट हो रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा, घने वृक्षों को काट कर नष्ट करना, पर्यावरण और प्रकृति से खिलवाड़ कर हम मनुष्यों ने अपनी ही आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा कर लिया है।
0: कभी कभी लगता है वर्षा जी, प्रकृति से हमने बस लिया ही है, हमने कुछ भी नहीं दिया। अनगिनत वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलता धुआं, दूषित पानी और मशीनों की आवाजें, ये सबके कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा दीपक, इसी कारण हमें नित नई और ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है जिसका इलाज हमारे चिकित्सा जगत की समझ से बाहर है।
0: और इस कड़ी में हम वैश्विक स्तर पर फैली बीमारी कोविड-19 की भयावहता को देख चुके हैं, जिसके कारण हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश से लाखों लोगों की जानें गईं।
1: इस तरह की त्रासदी से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को बदले, उसमें परिवर्तन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। इस बात की आवश्यकता अब हमारे लिए पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है कि हम अब इस ओर पहल का कदम नहीं बढ़ाएं बल्कि दौड़ पड़े।
0: बिल्कुल ठीक कहा वर्षा जी, क्योंकि यदि हम अपना जीवन बचाना चाहते हैं और मानव जाति और अन्य प्राणियों की रक्षा करना चाहते हैं तो पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ही होगा।
1: हम सभी ने सदा से पर्यावरण के सभी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल किया है। तकनीकी आपदा के कारण भी हम दिन प्रतिदिन प्राकृतिक तौर तरीकों को छोड़ नहीं रहे बल्कि उसकी महत्ता को नजरअंदाज कर रहे हैं।
0: हाँ, जबकि पृथ्वी पर रह रहे हर प्राणी की जिम्मेदारी बनती है कि वे प्रकृति द्वारा दी गई उन अनमोल वस्तुओं के महत्व को समझे और इसे संरक्षित रखे, क्योंकि हमारे आसपास अपने जीवन को बचाने के लिए इसका कोई सानी नहीं है।
1: तभी तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी पर्यावरण को बनाए रखने के प्रति गंभीर थे और इसी वजह से उन्होंने प्रकृति को माता के रूप में माना और ये भी जाना कि स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है।
0: ये बड़ी सुंदर बात कही आपने। प्राचीन ऋषि मुनियों ने सफाई को महत्व दिया और ये माना कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है और प्रदूषण जीवन के लिए खतरा।
1: जी हाँ, उन्होंने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पेड़ों की आवश्यकता के अनुरूप ही उपयोग की बात पर बल दिया और पानी का सीमित उपयोग किया। उन्होंने सदा अपने शिष्यों को भी पर्यावरण के महत्व और संरक्षण की शिक्षा दी।
0: जी हाँ, अपनी शिक्षा में उन्होंने प्रकृति के साथ रहने और उसके नियमों और सिद्धांतों को अपनाया। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को देवी देवता के रूप में देखा, उसकी पूजा की और कहा कि इसी में हमारा सुख, शांति और समृद्धि है।
1: जी हाँ, उनकी कही गई बातें और उनकी दी गई शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमें अपने उन पूर्वजों की शिक्षा को अपनाकर पर्यावरण को बचाना ही है।
0: बिल्कुल सही बात कही वर्षा। इसके लिए हमें आत्मनियंत्रण की भी जरूरत है। हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी अधिक बढ़ती जा रही हैं कि हम भूलते जा रहे हैं कि इन्हें पूरा करने के कारण हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी कितना कुछ सह रही है।
1: अब देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में ही कितना अंतर आ गया है। ज्यादातर घरों में देर से सोना और प्रातः काल की बेला गुजरने के बाद उठना और फिर अलसाते हुए अपने कामों को करने का प्रयास करना,
0: जबकि प्रातः काल और सूर्यास्त से पहले का समय प्रकृति के सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण समय में से होता है। इस समय सारा वातावरण साफ, शांत और ताजा होता है।
1: सुबह पक्षियों के चहचहाने की आवाजें मन को मोह लेती हैं और कहते हैं ना, प्रातः काल सूर्योदय के समय वातावरण में बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे मन को और शरीर को तरोताजा कर देती है।
0: और हमारे शरीर को मिलने वाली ये ताजगी हमें पूरे दिन स्फूर्ति से भर देती है, ऊर्जावान बनाए रखती है। तभी तो कहते हैं कि सुबह की सैर हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है।
1: बिगड़ता पर्यावरण वर्तमान समय में विश्व की एक ज्वलंत समस्या है। आवश्यकता है कि हम सब मिलकर और व्यक्तिगत रूप से भी इसको बचाने में जुटें और सभी को प्रेरित करें।
0: प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करें, प्रकृति के महत्व को समझें। ये सभी जीवों का आश्रय स्थल है, इसलिए मानव जीवन के लिए ये समझना बड़ा आवश्यक है कि हमारा पर्यावरण, जहां हम सब साथ रहते हैं और इस पर केवल हम मनुष्यों का ही नहीं बल्कि हर जीव, जंतु और वनस्पति का अधिकार है, इसे सुरक्षित और साफ सुथरा बनाए रखें।
1: ये प्रकृति का अनमोल उपहार कई चीजों से मिलकर बना है, जैसे वायुमंडल या हवा, जलमंडल या पानी, स्थलमंडल या चट्टाने और मृदा यानी मिट्टी, जैवमंडल या जीव जंतु और सौर ऊर्जा।
0: इसको ऐसे समझ सकते हैं, पर्यावरण को तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक, जैविक और सामाजिक पर्यावरण। इन सभी पर हम अपने अगले कार्यक्रमों में विस्तार से चर्चा करेंगे।
1: तो दो पंक्तियों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। आइए प्रण करें।
0: धरती डगमग डोलती आते नित भूकंप,
1: करो प्रकृति दोहन नहीं मिट जाए हड़कंप।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकृति की पुकार। अब वक्त है इजाजत लेने का।
1: इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, लेखन प्रमिला दिवाकर मुंशी। मैं था आपके साथ दीपक निमा।
0: और मैं थी आपके साथ वर्षा सिंह। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ही राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह, लेकर उपस्थित हूं हमारी सनातन यौगिक परंपरा पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, सृष्टि की कथा किसी राजमहल से नहीं बल्कि उस महामौन से आरंभ होती है जहां न शब्द थे न आकार था, वहां केवल चेतना का अनंत प्रकाश था। योग वासिष्ठ के साथ आज हम उसी आदिकालीन रहस्य के द्वार पर चल रहे हैं जहां वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी और अपने जन्म का वर्णन करते हुए सृष्टि के उस सूक्ष्म रहस्य पर प्रकाश डालते हैं जहां से ये दृश्य जगत अपनी यात्रा आरंभ करता है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और वशिष्ठ ज्ञान की वो निर्मल धारा जो युगों से मनुष्य को उसके भीतर के सत्य तक पहुंचाने का मार्ग दिखाती आई है। तो आइए आज शब्दों से आगे और कल्पना से भी परे उस आदि स्मृति में उतरें जहां जन्म केवल देह का प्रकट होना नहीं है बल्कि चेतना के एक नए अध्याय का उदय है। तो योग संवाद कार्यक्रम में आज सुनते हैं वशिष्ठ जी की वाणी से ब्रह्मा जी और अपने जन्म की अद्भुत कथा। इस बातचीत के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: योग वशिष्ठ के पन्ने खुले हुए हैं
1: जी।
0: और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी और अपने जन्म के विषय में क्या उन्होंने कहा था। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने मोक्ष कथा का वर्णन किया था, ऐसा ये ग्रंथ कह रहा है
1: जी।
0: वो मोक्ष कथा क्या है?
1: देखिए, मोक्ष कथा बुद्धि को शांत करने वाली कथा है। परम शांति का अनुभव बिना मोक्ष के नहीं होता। मोक्ष को लेकर के समाज में जो मान्यता है वो सोचते हैं कि आदमी जब शरीर छोड़ देता है तो मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा नहीं है। देहात्म भाव से निवृत्ति भी मोक्ष की कथा हो सकती है। अगर देखें, इसको कबीर साहब ने एक बड़े सुंदर पंक्ति में कहा है कि हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराए, और बूंद समानी समुद्र में सो कित हेरी जाए। तो बूंद का अस्तित्व ही समुद्र से अलग होने की वजह से है
0: जी, जी।
1: तो जैसे ही हम अपने को ब्रह्म से अलग या उस परम चैतन्य सत्ता से अलग, सच्चिदानंद घन परमेश्वर से अलग देखते हैं तो हमें लगता है कि हम एक परिच्छिन्न इकाई हैं, हमारा कोई अलग अस्तित्व है। लेकिन अगर विचार करके देखें तो इस सृष्टि में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब परस्पर तंत्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखें सृष्टि की व्यवस्था, तो कोई भी यहाँ प्राणी ऐसा नहीं है जो ये दावा करे कि उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ उसके होने से चल रहा है। परस्पर आश्रित सभी हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो मोक्ष है वो मोक्ष की कथा, ज्ञान की कथा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, सृष्टि के आदि में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस मोक्ष कथा का वर्णन किया था। यह संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाली और बुद्धि को परम शांति प्रदान करती है। सारे विवेकशील पुरुषों के साथ इस मोक्ष कथा को सुनकर राम, तुम भी उस दुख रहित सच्चिदानंद में परम पद को प्राप्त कर लोगे, जहां पहुंच जाने पर पुनः विनाश का कोई भय नहीं रह जाता। अब यहां पर देखिए कि जो व्यक्ति को भय है वो भय किस बात का है? कि किसी चीज के नष्ट होने का। जैसे जो आदमी जन्म लिया है वो मृत्यु से भयभीत है, लेकिन क्या मृत्यु से भयभीत होना ज्ञान की बात कही जा सकती है? जबकि आप देखें तो हर व्यक्ति मृत्यु के करीब और मृत्यु उस व्यक्ति के करीब रोज पल पल आ रही है। आप मृत्यु से दूर नहीं जा रहे हैं। किसी ने कहा भी है कि जीवन के सफर का मंजिल मृत्यु है, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, हर पल आपके साथ आपके करीब आने की कोशिश में वो है और आप उसके करीब जाने के लिए विवश हैं
0: जी।
1: तो ऐसे में मृत्यु से भयभीत होने की तो कोई वजह ही नहीं है। तो यहां पर बल्कि उस मृत्यु को याद करते हुए ऐसा हम क्या कर जाएं जिसकी वजह से हम अमरत्व को प्राप्त हो। शरीर से कोई अमरता को प्राप्त नहीं होता। यहां भगवान भी अगर अवतार लेते हैं तो एक काल सीमा में उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है, लेकिन उनकी भगवत्ता की जो कथा आज हम तक प्रचलित है उसका एकमात्र कारण उनके जीवन में किन किन परिस्थितियों में उन्होंने कौन कौन सी लीला की। यहाँ लीला में शब्द इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग लीला नहीं कर पाते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी किसी उपाधि से ग्रस्त होते हैं तो उसको हम मान लेते हैं कि यही हम हैं। हैं और यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ी अविद्या है। शायद शेक्सपियर ने कहा था इस बात को कि ये जो जगत है ये एक रंगशाला है जहां हर व्यक्ति विभिन्न विभिन्न पात्रों में अपनी भूमिकाएं अदा कर रहा है, लेकिन जब एक अदाकार उस भूमिका को ही अपना जीवन मान लेता है तब तो फिर वो किसी और भूमिका के अदा करने में सक्षम ही नहीं रह पाता, उसकी योग्यता ही समाप्त हो जाती है अभिनय की। तो ये देखें तो नाट्यशाला है, यहाँ एक ही पात्र को विभिन्न तरह के रोल मिलते हैं और उस रोल को वो ऐसे प्ले करता है जैसे वो रोल उसके जीवन का सत्य हो, पर उस रोल को प्ले करते वक्त वह हमेशा जानता है कि वो अभिनय कर रहा है।
2: जी,
1: इस भाव से अगर हम जीवन जिए तो हम यहाँ रहते ही मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। संसार की कोई उपाधि हमारे बंधन का कारण नहीं बनेगी। उपाधियां बंधन का कारण तब बनती हैं जब जीव अज्ञानता से ग्रसित होकर उस उपाधि को ही मान लेता है कि ये मैं हूँ। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग विभिन्न उपाधियों के द्वारा अपने रिश्तों का निर्वाह करते हैं, जब हम छोटे होते तो किसी के बच्चे होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे रिश्ते की समझ हमें हो जाती है और बड़े होते हैं तो हमारे बच्चे होते हैं। तो क्या हमारे बच्चे होने के बाद जो पिता और माँ का दायित्व या उपाधि हमारे ऊपर आरोपित हुआ है, इन उपाधियों के पहले हम नहीं थे, लेकिन
2: तब भी हम थे
1: लेकिन तब इन उपाधियों का जो प्रभाव था ये प्रभाव नहीं था, लेकिन ये उपाधियां आने के बाद तो हमने ये मान लिया कि हम यहाँ वही उपाधि हैं। जबकि हम लोग हमेशा जब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं तो परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जगत जननी माँ जगदम्बा कहते हैं, ये सिर्फ बोलते हैं, लेकिन सच ये है कि यहाँ जो जगत पिता या जगत माता की संकल्पना है वो ब्रह्म की संकल्पना है, उन्हीं के नाते हमें भी वो शक्ति आई है, वही चेतना उसका आधार है। तो इसलिए जो मोक्ष कथा है ये मोक्ष कथा जो है दुखों का निर्मूल करने वाली है, और साथ ही साथ यहां पहुंच जाने के बाद फिर विनाश का भय नहीं होता, फिर आपको इस बात का भय ही नहीं होता कि कोई चीज नष्ट होगी तो हो, क्योंकि नष्ट तो होना ही है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो शरीर के साथ उसका धर्म है कि जन्म हुई है तो मृत्यु होगा, बुढ़ापा आएगी, व्याधियां भी होंगी। मन आपके पास है तो सुख दुख दोनों अनुभव होगा, ऐसा तो है नहीं कि सुख ही सुख का अनुभव हो, अगर सुख ही सुख हो और दुख ना हो तो आप दुख के संदर्भ से ही सुख को भी जान पाते हैं। अगर जीवन में दुख ना हो एक व्यक्ति को तो फिर वो सुख भी नहीं कभी अनुभव करेगा।
2: जी, तो आपने दुख के निर्मूल करने की बात कही है बीच में।
1: जी,
2: तो मैं जानना चाहती हूँ कि सृष्टि के प्राणियों के दुख को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने किन साधनों का निर्माण किया?
1: आपने सुंदर सवाल किया। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्राणियों के कष्ट का हरण करने के लिए जो साधन शुरू में उन्होंने देखा तो तप धर्म दान सत्य और तीर्थ सेवन का उन्होंने वर्णन किया।
2: अच्छा।
1: कि इसके द्वारा प्राणी यहाँ अपने दुख का अपहरण कर सकते हैं, लेकिन विचार करने पर उनको ऐसा लगा कि यही सत्य नहीं है, क्योंकि तप करने से आपको धर्म का पता चलता है। कहा भी जाता है कि धन का सबसे अगर उच्चतम भोग है तो दान है। मध्यम भोग है उसका अपने आवश्यकताओं को पूरा करना या अपने लिए भोग में ले आना, और सत्य तो हर व्यक्ति खोज रहा है कि जीवन का सत्य क्या है, लेकिन सत्य खोजा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य को खोजने के लिए कबीर साहब वही कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी गया कबीर हेराए। जब तक सत्य को खोजने वाला नहीं खोएगा तब तक सत्य आपके सामने प्रकट नहीं होगा, और अगर प्रकट हो भी जाए तो आप देखिए तो सत्य के प्राप्तकर्ता आप हो गए, यानी सत्य से बड़ी स्थिति आपकी हो गई, क्योंकि सत्य को जानने वाला सत्य से ऊपर हो गया। तो ऐसे में तो अभी तक आपने असत्य के साथ इतना अहंकार संकलित किया है तो सत्य को जान लेने का अहंकार कितना खतरनाक होगा। आप सोचिए कि वो व्यक्ति तो अब किसी से अपने अहंकार की मुक्ति कर ही नहीं पाएगा। तो इस नाते कहा गया कि इसीलिए अपने यहां शास्त्रों में हरि शब्द आया है। हरि का मतलब होता है जो हरण कर ले। अब हरण का मतलब आप सोचें क्या है, तो कहते हैं चित्त का हरण। भगवान कृष्ण का एक नाम चित्तचोर भी है, क्योंकि चित्त में वृत्तियां उत्पन्न होंगी। अब ऐसे में व्यक्ति जीवन भर अगर चित्त वृत्तियों को ही जीता रहा तो चित्त वृत्तियों के निरोध के बाद प्राप्त होने वाले योग का अनुभव कब करेगा? कैसे उसको अपने स्वरूप की अनुभूति होगी? जो दृष्टा है अगर दृश्य ही के साथ बना रहा तो न उसके दृष्टा की उपाधि से उसे मुक्ति मिलेगी और न दृश्य को देखने का सामर्थ्य उसमें जाएगा। तो ऐसे में आप देखें तो ये कहा गया है कि हरि मतलब जो हरण कर ले। फिर एक कवि की बात मुझे याद आ रही है, उनका नाम तो मुझे भी नहीं याद आ रहा है, कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए, और जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाय। क्योंकि मैं के रहते हरण कैसे होगा? मैं तो संकलन करता है, चित्त वृत्तियों के साथ खड़ा होता है, तो मैं का जब हरण होता है, किसी ने कहा है कि मैं भी एक विचार है, मैं से ही समस्त विचार उत्पन्न होते हैं। तो स्वयं विचार विचारों को उत्पन्न कर रहा है, इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। लेकिन मैं के साथ अगर आप निर्विचार होने की कल्पना कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि मैं निर्विचारता को प्राप्त हो जाऊं, ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं में ही एक विचार है। मैं के विसर्जित हुए बिना प्रेम का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि प्रेम की पहली शर्त यही है कि वहां मैं नहीं होता, क्योंकि मैं तो शर्तों के साथ खड़ा होगा, और प्रेम शर्त विहीन प्रवाह है, जहां पर कोई शर्त ना हो तब जाके प्रेम की घटना घटती है।
2: तो आप ये बताएं कि सांसारिक दुखों का समूल नाश कैसे हो?
1: जब ब्रह्मा जी ने ये जो साधन बताए, तप धर्म दान सत्य तीर्थ सेवन, तो उन्हें भी लगा कि इससे समूल नाश नहीं होगा, तो उन्होंने और गहरे में विचार किया, और पुनः विचार करने के बाद जो उन्हें लगा कि सांसारिक दुख का समूल विनाश इन साधनों से तो नहीं हो सकता, बल्कि परम निर्वाण रूप मोक्ष ही परम सुख है, जिसकी प्राप्ति हो जाने पर जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। उस मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है। अब यहां पर एक सुंदर बात यहां उद्घाटित किया ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कि देखो, मोक्ष ज्ञान के बिना संभव नहीं है। कोई सोचे कि हम संसार के विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति को भी संसार का विषय बना करके मोक्ष को उपलब्ध हो जाएंगे, ये कदापि संभव नहीं है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति बिना ज्ञान के नहीं होती। और वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान है अहंकार के विसर्जन का ज्ञान। आप देखें, जब किसी व्यक्ति वस्तु या विषय का ज्ञान आपको होता है तो तीन की स्थिति बनती है, एक तो गेय, मतलब जिस विषय को आपने जाना, उसका फिर ज्ञाता जिसने जाना, और इन दोनों के योग से जो प्राप्त हुआ उसे ज्ञान कहा गया। इसको हम लोग कहते हैं त्रिपुटी अध्यात्म की भाषा में। तो जब तक इस त्रिपुटी से आप मुक्त नहीं होंगे, यानी ज्ञाता, गेय और ज्ञान की त्रिपुटी जब तक बनी हुई है, तब तक मैं बना हुआ है। क्योंकि इसीलिए संसार में जब हम किसी चीज को जानते हैं तो कहते हैं मैं ये जानता हूं या मैं ये नहीं जानता हूं, क्योंकि ये त्रिपुटी से प्राप्त ज्ञान है। और इन त्रिपुटी से मुक्त होने के बाद जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान मोक्ष प्रदान करता है, और उसी को मोक्ष कथा कहा ब्रह्मा जी ने, कि यही मोक्ष कथा जो है वो व्यक्ति की बुद्धि को परम शांत करने वाली है और संसार के समस्त दुखों का समूल नाश करने वाली है।
2: शशिकांत जी, हमने आज चर्चा का विषय ही रखा वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी और उनके जन्म का वर्णन। तो सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि ब्रह्मा जी के जन्म की क्या कथा है।
1: श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम परब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक सबका आश्रय स्थान नित्य चेतन अविनाशी तथा समस्त प्राणियों में प्रकाशक रूप से वर्तमान और अनंत विलासों का एकमात्र अधिष्ठान है। प्रकृति की साम्यावस्था और विषमावस्था में भी वह निर्विकार रूप से स्थित रहता है। उसी परमात्मा में विष्णु का प्राकट्य हुआ, यानी विष्णु का प्राकट्य परमात्मा में हुआ। यहां भी हमें समझना होगा कि विष्णु पालनहार हैं, यानी सृष्टि में पालन की अगर क्षमता नहीं है तो वहां सृष्टि नहीं होगी। तो सबसे पहले सृष्टि में पालने की शक्ति आती है, यानी विष्णु आते हैं, और विष्णु जब आते हैं तो विष्णु के प्रकट के बाद ठीक उसी तरह से जैसे प्रवहनशील जल से परिपूर्ण सागर से तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन विष्णु के हृदय कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, जो वेद तथा वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं। अब यहां पर विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य दिखाया गया है, और जब ब्रह्मा प्रकट हुए, सृष्टि हुई, तो सृष्टि में वेद के जो नियम हैं या वेद में जो तीन गुणों के सिद्धांतों का जो वर्णन है, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि त्रय गुण या विषया वेदा निस्त्रय गुण या भवार्जुन, यानी जो वेद में है वो तीन गुणों की बात होती है, तो ऐसे में वेद और वेदार्थ के तत्वज्ञ हैं, यानी प्रजापिता जो है, ये जो सृष्टि का जो नियम है उन समस्त नियमों के ज्ञाता हैं ब्रह्मा जी, और उन्होंने देवताओं और मुनियों के समुदाय से संयुक्त होकर अनेक विध विकल्पों की सृष्टि करने वाले मन की भांति विभिन्न प्रकार की सृष्टि रचना की। ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की है संकल्पों से, लेकिन संकल्पों की पुष्टि बिना नियमों के नहीं होती। इसीलिए हम श्रोताओं को कहेंगे कि जब भी किसी संकल्प की पूर्ति करना आप चाहते हैं तो शास्त्र विहित जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का अनुपालन करके आप उन अपने संकल्प की सिद्धि कर सकते हैं।
2: सुंदर बात। अब मैं चाहती हूं कि आप ये बताएं कि वशिष्ठ जी का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ।
1: वशिष्ठ जी का जन्म जब हुआ तो वशिष्ठ जी ने अपने जन्म की कथा को राम जी को ऐसे सुनाया, कहा कि कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे सामने बैठे मुझको प्रकट किया, उत्पन्न किया, और निष्पाप राम जैसे एक तरंग से शीघ्र ही दूसरी तरंग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी अनिर्वचनीय माया से उत्पन्न हुआ और फिर तुरंत ही अपने उन पितृदेव के समीप जा पहुंचा जिनके हाथ में कमंडलू और रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। मैंने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया। उस समय मैं भी कमंडलू और रुद्राक्ष की माला से संयुक्त था। अब देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात है कि ब्रह्मा जी से जैसे ही उनका प्राकट्य हुआ तो उनका स्वरूप बिल्कुल ब्रह्मा जी की तरह से है, मतलब वो भी कमंडलू और रुद्राक्ष की माला लेके हैं और ब्रह्मा जी जैसा ज्ञान उनके पास भी है। तो कहते हैं कि बेटा यहाँ आओ, ऐसा मेरे पिता ने मुझसे कहा। मुझसे यूं कहकर उन्होंने अपने आसन भूत कमल की ओर मुझे भी बैठने को कहा और हाथ पकड़कर बिठा लिया। फिर मृगचर्म से ही मेरा परिधान था। ऐसे मुझसे मृगचर्मधारी मेरे पितृदेव ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा जैसे चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, हम लोग देखते हैं चंद्रमा को ग्रहण लगता है, चंद्रमा में कलंक प्रविष्ट होता है, उसी प्रकार वानर के समान चंचल अज्ञान दो घड़ी के लिए तुम्हारे चित्त में प्रवेश करे।
2: अच्छा,
1: ऐसा ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को कहा।
2: क्यों कहा ऐसा?
1: हाँ, ये सुंदर आपका सवाल है। अब ये देखिए इसलिए कहा, इस पर विचार करें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि समूल दुख का नाश ज्ञान से होगा, और चूंकि ब्रह्मा जी से प्रकट जो वशिष्ठ जी हैं, इनमें भी ब्रह्मा जी जैसा ही ज्ञान है, तो ज्ञान से ज्ञान की बात नहीं हो सकती।
2: हाँ।
1: वहां तो मौन है ना फिर।
2: हाँ हाँ।
1: है ना, आप जो कुछ कहेंगे वो सब मैं जानता हूँ। हमने भागवत की कथा में देखा भी है कि जब सुखदेव जी ने ज्ञान को अपने स्वयं से प्रकट किया तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि जो बात आप मुझे बता रहे हैं व्यास जी को, यही तो मैं जानता हूँ और वही बात आप मुझसे कह रहे हैं, वही बात शास्त्रों में भी है, लेकिन उस बात से मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो फिर उन्होंने उनको जनक जी के पास भेजा। वहां पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज्ञान स्वयं से अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता जब तक आप अज्ञान से ग्रसित ना हो। देखिए एक बात है कि कोई भी दवा बीमार के लिए है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए दवा क्या कोई प्रयोजन नहीं है? ठीक वैसे ही जो ज्ञान से संपन्न है उसके लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता। इसीलिए इस ग्रंथ के बारे में कहा भी गया है कि यह ग्रंथ उन लोगों के लिए है जो न अज्ञानी हो और न ही पूर्ण ज्ञानी हो, क्योंकि पूर्ण ज्ञानी है तो यह सारा ज्ञान जो इसमें दिया गया उनके पास है
2: जी,
1: और अज्ञानी है तो फिर इस ज्ञान का कोई उनके लिए प्रयोजन नहीं रह जाता।
2: वैसी बात है कि अंधकार के अस्तित्व के बगैर प्रकाश के अस्तित्व को आप कैसे जान सकेंगे।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रकाश की आवश्यकता ही महसूस तब होती है
2: जब अंधकार
1: हो। प्रकाश में रहने वाला प्रकाश के मूल्य को जानता भी नहीं है,
2: जब
1: ढूंढेगा। जैसे संसार में अगर दुख ना हो तो सुख की खोज खत्म हो जाए। सुख की खोज इस बात का प्रमाण देती है कि सुख खोजने वाला दुखी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना, और लगता उसे है कि वो सुख खोज, यही तो माया है।
2: हाँ।
1: जी, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसे ही यह ज्ञान तुम्हारे में प्रविष्ट हो जाए, ऐसी बात ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी के लिए कहा।
2: तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है, इसको भी थोड़ा सा और विस्तार दीजिए आप।
1: देखिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए दुख का अनुभव होना जरूरी है। दुख बिना अज्ञान के नहीं होगा, ज्ञानी को दुख नहीं होता। आप देखिए इस पर मैं एक प्रसंग मुझे आ रहा है याद, भगवान कृष्ण के गोकुल में रहने के समय का, कि जब उद्धव जी जाते हैं, उद्धव गीता में ये प्रसंग आता है कि भगवान जब अपने ग्वाल बालों को या वहां के प्रेमियों को याद करते हैं, गोपियों को, तो कहते हैं उद्धव जी की क्या याद करते हो, क्या है उन लोगों में तुम उन्हें याद कर रहे हो, यहाँ बैठ करके मथुरा में नगर में आ गए हो तुम और उन ग्रामीण लोगों को याद कर रहे हो। तो कहते हैं उद्धव यही तो बात है कि मैं उन्हें भूल नहीं पा रहा है, मुझे लगता है कि वो मुझे याद करते हैं। अगर जाकर के तुम ये ज्ञान उन्हें दे देते तो शायद वो मुझे याद नहीं करते और वो याद नहीं करते तो मैं भी उनको याद नहीं करता। तो उद्धव जी तो बहुत फूले नहीं समाए, कहीं तो अच्छा हो सका, ठीक है मैं जाता हूँ, उनको ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। और जब जाते हैं और जब राधा रानी के पास जाते हैं तो ऐसा प्रसंग आता है कि जब वो ब्रह्म ज्ञान देने का प्रयास करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान में राधा रानी जी तो अधिष्ठात्री हैं, वो कहती हैं कि ब्रह्म तो सब में है, आप में भी है, मुझ में भी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ उसी को तो जानना है, तो आप कृष्ण के आखिर बहकावे में या कृष्ण के प्रेम में क्यों इतनी बेहवल हैं, जबकि वो कृष्ण तत्व तो आप में ही है। तो कहते हैं जब आपको ये पता है कि ब्रह्म मेरे में है तो ब्रह्म को ब्रह्म के उपदेश की क्या जरूरत है। तो ब्रह्म को ब्रह्म के उपदेश की आवश्यकता नहीं है, जो ज्ञानी है उसे क्या ज्ञान दोगे, है ना। और जब ज्ञानी है तो उसे दुख नहीं होगा, और दुख हो रहा है इसका मतलब क्या ज्ञानी है। तो बिना अज्ञान, तो जब ब्रह्मा जी ने इनके अंदर जब अज्ञान को प्रवेश कराया तो कहते हैं, ये खुद ही कहे हैं कि यूं पिता द्वारा अभिशप्त होने पर उनके संकल्प के अनंतर अपने संपूर्ण शुद्ध स्वरूप को मैं भूल गया। जैसे अज्ञान का प्रवेश हुआ, ये खुद वो कन्फेस कर रहे हैं कह रहे हैं कि मैं भी परम ज्ञान में था, लेकिन जैसे ही पिता ने ये कहा कि जैसे चंद्रमा में कलंक आता है ऐसे ही अज्ञान तुम में प्रवेश करे, तो ऐसा कहते ही उनके मैं अपने स्वरूप को भूल गया और मेरी बुद्धि तत्व ज्ञान से रहित हो गई और मैं दुख शोक संतप्त से दीनता को प्राप्त हो गया।
2: अच्छा,
1: ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं
2: कि
1: दीनता को प्राप्त हो गया। उस समय मैं हाय बड़े कष्ट की बात हुई, यह संसार नामक दोष मुझमें कहां प्राप्त हो गया। ये वशिष्ठ जी के अंदर अज्ञान के प्रवेश करते ही ये भाव उत्पन्न हुआ, ये संसार नामक दोष। देखिए चूंकि ज्ञानी है यहां तो हम लोग को संसार दोष लगता ही नहीं है, हम तो सारे दोष को दूर करने के लिए ही संसार का चिंतन करते हैं।
2: जी जी,
1: तो संसार के दुखों को मिटाने के लिए हम जिन साधनों की कल्पना या कामना हम भगवान से करते हैं वो भी संसार के ही साधन होते हैं। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि जिन साधनों को प्राप्त करके आज तक हम परम साध्य सुख और शांति को नहीं प्राप्त कर सके, तो आगे जिन साधनों से हम सुख और शांति की कामना करके बैठे हैं क्या वो साधन सुख और शांति को ला पाएंगे? क्योंकि इसके पहले के साधनों को हम चाह करके ही तो इकट्ठा किए हैं, लेकिन उसके बाद भी हम शांत तो नहीं हुए। किसी शायर ने कहा भी है, ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो जैसे ही साधन मिलेगा, भले ही वो सोना क्यों ना हो, वो मिट्टी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ तो सोने को भी मिट्टी बनाना हमें आता है। सोना तभी तक सोना है जब तक हमें प्राप्त नहीं है, प्राप्त हो जाने के बाद हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे जीवन की कहानी है और यही कहानी हमें हमेशा अधूरा बनाए रहता है, रखती है, और हमें लगता है कि हमारे जीवन की कहानी अधूरी है। जबकि सच ये है कि हम पूर्ण होना जानते ही नहीं है, क्योंकि पूर्ण होना ज्ञान से ओम पूर्ण मदः पूर्णात् पूर्ण मदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्ण मेवावशिष्यते, ये परम ज्ञान में इस अखी अनुभूति होती है, उस पूर्णता को हम जान पाते हैं। अज्ञान तो अपूर्णता का द्योतक है और वही दुखी करता है।
2: तो फिर ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को क्या आदेश दिया?
1: ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को आदेश दिया कि पुत्र, मैं प्रथमतः तुम्हें शाप द्वारा ज्ञानहीन करके पुनः समस्त अधिकारी जनों के ज्ञान की सिद्धि के लिए इस सारभूत ज्ञान का पिपासु बनाया हूं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनके अंदर ज्ञान की पिपासा पैदा की। हम लोगों के अंदर जो सामान्य जीव हैं वो ये सोचते हैं कि हमें संसार की पिपासा उनके अंदर बनी हुई है, वो संसार की पिपासा से संसार की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं, जबकि संसार की पीड़ा ज्ञान की पिपासा से दूर होगी। क्योंकि संसार वास्तव में देखें तो अज्ञान के कारण खड़ा हुआ है, ज्ञान में तो सिर्फ ब्रह्म की सत्ता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले तुमको मैंने ऐसा कहा और उसके बाद अब तुम्हारा शाप शांत हो गया है और तुम्हें परमोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिससे तुम मेरी ही सदृश अद्वितीय आत्मस्वरूप हो गए हो। साधो, अब तुम प्राणियों पर अनुग्रह करके भूलोक में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में स्थित भारत में जाओ और वहां पर ये ज्ञान लोगों को दो।
2: जी,
1: तो इस तरह से उन्होंने अपने पुत्र को कहा कि ये तुमको मैं कह रहा हूं कि तुम भूलोक में भारतवर्ष में जाओ जो जम्बू द्वीप में स्थित है, और वहां पर जो प्राणी अज्ञान से शोक संतप्त हैं उनके शोक को नष्ट करो, ये आदेश दिया।
2: अच्छा, ये बताएं कि वशिष्ठ जी मृत्यु लोक में कब तक रहे?
1: ये सुंदर आपने बात कही, वशिष्ठ जी मृत्यु लोक में तब तक रहे जब तक सृष्टि की परंपरा है। इसके संदर्भ में कहते हैं कि परोपकार निष्ठ पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, ब्रह्मा जी कहते हैं वशिष्ठ जी से, अतः वहां के लोगों को कर्मकांड परायण जो हैं लोग उन्हें कर्मकांड की क्रम से शिक्षा देना, और जो लोग विवेकशील विरक्त चित्त और महाबुद्धिमान हो उन्हें परमानंददायक ज्ञान का उपदेश करना, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहां पर एक चीज देखिए कि संसार में कर्मकांड भी पोषित है, लेकिन कर्मकांड से हम क्या प्राप्त करते हैं? हम अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, जिसका योग नहीं है उसके योग की बात करते हैं, और जो मिला हुआ है उसके क्षेम की बात करते हैं कि वो बना रहे। ये संसार में कर्मकांड के द्वारा इन्हीं की सिद्धि होती है, लेकिन जो विवेकशील लोग हैं उन्हें ये पता है कि संसार के किसी भी प्राप्तव्य से एक सतत जो सुख है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसे में वो विवेकशील लोग विरक्त चित्त हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि यहां पर विषयों में अनुरक्त होने से चित्त को शांति नहीं मिलती बल्कि चित्त में अशांति बढ़ती है। ठीक वैसे ही जैसे यज्ञ में हविष डालने के बाद आग और तेज होती है, ऐसे ही संसार में विषयों की प्राप्ति होने के बाद विषयों को पाने की कामना और तीव्र हो जाती है। ये लगभग हर सभी लोगों का अनुभव होगा, लेकिन फिर भी हम विषयों की आसक्ति को मिटाने के लिए अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, जबकि कामना अपने आप में एक बहुत बड़ी वासना है। तो वो कहते हैं कि वो विरक्त चित्त हो गए हैं विवेकशील लोग, उनके लिए तुम्हें परमानंद दायक ज्ञान का उपदेश करना है। ज्ञान का उपदेश उनके लिए है जिनको संसार से चित्त जिनकी विरक्त हो गई हो या जिनका वैराग्य सिद्ध हुआ हो। अन्यथा आप उन लोगों को ज्ञान का उपदेश देंगे जिन्हें संसार की कामना है, निश्चित ही वो ज्ञान उनके काम का विषय नहीं है। तो इस तरीके से वशिष्ठ जी ने संसार में जब तक सृष्टि परंपरा है तब तक रह करके यहाँ पर जिसको जिस तरह की आवश्यकता है उसकी उन्होंने आपूर्ति की।
2: अच्छा, ये बताएं कि अंतःकरण का रोग है क्या?
1: अंतःकरण का रोग अज्ञान है, क्योंकि अंतःकरण के अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर महान लोग कष्ट भोग रहे हैं, उनका उद्धार करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक यह सृष्टि परंपरा रहेगी तब तक तुम्हें यहां रहना होगा, और वशिष्ठ जी कहते हैं कि तब तक मैं यहां रहूंगा भी। जिस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मुझे यहां आने का आदेश दिया, उसी प्रकार उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार तथा नारद आदि अन्यान्य ऋषियों को भी यह कहकर प्रेरित किया कि तुम लोग भारतवर्ष में जाकर पवित्र कर्मकांड और ज्ञान कांड के उपदेश के द्वारा वहां के निवासियों को अंतःकरण के अज्ञान रूपी रोग से मुक्त करो, क्योंकि वो अज्ञान रूपी रोग के वशीभूत होकर कष्ट भोग रहे हैं, और उनका उद्धार जब भी होगा जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी।
2: तो ऐसे ही उद्धार होता है ज्ञान की प्राप्ति से?
1: अज्ञान की प्राप्ति से ही उद्धार होता है, और ज्ञान की प्राप्ति कराना ही मोक्ष कथा है।
2: अच्छा,
1: मोक्ष कथा मतलब ये हुआ कि जहां आपका जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला बंधन समाप्त हो जाए, और अज्ञान के कारण ही मैं खड़ा होता है, अहंता ममता आती है, देहात्म भाव के साथ व्यक्ति बंधा रहता है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको अपने परम चैतन्य सच्चिदानंद स्वरूप का बोध होता है, तो फिर वो जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले बंधनों से मुक्त होकर के मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है।
2: जी जी, तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही शशिकांत जी आज की, आप हमारे बीच उपस्थित हुए, आपका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।
2: तो श्रोताओं, योग संवाद कार्यक्रम के आज के अंक में हमने चर्चा की वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मा जी और अपने जन्म के वर्णन पर। उम्मीद है आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा। चलते चलते आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे बीच उपस्थित थे योग अध्यात्म और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी, मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, और आपके साथ बातचीत कर रही थी मैं सुनीता सिंह। अब अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक ऐ राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आप सभी को मनीषा
2: और विजयकांत का नमस्कार। श्रोताओं, भारत केवल विविधताओं और संस्कृतियों की धरती नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभाओं की जन्मभूमि भी रहा है। इस देश ने समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, ज्ञान, साहस और कर्मठता से भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया।
1: भारत की प्रतिभा केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रही। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने साहित्य और दर्शन के माध्यम से विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से समाज के यथार्थ को आवाज दी और लता मंगेशकर ने अपनी स्वर साधना से भारतीय संगीत को विश्व भर में पहचान दिलाई।
2: और जब बात आधुनिक भारत की प्रतिभाओं की होती है तो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, खिलाड़ियों, कलाकारों और युवाओं की उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सफलता हो, ओलंपिक में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हो या विश्व मंच पर भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां, हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा अपनी चमक बिखेर रही है।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।
2: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई ऐसा आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाए। क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वह खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: स्वागत है आपका ज्ञान, जिज्ञासा और खोज की उस दुनिया में जहां हर सवाल एक नई संभावना को जन्म देता है, जहां एक छोटा सा प्रयोग भविष्य की बड़ी खोज बन सकता है और जहां युवा मस्तिष्क अपनी सोच और प्रतिभा से दुनिया को चौंका सकते हैं।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति समर्पित है भारत के उन युवा वैज्ञानिक मस्तिष्कों को जिन्होंने भौतिकी के विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और परिणाम आया तो 5 के गले में सजा स्वर्ण पदक। यह उपलब्धि केवल 5 विद्यार्थियों की सफलता नहीं, यह भारत की वैज्ञानिक सोच, हमारे शिक्षकों की मेहनत और हमारी युवा प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है और यह उपलब्धि अपने आप में असाधारण भी है।
1: श्रोताओं, ये कहानी उस भारत की है जो सदियों से ज्ञान की धरती रहा है, जिसने दुनिया को शून्य का रहस्य समझाया है, जिसने विज्ञान, गणित और दर्शन के क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिस धरती पर आर्यभट्ट ने आकाश को समझने का प्रयास किया, जिस भारत ने सीवी रमन की खोज से प्रकाश की दुनिया में नई रोशनी पैदा की और आज उसी भारत की युवा प्रतिभा ने भौतिकी के विश्व मंच पर एक बार फिर तिरंगा लहरा दिया है।
2: किसी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं की रक्षा करने वाले वीरों में नहीं होती बल्कि उन युवा मस्तिष्कों में होती है जो ज्ञान और विज्ञान की दुनिया में उस देश का भविष्य लिखते हैं। श्रोताओं, ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है।
1: 5 युवा, 5 प्रतिभाएं और 5 स्वर्ण पदक। जी हाँ श्रोताओं, आज भारत ऐसे ही 5 युवा मस्तिष्क पर गर्व कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। ये सिर्फ 5 पदकों की कहानी नहीं है, ये कहानी है

0: चंद बनाई। ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खुलने जा रहा है विज्ञान की दुनिया का एक नया पन्ना।
1: आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है IPHO। इसकी स्थापना 1967 में पोलैंड के वार्सो में हुई थी। IPHO का आयोजन प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में किया जाता है, जिसमें 5 महाद्वीपों के 80 से अधिक देशों के प्रतिभाशाली युवा भौतिकी विज्ञानी भाग लेते हैं। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए भौतिकी विज्ञान की दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिता है। इसे आप भौतिकी का ओलंपिक भी कह सकते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के प्रतिभाशाली युवाओं की विश्लेषणात्मक क्षमता और प्रायोगिक कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखना है।
0: भौतिकी सिर्फ किताबों में लिखे सूत्रों का नाम नहीं है, यह उस जिज्ञासा का भी नाम है जो पूछती है यह दुनिया काम कैसे करती है, आकाश में तारे क्यों चमकते हैं, प्रकाश की गति कैसी है, पदार्थ के भीतर छिपे रहस्य क्या हैं। और जब इन सवालों की तलाश में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा विद्यार्थी एक मंच पर आते हैं, तो भारत भी अपनी प्रतिभा के साथ वहां मौजूद होता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के विश्व मंच पर भारत के 5 युवा विद्यार्थियों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। लेकिन श्रोताओं, यह उपलब्धि केवल 5 पदकों की कहानी नहीं है, यह उस वैज्ञानिक भारत की कहानी है जिसने वर्षों से अपने युवाओं में जिज्ञासा, तर्क और खोज की भावना को विकसित किया है।
1: ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक विरासत की, भारत की युवा प्रतिभा की, भारत के शिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों की, और उस भविष्य की जिसमें भारत विज्ञान की दुनिया में और भी ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड IPHO एक वैश्विक ओलंपियाड है जो प्रतिवर्ष विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। IPHO का उद्देश्य जटिल समस्या समाधान और प्रायोगिक मूल्यांकन के माध्यम से माध्यमिक छात्रों के भौतिक ज्ञान का आकलन करना है। छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने और अपने ज्ञान का परीक्षण करने का शानदार अवसर मिलता है।
0: IPHO में भाग लेने के लिए छात्रों को पहले राष्ट्रीय स्तर की भौतिकी ओलंपियाड उत्तीर्ण करनी होती है। प्रत्येक राष्ट्रीय टीम में 5 छात्र होते हैं और प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होती है। विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया IPHO भौतिकी में शिक्षा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करता है।
1: छात्रों का माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन छात्रों ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा पूरी कर ली है वो भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते उन्हें विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा शुरू न की हो। राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड के लिए अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। IPHO का पाठ्यक्रम विशेष रूप से उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों यानी कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए तैयार किया गया है।
0: भौतिकी ओलंपियाड कार्यक्रम 5 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय मानक भौतिकी परीक्षा यानी NSEP। भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ IAPT द्वारा NSE परीक्षा आयोजित की जाती है। राष्ट्रीय मानक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा कक्षा 12 के भौतिकी पाठ्यक्रम को कवर करती है। IPHO में भाग लेने के पात्र हो जाते हैं। अभिविन्यास सह चयन शिविर OCSA। भारतीय राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड से लगभग शीर्ष 35 छात्रों को अभिविन्यास सह चयन शिविर के लिए चुना जाता है। HBCSE छात्रों को उनकी अवधारणाओं, प्रायोगिक ज्ञान, समस्या समाधान और कौशल पर काम करने के लिए इस शिविर का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के लिए प्रस्थान पूर्व प्रशिक्षण शिविर छात्रों को भौतिकी की अवधारणाओं पर प्रशिक्षित करता है, और अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड यानी IPHO के सभी पहलुओं को शामिल करता है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भागीदारी अंतिम चरण IPHO या अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड है, जिसमें सभी प्रतिभागी देशों के छात्र प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। IPHO परीक्षा के 2 चरण होते हैं, व्यावहारिक और सैद्धांतिक परीक्षा।
1: इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO विद्यालय स्तर की भौतिकी की विश्व चैंपियनशिप है। इसका 56वां संस्करण 5 से 12 जुलाई 2026 तक कोलंबिया के बुकार मांगा शहर में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में 85 से अधिक देशों के 381 छात्र शामिल हुए। ये सभी अपने अपने देश के सर्वश्रेष्ठ भौतिक विद्यार्थी थे।
0: भारत ने कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उसकी टीम के सभी 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते और देश ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान हासिल किया।
1: श्रोताओं, ये उपलब्धि एक ऐसी प्रतियोगिता में हासिल हुई जिसमें 87 देशों के 381 छात्रों ने भाग लिया था, जो विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती ताकत और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में इसकी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित करता है। देश के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब फिजिक्स ओलंपियाड के वैश्विक मंच पर हमारी पूरी टीम ने एक साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है। इससे पहले 2018 में भारत ने ये कमाल किया था।
0: स्वर्ण पदक जीतने वाले 5 भारतीय छात्र पुणे महाराष्ट्र से कनिष्क जैन हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से रिद्धेश अनंत बेंडाले, द्वारका, नई दिल्ली से ऋषित गर्ग, मुंबई महाराष्ट्र से श्रेष्ठ सुरैया और स्वरित जोशी अहमदाबाद गुजरात से। कनिष्क, रिद्धेश, ऋषित, श्रेष्ठ और स्वरित, आप सभी को हार्दिक बधाई। आपकी उपलब्धि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। आशा है कि देश के अधिक से अधिक लोग आपकी इस ऐतिहासिक सफलता को जानेंगे और इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे।
1: जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल करने वाले और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA के लिए चयनित कक्षा 12वीं के छात्र कनिष्क जैन ने इसे बेहतरीन अनुभव बताया। कनिष्क के अनुसार कोटा में जो अकादमिक सपोर्ट उन्हें मिला वो सर्वश्रेष्ठ था। फाइनल मुकाबले में दुनिया भर के प्रतिभावान छात्रों से मिलने का मौका मिला। संस्थान की मजबूत पढ़ाई बेहद उपयोगी साबित हुई।
0: ऑफिशियल इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के इतिहास में कोटा कोचिंग के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन शानदार रहा। संस्थान के छात्रों ने अब तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल 188 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें 90 गोल्ड, 75 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।
1: कठिन 4 चरणों को पार कर मिली सफलता में हम आगे बात करें तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए छात्रों को कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले चरण में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स की ओर से आयोजित NSEP परीक्षा में कोटा के 138 छात्र चुने गए। इसके बाद होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा आयोजित दूसरे चरण में 20 छात्रों ने अगले दौर में जगह बनाई
0: और तीसरे चरण के ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप के बाद भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया। इसमें 4 छात्र कोटा कोचिंग के थे। आखिरी चरण में कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित फाइनल मुकाबले में 87 देशों के 381 दिग्गजों के बीच भारतीय टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर तिरंगा लहराया।
1: इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत का प्रभावशाली रिकॉर्ड और भी मजबूत हुआ है, जिसमें पिछले एक दशक में प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम पर जगह बनाई है। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों को ज्ञात प्रश्नों को तेजी से हल करना सिखाते हैं, जबकि ओलंपियाड में ऐसे प्रश्न आते हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया होगा। वहाँ पहले गहरी समझ, वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान की क्षमता ही काम आती है।
0: और इसलिए यह उपलब्धि केवल 5 छात्रों की नहीं बल्कि उन शिक्षकों, वैज्ञानिकों और संस्थानों की भी है जिन्होंने वर्षों तक इन प्रतिभाओं को निखारा। HBCSE के अनुसार भारत के लगभग 64% ओलंपियाड पदक विजेता आगे चलकर PhD करते हैं, लेकिन लगभग 32% ही भारत में स्थायी रूप से कार्य करते हैं। यह आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें प्रशिक्षित करने में तो हम सफल हैं, लेकिन उन्हें देश में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। IPHO का सिलेबस केवल 12वीं तक सीमित नहीं है, इसमें स्नातक स्तर के ये टॉपिक शामिल हैं: यांत्रिकी, आपेक्षिकता का सिद्धांत, विद्युत और चुंबकत्व में ट्रांजिएंट्स, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकीय भौतिकी, प्रकाशिक तरंगे और आधुनिक भौतिकी के बेसिक्स।
1: ये सफलता देश के राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम की मजबूती को दर्शाती है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र द्वारा किया जाता है। HBCSC ओलंपियाड कार्यक्रम के लिए भारत के नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है और एक कठोर बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया, ओरिएंटेशन कैंप और गहन कोचिंग के माध्यम से विज्ञान और गणित में प्रतिभाशाली पूर्व विश्वविद्यालय छात्रों की पहचान, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। DAE के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, हमारे युवा भौतिकविदों की ये अभूतपूर्व उपलब्धि राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।
0: उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 स्वर्ण पदक जीतना और संयुक्त रूप से विश्व में नंबर 1 स्थान प्राप्त करना भारत के छात्रों की प्रतिभा, समर्पण और वैज्ञानिक सोच के साथ HBCSE-TIFR ओलंपियाड कार्यक्रम के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने छात्रों के अभिभावकों, शिक्षकों और मार्गदर्शकों को भी बधाई दी और कहा कि उनकी सफलता कई और युवाओं को विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी और वैज्ञानिक शिक्षा और नवाचार में भारत की स्थिति भी मजबूत करेगी। DAE ने भारतीय टीम के नेताओं, HBCSE-TIFR के प्रोफेसर अन्वेष मजुमदार और सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई की डॉक्टर लीना जोशी, वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों IISER कोलकाता के प्रोफेसर आनंद दास गुप्ता और गोगेट जोगलेकर कॉलेज रत्नागिरी की निशा केलकर के साथ वैश्विक प्रतियोगिता के लिए टीम तैयार करने के लिए HBCSE में फिजिक्स ओलंपियाड मेंटर पूल को भी बधाई दी।
1: HBCSE के निदेशक प्रोफेसर अर्णब भट्टाचार्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भारत की निरंतर सफलता, दशकों से जारी निरंतर मार्गदर्शन, संस्थागत सहयोग और शिक्षकों एवं छात्रों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को वैश्विक पहचान दिलाने में DAE के वर्षों के निरंतर समर्थन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में मिली सफलता विज्ञान शिक्षा में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी और वैज्ञानिक प्रतिभाओं के पोषण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देश के भविष्य के नेतृत्व के लिए मजबूत नींव बनाने के प्रति DAE की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
0: JEE जैसी परीक्षाएं विद्यार्थियों को कठिन प्रश्नों को कम समय में हल करना सिखाती हैं, लेकिन ओलंपियाड में दुनिया कुछ अलग ही है। यहाँ प्रश्न ऐसा हो सकता है जिसे आपने जीवन में पहली बार देखा हो। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता, यहाँ सिर्फ याददाश्त नहीं जिज्ञासा काम करती है, सिर्फ सूत्र नहीं सोच काम करती है, सिर्फ अभ्यास नहीं नई समस्या को समझने की क्षमता काम करती है। और यही कारण है कि इन 5 युवाओं की उपलब्धि इतनी विशेष है।

0: इन युवा प्रतिभाओं ने यह साबित किया है कि भारत की प्रयोगशालाओं, विद्यालयों और कक्षाओं में बैठी प्रतिभा को यदि सही अवसर मिले तो वो पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकती है। तो आइए आज इन पांच युवा वैज्ञानिक प्रतिभाओं को दिल से सलाम करें, उनके माता पिता को बधाई दें, उनके शिक्षकों को नमन करें, उनके प्रशिक्षकों और वैज्ञानिक संस्थानों का अभिनंदन करें और अपने देश के हर उस बच्चे से कहें, सपने बड़े रखो, सवाल पूछो, जिज्ञासु बनो और सीखने से कभी मत रुको, क्योंकि अगला स्वर्ण पदक, अगली बड़ी वैज्ञानिक खोज और भारत का अगला विश्व स्तरीय वैज्ञानिक शायद आपके बीच ही बैठा हो।
1: भारत की महान प्रतिभाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने केवल अपने लिए सफलता हासिल नहीं की, बल्कि अपने ज्ञान और क्षमता को राष्ट्र की प्रगति से जोड़ा। इन महान व्यक्तित्वों की यात्रा हमें यही संदेश देती है कि प्रतिभा जन्म से मिल सकती है, लेकिन उसे महानता में बदलने के लिए मेहनत, अनुशासन, जिज्ञासा और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।
0: आज भारत के करोड़ों बच्चे और युवा अपने सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संभव है इन्हीं में से कोई भविष्य का महान वैज्ञानिक हो, कोई साहित्यकार, कोई कलाकार, कोई खिलाड़ी या कोई आविष्कारक जो भारत को दुनिया के सामने नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि भारत की प्रतिभा कभी रुकती नहीं, वो खोजती है, सीखती है, संघर्ष करती है और फिर दुनिया को अपनी क्षमता का परिचय देती है।
1: आप सुन रहे थे भारत के पांच युवा भौतिकी सितारों की ये स्वर्णिम गाथा। भारत की प्रतिभा को सलाम, जय हिंद। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, वाचन विजयकांत नायक और
0: मनीषा चतुर्वेदी,
1: लेखन विनीता जैन, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में आज हम आपको सबसे पहले लिए चल रहे हैं अध्ययन भवन में, जहां रविवार यानी 27 सितंबर की शाम नाटक कैक्टस फ्लावर का मंचन किया।

0: तुम्हारी आंटी का फोन आया था। अरे इसकी जो गुना बेस्ड आंटी है ना, वो ऑलवेज मुझे फोन कॉल करके इसके वेयर अबाउट्स पता करती है कि कॉलेज जाने से पहले इसने गैस की नॉब बंद की कि नहीं, पानी का टैप बंद किया कि नहीं, वेयर शी गोस, व्हेन शी गोस, विद हुम शी गोस एंड व्हेन शी कम्स बैक, सब पूछती है इसकी आंटी।
1: अच्छा, मौसी तो से ये सब कुछ पूछती है? हां, मौसी को तो अपने क्या ही बोलूं। हां,
2: तुम इसे जानती हो?
1: वसंत ऋतु के आते ही सभी पेड़ों पर बहार क्यों आ जाती है? क्या कोई जवाब? सच पूछो तो इस सवाल का जवाब खुद मुझे भी नहीं पता। बस से मिलकर अच्छा लगता है, इसका बड़ा सहारा लगता है, लगता है कि हमेशा साथ निभाएगा, आपकी धोखा नहीं देगा।
3: मैं और दीपक सिक्स स्टैंडर्ड से एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठे हैं।
1: हाँ, तो फिर आपको शादी के बाद देवर जी कहोगे?

और आइए अब रेडियो रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और आपको अध्ययन भवन से लिए चलते हैं शहीद भवन, जहां रविवार की शाम ही महफिल सजी पुराने फिल्मी नगमों की।

और आइए अब रेडियो रिपोर्ट में और आगे बढ़ते हैं और शहीद भवन से आपको लिए चलते हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां रविवार की शाम ही फिल्मी नगमों की प्रस्तुति दी गई।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर एक कई राम रहीम भजन संध्या, हनुमान अंश फेम और सुप्रसिद्ध गायक सुनील लोधी एवं दल द्वारा भजनों की प्रस्तुति।

2 अक्टूबर शाम 6:30 बजे अंजनी सभागार रविंद्र भवन परिसर भोपाल में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन का प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन। प्रवेश निःशुल्क।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने। आजाद हिंद।
1: नमस्कार मित्रों, आजाद हिंद कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन। आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूं इतिहास।
2: और मैं हूं तारीख। मेरा भी नमस्कार आप सभी आजाद हिंद के श्रोताओं को। इतिहास
1: जी,
2: मेरी तो एक ही जिज्ञासा रहती है, एक ही सवाल होता है
1: कि आज कौन सी शौर्य गाथा है।
2: जी बिल्कुल, है ना, बताइए ना।
1: जी, आज फिर बारी है बंगाल के क्रांतिकारियों की गौरव गाथा की। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में बंगाल और बंगाल के क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान है, ये तो आप और हमारे श्रोता अच्छी तरह जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, पुलिन बिहारी दास और मास्टरदा, ऐसे कितने और भी नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने योगदान से देश को आजादी दिलाई।
2: इतिहास
1: जी,
2: अभी भी आपने नहीं बताया कि वो कौन से क्रांतिवीर हैं जो हमारी आज की गौरव गाथा के नायक हैं।
1: जी, आपके साथ हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे।
2: बिल्कुल,
1: तो आज हम बात करते हैं एक नहीं दो क्रांतिकारियों की, और वो हैं मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण रॉय।
2: जी हाँ,
1: 1930 का साल, पूरे देश में क्रांति की आग फैली हुई थी। हमारे राजनेता देशभक्त अपने अपने मोर्चों पर लगे हुए थे और हर एक क्रांतिकारी, हर देशभक्त और हर भारतवासी की एक ही अभिलाषा थी, और वो थी भारत की आजादी।
2: आजादी पाने की इसी अभिलाषा ने बंगाल के क्रांतिकारियों में भी जोश भर दिया। बंगाल के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था।
1: जी,
2: देश के बाकी हिस्सों की तरह मिदनापुर भी ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों का शिकार था।
1: मिदनापुर में उन दिनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे। भारतीय चाहते थे कि अपने देश का ही नागरिक वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने प्रण किया कि हम मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तब तक मारते जाएंगे जब तक उस पद पर कोई भारतीय नियुक्त नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने इनकी बातों पर जरा भी गौर नहीं किया।

0: मिदनापुर के एक विद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। उस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी को बुलाया गया। 7 अप्रैल 1931 को प्रदर्शनी का उद्घाटन करने शाम 7:30 बजे श्री जेम्स वहां आए। विद्यालय के कई कमरों में प्रदर्शनी लगाई गई थी।
1: विद्यालय के पहले कमरे में जेम्स पेड्डी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी के बाकी हिस्सों को देखने के लिए वो दूसरे कमरे में पहुंचे। वे जैसे ही कमरे में घुसे, एक नौजवान ने रिवॉल्वर निकाली और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही वो वहां से भागे, एक दूसरे क्रांतिकारी ने उनका पीछा किया और उन पर लगातार गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरे विद्यालय में भगदड़ मच गई। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के लिए कलकत्ता से खास डॉक्टर भी बुलवाए गए। डॉक्टर आए और ऑपरेशन से जेम्स पेड्डी के शरीर से एक गोली निकाली।
0: अगली सुबह एक ऑपरेशन और किया गया और उनके शरीर से एक और गोली निकाली गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हालत इसके बाद भी लगातार बिगड़ती गई और 8 अप्रैल 1931 को उनकी मृत्यु हो गई। मिदनापुर के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारने का जो प्रण किया था, उसकी पहली कड़ी में वे सफल रहे।
1: डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेम्स पेड्डी की मौत से अंग्रेज सरकार बौखला गई, लेकिन क्रांतिकारियों के आगे वो झुके नहीं। जेम्स पेड्डी की जगह एक और अंग्रेज को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका नाम था रॉबर्ट डगलस।
0: रॉबर्ट डगलस ने मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम संभाल तो लिया, लेकिन वे शुरू से डरे हुए थे
1: जी।
0: उन्होंने अपने भाई और कुछ मित्रों को पत्र भी लिखे जिसमें उन्होंने इस डर का भी जिक्र किया। सरकार ने उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी किए, लेकिन क्रांतिकारियों के इन धमकियों से सरकारी कामकाज रोका तो नहीं जा सकता था। 30 अप्रैल 1932 को मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी। श्री डगलस इस बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। मीटिंग में कई सदस्य हिस्सा ले रहे थे। मजिस्ट्रेट डगलस फाइल के कागजातों पर हस्ताक्षर भी करते जा रहे थे। इतने में दो नौजवान डगलस के कमरे में घुसे। दोनों ने एक साथ डगलस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक 8 गोलियां डगलस के शरीर में समा गई।
1: गोलियां चलाकर दोनों नौजवान भागे। पुलिस ने पीछा किया। उनमें से एक पुलिस की गोली से घायल होकर गिर पड़ा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारी का नाम था प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। उसकी तलाशी ली गई और जेब से एक पर्चा निकला जिसमें लिखा था, हिजली जेल में कैदियों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों का ये हल्का प्रतिरोध है। हमारे बलिदानों से अंग्रेज सरकार को ये सबक लेना चाहिए और भारतीयों को भी इन बलिदानों से जाग जाना चाहिए।
0: हिजली जेल में कैदियों पर 16 सितंबर 1931 की रात जेल के सिपाहियों ने मिलकर लाठियों से प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसमें संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर दत्त नाम के दो क्रांतिकारी मारे गए। इसी घटना के बारे में प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य ने पत्र में लिखा था जो उनकी जेब से बरामद किया गया था।
1: घायल डगलस को अस्पताल ले जाया गया। खड़गपुर से ऑपरेशन के लिए डॉक्टर भी बुलवाए गए, लेकिन डगलस को बचाया नहीं जा सका। प्रद्योत भट्टाचार्य को पुलिस ने बड़ी यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे साथी का नाम नहीं बताया।
0: प्रद्योत भट्टाचार्य पर विशेष अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा दी गई। 12 जनवरी 1933 की सुबह प्रद्योत भट्टाचार्य को फांसी दे दी गई।
1: रॉबर्ट डगलस की मृत्यु के बाद पीईजी बर्क को मिदनापुर का नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाया गया। पिछले दो अधिकारियों की हत्या से नए अधिकारी बर्क घबराए हुए थे और उन्होंने अपनी हिफाजत के और भी कड़े इंतजाम किए थे।
0: 2 सितंबर 1933 को मिस्टर बर्ग की टीम टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्ट्स क्लब के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। श्री बर्ग निर्धारित समय पर मैदान पहुंचे। उनके अंगरक्षक भी उनके साथ थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बर्ग मैदान में उतरे और खेलने लगे। जिस खिलाड़ी से गेंद छीनने के लिए वे आगे बढ़े, उस खिलाड़ी ने रिवॉल्वर निकालकर उन पर गोलियां चला दी। उन पर गोली चलाने वाले क्रांतिकारी का नाम था ब्रिगेंद्र कुमार दत्त। उसके साथ खड़े दूसरे खिलाड़ी ने भी बर्ग पर गोली चला दी। गोली चलाने वाले इस दूसरे क्रांतिकारी का नाम था अनाथ बंधु पांजा। 6 गोलियां खाकर मजिस्ट्रेट बर्ग जमीन पर गिर पड़े और कुछ ही क्षणों में उनकी मौत हो गई।
1: पास में खड़े पुलिस अधिकारी ने मृगेंद्र को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बर्ग के अंगरक्षकों ने उस पर गोली चला दी। क्रांतिकारी मृगेंद्र नीचे गिर पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए।
0: दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पांजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और मैदान में ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले दिन ब्रिगेंद्रनाथ दत्त की मौत अस्पताल में हो गई।
1: इसी बीच खेल के मैदान को पुलिस ने घेर लिया। खेल को रोककर सभी दर्शकों की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद 3 और क्रांतिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन क्रांतिकारियों में निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय थे।
0: इन 3 पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रॉय को 25 अक्टूबर और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को मिदनापुर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।
1: अपने 3 अधिकारियों की मौत के बाद अंग्रेज सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों से आखिरकार हार माननी पड़ी और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर एक और भारतीय को ही चुना गया।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।

0: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ हैं वैद्य आचार्य प्रदीप त्रिपाठी जी। आप आयुर्वेद रत्न, नारी परीक्षण, स्वास्थ्य और प्रकृति की बेहतर समझ से दूसरों को भी स्वास्थ्य लाभ हेतु मार्गदर्शन देते हैं। आप भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश शाखा के महासचिव थे। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में छात्र समूहों के साथ आप बहुत सक्रिय शख्सियत हैं। जड़ी बूटियों पर आपकी काफी शोध कार्य है। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम आज आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि आयुर्वेद क्या है और किस सिद्धांत पर काम करता है।
1: देखिए, आपका बहुत ही मूलभूत प्रश्न है जो लोगों के मन में आयुर्वेद को लेकर होता ही है, क्योंकि ये एक ऐसी जीवन पद्धति, एक ऐसी लाइफस्टाइल, अगर इसको हम दो शब्दों में विभाजित करने की कोशिश करें तो आयु और वेद्य
0: जी,
1: दो चीज। वेद तो वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान का भंडार, जैसे अपने जानते हम चार वेद, उसी पे से आधारित वेद है। और दूसरा है आयु का विज्ञान, तो आयु को मतलब स्वास्थ्य को जीने की कला, ये जो इस पद्धति का विकास हुआ यही आयुर्वेद है। और जो आयुर्वेद के सिद्धांत की जहां तक हम बात करते हैं, तो आयुर्वेद से अलग परे हटके भी भारत की संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि हम पंच महाभूत से बना हुआ हमारा शरीर है, प्रकृति है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसका मिश्रण से ही सब कुछ निर्मित है। तो आयुर्वेद का सिद्धांत भी मूल सिद्धांत इसी पे काम करता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर तीन प्रकार के चीजों से मिश्रित है, जिसको हम दोष के रूप में कहते हैं। तो आपने सुना होगा वात पित्त कफ, आयुर्वेद में आग कफ जाना जाता है। ऐसे ही एक कहा जाता है धातु, जो शरीर की स्ट्रेंथ है, विभिन्न रूप में शरीर में अलग अलग रस, मज्जा, मांस इत्यादि है, जिसको हम धातु के रूप में परिभाषित करते हैं। और तीसरा है मल, जो विजाति तत्व, टॉक्सिन शरीर में है, उसको ऐसे तीन भागों में विभाजित करके मानव शरीर की कल्पना की गई है। इससे संबंधित इसको जीने के लिए हर प्रकार की चीजें जो प्रकृति में है, जैसा कि मैंने बताया, सब चीजों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति में इन चीजों से जो भी मिश्रित है उसका शरीर पर प्रभाव है, और इस प्रभाव का आकलन, इस प्रभाव का शरीर पर प्रभाव, उससे होने वाली अच्छी बातें, उससे होने वाली नकारात्मक चीजें, इसको जीने की कला ही आयुर्वेद है।
0: आपने कहा कि जीवन जीने की कला ही आयुर्वेद है, लेकिन अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कला विस्मृत हो रही है लोगों के दिलो दिमाग से, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद के बारे में, लगभग सृष्टि के जब प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ, तभी से समकालीन आयुर्वेद का भी उद्भव है, ऐसा माना जाता है। इसलिए जो अभी तक प्राचीनतम साहित्य उपलब्ध है, जिसको हमने अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब कहा है, इन सब में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का उल्लेख आता है
0: जी।
1: तो प्रकृति के उद्भव से लेके आज तक आयुर्वेद है
0: जी।
1: और अगर कोई चीज इतनी पुरानी है, इतनी सनातन परंपराओं से चली आ रही है प्रकृति में, तो निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर, चूंकि मनुष्य जब से प्रकृति में मनुष्य आया है तब से उसका शरीर है, और शरीर पर पड़ने वाला सारा प्रभाव आज भी वैसा ही है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप पंच तत्व से हम निर्मित है, तो उन पंच तत्व को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, चाहे वो मानवीय हो, चाहे वो वैज्ञानिक कारणों से विकास के कारण आ गए हो, या अन्य अन्य कारणों से नैसर्गिक रूप से कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, उन सब का प्रभाव मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर पर पड़ने वाला है। अब कई सारी चीजें हमने कई बार अपने यहाँ कहा जाता है ना फुटप्रिंट, तो पुराने ऐसे लोग, मोहनजोदड़ो में बहुत सारी चीजें मिली, जीवन के बहुत सारे प्रमाण मिले, तो उसको हम फुटप्रिंट के रूप में याद करते हैं
0: जी।
1: तो अभी मानव उत्पित फुटप्रिंट है एक पॉलिथीन, तो प्रकृति में जो तत्व था ही नहीं, मानव ने विकास के कारण, अपनी आवश्यकताओं के कारण, उसकी सहजता के लिए उसने एक चीज का इजाद किया, उसका नाम पन्नी था, पॉलिथीन था। और धीरे धीरे पॉलिथीन, जो कि प्रकृति में नष्ट नहीं हो सकती
0: जी,
1: वो पॉलिथीन हमारे जीवन में शामिल हो गई। एक फुटप्रिंट पॉलिथीन के नाम से भी प्रकृति में है, वो पानी को प्रभावित कर रही है, वो मिट्टी को प्रभावित कर रही है, वो सामान्य जीवन में प्रकृति के जो पांचों तत्व मैंने बताया सबको जाने अनजाने में प्रभावित कर रही है, वायु को प्रभावित कर रही है
0: जी।
1: तो जो चीज प्रकृति ने दी ही नहीं थी,
0: हाँ,
1: हमने अपनी आवश्यकता के लिए उसको विकसित किया, और वो टॉक्सिसिटी से भरपूर थी, अब वो पन्नी हमारे शरीर को प्रभावित करने वाली जब तक उसका अस्तित्व है। तो जीवन शैली में जो भी ऐसी चीज है जो विजाती है, जो टॉक्सिसिटी रखती है, वो मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालने वाली है। अब मनुष्य को उसके जीने की कला सीखना चाहिए
0: जी,
1: उसके साथ कैसे सामंजस्य बिठाना है। विकास समय की आवश्यकता है,
0: बिल्कुल।
1: उस विकास को हम मनुष्य, जो रिसर्च हमारी है, जो रिसर्च के हमारे सारे दुनिया जिसमें कर रही है काम, अगर वो प्रकृति का अनुकूल हो तो वो अपने आप मानव के लिए अनुकूल हो जाएगी। मनुष्य जीवन के लिए, इवन जितने भी जीवित जिनको हम कहते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे कुछ भी, सब पे प्रभाव पड़ता है। तो प्रकृति के साथ हमको सामंजस्य बिठाना होगा, संतुलन बिठाना होगा, और विकास करते समय हमको हर उन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा जो प्रकृति के लिए हार्मफुल है
0: जी।
1: ये सब चलता रहेगा, इसके चलते चलते हम अपने स्वास्थ्य के लिए जितना मूल मंत्र है उसको समझना चाहिए। आयुर्वेद भी बस इतनी ही बात कहता है कि आपके शरीर में जो भी तत्व जाने वाला है वो आपकी शरीर की प्रकृति रुचि के अनुसार होना चाहिए। कई लोग से पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, वो बताते हैं मुझे पौधे लगाना अच्छा लगता है, मुझे खेलना अच्छा लगता है
0: जी।
1: वैसे शरीर की भी रुचि होती है
0: जी।
1: हर शरीर अपने हिसाब से कहता है कि मुझे मीठा खाना पसंद है, मुझे नमकीन खाना पसंद है, मुझे कड़वा अच्छा नहीं लगता है, मुझे और किसी प्रकार का रस अच्छा लगता है। तो जैसे मनुष्य की मानवीय रुचि है वैसे शरीर की भी अपनी एक रुचि है। अगर उस रुचि को मनुष्य पहचान ले, उसके अनुसार जीना चालू कर दे, तो कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है।
0: यहाँ मेरा एक मन में बहुत बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि अपने शरीर की रुचि को पहचानिए, लेकिन अभी जो एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि शक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए, मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए, और किसी को अगर मीठा अच्छा लग रहा है तो ये सबके लिए एक जैसी चीज जो सुनने में आ रही है, इसके लिए क्या कहेंगे आप?
1: प्रकृति ने आपको मीठे के नाम पे कुछ दिया था, गन्ना दिया था, अनाजों की और फलों में नैसर्गिक मिठास दी थी, हम उससे कदम एक आगे बढ़े और हमको लगा कि नहीं हमको तो कुछ और ज्यादा मीठा चाहिए
0: जी।
1: हमने अपनी पूर्ति के लिए उस अतिरिक्त स्वाद के लिए जो प्रकृति ने नहीं दिया था
0: जी,
1: प्रकृति ने जो दिया उससे हम एक कदम आगे बढ़े और हमने शक्कर का निर्माण किया
0: जी।
1: तो हमने निर्माण तो किया, लेकिन निर्माण करते समय, शक्कर बनाते समय जो प्रोसेस थी, वो प्रोसेस में हम उन सब केमिकल को शामिल कर लिया जो शरीर के लिए नुकसानदायक
0: जी।
1: शरीर की आवश्यकता तो थी, लेकिन क्या रासायनिक युक्त शक्कर की आवश्यकता नहीं थी। हम क्यों, हमारे पास प्रकृति ने भरपूर संसाधन दिए थे उसकी पूर्ति के लिए, भरपूर फल ऐसे दिए थे, भरपूर सब्जियां ऐसी दी थी जिसमें नैसर्गिक मिठास
0: होती है,
1: लेकिन हम उससे एक कदम आगे गए। और जो कहते हैं ना उपयोग और उपभोग, तो हमने उपभोग के लिए कई सारी चीजों को विकसित कर लिया, यही आयुर्वेद और यही संतुलन, सामंजस्य प्रकृति के साथ, सामंजस्य मनुष्य के स्वयं के शरीर के साथ, सामंजस्य संतुलन का विषय महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग, ये तीनों ही शब्द आजकल बहुत सुनने में मिल रहे हैं, इनका आपस में क्या संबंध है या ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं?
1: हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आज के समय बहुत प्रासंगिक है
0: जी।
1: हमारे एक अवधारणा बहुत पहले से ही प्रचलित है, भारतीय दृष्टिकोण हर चीज को समग्र रूप से देखने का है, सबको समान रूप से सम्मिलित करके देखना। जब आयुर्वेद जब पहले आया था, जिस समय आयुर्वेद का उदय हुआ, जब मैंने बताया तो प्रकृति के साथ साथ ही आयुर्वेद है, कुछ भी अलग नहीं था, ये सब एक ही ब्रांच से निकले हुए अलग अलग शाखाएं थी। धीरे धीरे धीरे समय काल परिस्थिति में, जैसे कि होता ही है, लोगों को अपनी एक ब्रांच पकड़ के उनको लगता है कि हम इसको अकेले लेके बढ़ने वाले, अकेले लेके चलने जाले, तो वैसा ही आयुर्वेद के साथ हुआ। और प्राकृतिक चिकित्सा अलग हो गई, योग अलग हो गया। इवन दो प्राकृतिक चिकित्सा को देखने वाले लोगों ने कई बार, तो मैं पढ़ता हूँ, मुझे आश्चर्य भी होता है, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन नेचुरोपैथी में किया है, तो अध्ययन के दौरान मैं जो साहित्य पढ़ता था, जो बुक समरी थी, उसमें मैं देखता था कि वो आयुर्वेद के प्रति नकारात्मकता का भाव था, जबकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा एक दूसरे के पूरक है। आयुर्वेद के बिना प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, और प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक अंग ही है, तो उसको अलग करके तो देखना ही नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल
1: वैसा ही योग का है। जब मैंने पहले कहा कि जीवन जीने की पद्धति, जीवन जीने की कला, ये आयुर्वेद बताता है, तो आयुर्वेद में चाहे वो व्यायाम के रूप में हो, चाहे प्राणायाम के रूप में हो, चाहे विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी सूक्ष्म जो गतिविधियां होती है जिसको हम सूक्ष्म योग कहते हैं, वो सब आयुर्वेद में ही था, आयुर्वेद के ही ये सब अंग हैं, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन दुनिया की दृष्टि, भारत को, भारत के विचार को समझने के लिए भी शायद बहुत समय लगेगा
0: जी।
1: तो विश्व स्तर पर जो लोग शोध करता हुए, जिन्होंने अलग अलग ब्रांचों पर रिसर्च की, जब हमारे यहाँ कई सारे, हम कहते हैं कि भारत में बहुत सारे बाहर के लोग आए, भारत का ज्ञान लिया और भारत से बाहर गए
0: जी।
1: जब वो बाहर गए तो उन्होंने अपनी जो भी सोच समझ उनकी जितनी भी था, हमारे पूर्वजों ने और हमारे जो विषय विशेषज्ञ थे, हमारे जो जानकार लोग थे, उन्होंने तो कभी इसको अलग अलग नहीं किया
0: जी।
1: लेकिन जब ये ज्ञान वहां से वापस लौट कर आया तो ये बिल्कुल विभाजित हो गया, इसको कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये सब अपूर्ण हो गए। तो इसलिए कई सारी बीमारी आती है तो हम उसको कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में ये करिए, लेकिन अब नहीं हो पाता है ठीक, नहीं हो पाता तो प्राकृतिक चिकित्सक या फिर आयुर्वेद या फिर योग सब उसको हाथ जोड़ के मना कर देते हैं। अगर इसको समग्र रूप में देखा जाता तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बीमारी ऐसी होती जिसका समाधान आयुर्वेद या उसकी विभिन्न प्रकार की शाखाएं नहीं कर पाती, तो इसलिए समग्र रूप से इसको देखना चाहिए। इसको आयुर्वेद से निकली हुई भारतीय जीवन पद्धति में ही विभाजित विभिन्न प्रकार की ब्रांचेस मानना चाहिए।
0: बिल्कुल, अगर हम आयुर्वेद को समग्रता से देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता का भी हमारे भीतर जागरण होता है। लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति की जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में, अब तो यहाँ तक बात आ गई कि लोग घर बनवाते वक्त ये भी ख्याल रखने लगे हैं कि अस्पताल पास में है या नहीं, कितनी दूरी पर है। आयुर्वेद और हमारे यहाँ की पद्धति ये कहती है कि आप स्वस्थ होइए, परंतु अभी हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने बीमार होने की चिंता ज्यादा कर रहा है, वस्तुतः हम ये नहीं सोच पाते कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति को और आयुर्वेद को आप किस तरह देखते हैं?
1: देखिए, आयुर्वेद का मंत्र है स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे।
0: जी,
1: स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद है।
0: जी,
1: अब व्यक्ति बीमार हो गया तब फिर उसको चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, और आयुर्वेद में उपचार बहुत छोटा सा भाग है। स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे इसलिए उसको क्या आहार होना चाहिए, क्या उसका विहार मतलब उसकी दिनचर्या क्या होना चाहिए, उसका रहन सहन खान पान कैसा होना चाहिए, आम भाषा में बोलूं तो इस पे पूरा आयुर्वेद का फोकस है।
0: जी,
1: और मॉडर्न मेडिसिन में उसमें बीमारों के उपचार के लिए विधान है।
0: जी,
1: आयुर्वेद का सिद्धांत जो मैंने पहले आपको बताया वो है बीमार व्यक्ति का उपचार के लिए। तो ठीक है, आयुर्वेद ने बहुत कुछ कहा भी है, लेकिन उससे ज्यादा भाग जो है 70% आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे। इवन दो जो माँ बच्चे को जन्म देने वाली है वो बच्चा स्वस्थ हो उसके लिए 1-2 साल पहले से आयुर्वेद में कहा गया।
0: जी,
1: तो गर्भ संस्कार जिसको कहा है वो गर्भ संस्कार संस्कार कहा है वहां पर। संस्कार मतलब एक गर्भ धारण करने से पहले एक बहन को एक माँ को अपने शरीर को किस प्रकार से रखना चाहिए कि ताकि उसका बच्चा जो होने वाला है भविष्य में जो जन्म आने वाला है प्रकृति पर वो भी किस प्रकार से स्वस्थ, तो आयुर्वेद तो वहां से सोचना चालू करता है।
0: आपने जब बात कही गर्भ संस्कार की तो मुझे एक चीज और याद आ रही कि दादी नानी के नुस्खे में बच्चों के लिए पहले घुट्टी बनाना और बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये दादी नानी के नुस्खे वापस फिर से छाने लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो ये बहुत अच्छा है कि आयुर्वेद किसी न किसी रूप में हमेशा से आम जनमानस के बीच में बना हुआ है।
0: जी
1: हाँ, बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। किसी समय जब ये सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था, पुस्तकें छपा करती थी, उस समय बहुत सारी दादी के 100 नुस्खे, नानी के नुस्खे ऐसी किताबें आती थी, मुझे याद है।
0: जी।
1: उसके पहले भी जब पुस्तकें नहीं हुआ करती थी तो परंपरागत रूप से परिवारों में जो घर का बुजुर्ग या घर का जो सीनियर सदस्य होता था वो खुद इतना जानकार होता था कि उसको क्या चीजें कब खाना है, नहीं खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, वो सब पता होता था। धीरे धीरे समय बदला, विज्ञान आया, विज्ञान ने कुछ प्रिंटिंग उपलब्ध कराई तो एक किताबें आने लगी। किताबों के बाद फिर डिजिटल मीडिया आ गया और काफी कुछ आयुर्वेद उसमें चलता है।
0: जी।
1: तो आयुर्वेद में भी शोध की, रिसर्च की जो पहले लोग कर गए हैं अभी तो उसको डिकोड करना ही बाकी है।
0: जी।
1: चूंकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बाहरी जो इन्वेजन हुआ भारत में, उस इन्वेजन के कारण हमारी जो मूल चीजें थी वो या तो लुप्त हो गई या उसको प्रयास पूर्वक लुप्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये विज्ञान की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से मैं बताने जा रहा हूँ, कई सारी चीजें उसमें ऐसी आ गई जो शायद धरातल पे थी ही नहीं।
0: जी।
1: जो ये सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया में स्वानुभूत, मतलब मैंने कोई चीज खा के अनुभव की और मैंने कोई ठंडा पानी पिया और ठंडा पानी पीने से मेरी एसिडिटी खत्म हो गई, मैंने अपना एक वीडियो बनाया और उस पर डाल दिया।
0: बिल्कुल।
1: आयुर्वेद कहता है, जो विज्ञान अब मानने लगा है, विज्ञान ने बहुत बाद में मानना चालू हो गया, प्रत्येक मनुष्य का डीएनए अलग है। ये जब डीएनए पे थ्योरी आई तब बात सिद्ध हुई, बट आयुर्वेद में तो बरसों बरस से, इसलिए हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की तासीर अलग है, हर व्यक्ति के पर प्रभाव पड़ने वाली चीजें अलग अलग है, तो कैसे जो एक दूसरे पे काम कर रही है कोई औषधि या कोई वनस्पति या कोई आहार, वो दूसरे पे भी काम करेगा? कर ही नहीं सकता, असंभव है। आयुर्वेद तो नैनो टेक्नोलॉजी है।
0: जी।
1: तो इसलिए जो एक व्यक्ति पे एप्लीकेबल है वो दूसरे पे एप्लीकेबल होगा, इसका कोई आधार नहीं है।
0: जी।
1: इसलिए मेरा इस पे निवेदन है कि जो हम सोशल मीडिया देखते हैं इसको देखें, नॉलेज बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के पहले आयुर्वेद का जो भी जानकारी रखता है, जो भी ज्ञान रखता है, उससे कंसल्ट जरूर करें, उसकी सलाह जरूर लें। छोटी से छोटी चीज भी शरीर पे अगर जो फायदा पहुंचाती है तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना होता हो।
0: जी।
1: कई बार कह दिया जाता है कि नहीं नहीं आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप ज्यादा रोटी खा लेंगे वो भी नुकसान करती है। ज्यादा पानी पी लेंगे तो भी नुकसान करता है, ज्यादा आंवला भी, आंवला तो कहते हैं ना अमृत है, बट ज्यादा आंवला खा लेंगे तो भी तिल्ली को नुकसान हो जाएगा, जिसको स्प्लीन बोलते हैं वो डैमेज हो जाएगी, ज्यादा प्याज खा लेंगे, ज्यादा आलू खा लेंगे, ज्यादा मिर्ची खा लेंगे, जब ये सामान्य सी चीज नुकसान पहुंचा सकती है तो कोई आप मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी, सबका साइड इफेक्ट होता है।
0: आपकी बात सुन के जो मुझे ख्याल आ रहा है वो ये कि 20 सेकंड की रील में इतना सारा ज्ञान देखने को मिल रहा है आजकल। वहाँ ये बात जरूर कहना लाजमी है कि गोंद कतीरा किसी एक को ठंडक पहुँचा रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि उसका एक पूरा ट्रेंड चल जाए और सबके सब वही लेने लगे। वहीं आजकल बीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और सब लोग तुरंत उसको चालू भी कर देते हैं, गर्म पानी का भी किसी को नुकसान किसी को फायदा। तो आपकी बात से एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि हर व्यक्ति अलग है, तो हर व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट है हमें उससे ज़रूर एक बार राय मशवरा करना चाहिए, इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया की रील्स देखकर कम से कम विश्वास ना करें।
1: इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसा आयुर्वेद तो आम व्यक्ति की पहुँच का है
0: जी,
1: तो किसी समय आज से 50-100 साल पहले समय मान सकता हूँ, घर की माँ या दादी नानी जो जन्म लेता था बच्चा, उसकी ज्योतिषी गणना के बाद, उसकी तासीर उसको देखने के बाद, और जन्म लेने के पहले माँ को देखने के बाद ये बता, जो गर्भवती महिला होती थी उसको देख के बता देते थे कि लड़का होगा या लड़की होगी
0: जी,
1: उसके शरीर के आकार स्वभाव रूप स्वरूप को देख के बता देते थे कि इसकी प्रकृति वात होगी, पित्त होगी, कफ होगी
0: जी।
1: ये हमारे पूर्वजों का अनुभव था, क्योंकि हमें सिखाया गया था, हमारा अध्ययन, इतना अध्ययनशील लोग थे हम, इतने ज्ञानवान लोग थे हम लोग, कि हमको ये सब चीज पता होती थी कि जो जन्म लिया हुआ बच्चा है इसकी प्रकृति क्या है। तो घर की माँ जानती थी कि उसके बच्चे की तासीर क्या है, घर की दादी दादा नाना नानी जानते थे कि उसकी बच्चे की तासीर क्या है, इसलिए उसको जीवन भर किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें उसको खिलाना है, कौन सी चीजें नहीं खिलाना है, ये बचपन से जन्म लेने वाले समय घर के लोगों को पता होता था
0: जी।
1: लेकिन जो सोशल मीडिया पे ज्ञान चलता है, जो ज्ञान दे रहा है उसको नहीं पता है कि उसका ज्ञान कौन लेने वाला है, वात वाला ले रहा है, कफ वाला ले रहा है, पित्त वाला ले रहा है, उसने तो कहा मेरे घुटनों में दर्द है, गोंद कतीरा खाइए, उसमें सब्जा के बीज मिलाइए और ये खाइए, लेकिन कफ प्रकृति है, उसकी वात प्रकृति है, उसकी कौन सी प्रकृति है, कौन से ऋतु में वो लेने वाला है, कुछ भी नहीं है
0: जी।
1: तो इसलिए मेरा मानना ये है और सलाह है ये विशेष रूप से कि कृपया उस ज्ञान को, जानकारी लीजिए, अच्छी बात है, बट उसको अप्लाई
0: बिल्कुल बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के अपने शरीर पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी अच्छे नहीं होते हैं। एक और सवाल ये है कि कई बार ऐसा कहा जाता है, लोगों से सुना जाता है कि आयुर्वेद में डायग्नोसिस हो जाता है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, ये भ्रांति है या सच है?
1: इसमें दोनों बातें ठीक है
0: जी।
1: आज तो चूंकि बहुत प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, बहुत प्रकार की संसाधन उपलब्ध हैं, जिसके कारण कौन सी बीमारी है, किसको बीमारी है, वो पता चल जाता है
0: जी।
1: किसी समय में जो नाड़ी का एक ज्ञान हुआ करता था, अब वो लुप्त प्राय है, नहीं मिलता है ऐसा ज्ञान। तो लोग जो वैद्य होते थे, जो नाड़ी वैद्य होते थे, वो नाड़ी पर हाथ रख के बता देते कि कौन सी बीमारी आपको है, कौन से ऑर्गन में है और कौन सी बीमारी होने की संभावना है। ये जो सबसे बड़ा ज्ञान था वो ये था कि आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद आपको ये बीमारी इस ऑर्गन में हो सकती है अगर आपने थोड़ी सी भी इस प्रकार की लापरवाही की
0: जी।
1: जो आज भी मिसिंग है, ये किसी मशीन में किसी इक्विपमेंट से आज के 10 साल बाद आपको कौन सी बीमारी नहीं बताई जा सकती, लेकिन हमारा नाड़ी वैद्य आज से 10 साल बाद क्या बीमारी हो सकती है वो बता दिया करता था। तो ये ज्ञान तो बहुत विकसित था। अब धीरे धीरे ये हुआ कि आज परीक्षण करना आसान है, हो जाता है, कई सारे तरीके हैं, हमारी प्रकृति क्या है ये पता चल जाए, लेकिन समाधान जो आपने पूछा है कि उसके ट्रीटमेंट में जैसा लोगों का परसेप्शन है, क्या आपने आइडेंटिफाई तो कर ली बीमारी, लेकिन सॉल्यूशन जो आपने दिया या दवाई जो आपने दी उससे फायदा नहीं हुआ मुझे। कुछ बात उनकी सही है, बट इसका अगर बहुत गहराई में आप जाएंगे तो एक बात यह है कि जब आयुर्वेद का कोई विशेषज्ञ बताता है कि आपके जो शुगर की या ये डायबिटीज की या ये ज्वाइंट पेन की जो बीमारी आई है ये सो एंड सो रीजन से, मरीज का प्रयास ये होता है कि मुझे 15 दिन बाद में ब्लड टेस्ट कराऊंगा वो ठीक हो जाएगी क्या, उसका टारगेट ये है कि मुझे 15 दिन बाद मेरी शुगर कंट्रोल आ जाए तो ही आयुर्वेद सफल है, उसका पैमाना नापने का अलग है
0: जी।
1: आयुर्वेद का उपचार का पैमाना बिल्कुल अलग है। आयुर्वेद रूट ऑफ कॉज में जाने का प्रयास करता है, क्योंकि हमारे पास कोई आयुर्वेद के जो जानकार लोग हैं उनको पता है कि उनके पास कोई ऐसा चमत्कारिक सॉल्यूशन नहीं होता है कि वो क्यों, क्योंकि आयुर्वेद में उनको दिया ही नहीं है ये फैसिलिटी, और फैसिलिटी नहीं देने के पीछे कारण है तो उसका मूल कारण यह है कि आयुर्वेद चाहता है कि कोई भी विकार आया है शरीर में, कोई भी बीमारी आई है, तो उसका जो रूट ऑफ कॉज है वो ठीक होना चाहिए। रूट ऑफ कॉज का पेशेंस जो लोगों के पास नहीं है, इसलिए लोग बहुत जल्दी राय बना लेते हैं कि डायग्नोसिस तो हो गया लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला. तो मेरा उन सबसे निवेदन ये है कि आयुर्वेद में सॉल्यूशन हर प्रकार से है.
0: अब हम आ जाते हैं वर्तमान जीवन शैली पर. क्या ये स्वास्थ्य के प्रति चिंताएं और चुनौतियां बढ़ा रही है?
1: बिल्कुल बढ़ा रही है. अभी प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है, पूरे देश से एक अपील है उनकी, और उन्होंने कहा कि देश में 10% तेल का उपयोग हर व्यक्ति को कम करना चाहिए. तेल का दुष्प्रभाव शरीर पर क्या आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री इसको समझ रहे हैं
0: जी.
1: इसका मतलब एक बात ठीक है, उनके पास ये डाटा है कि हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके कंपेयर में जितना हम कंजम्पशन ऑफ ऑयल कर रहे हैं वो शायद ज्यादा है,
0: ज्यादा है.
1: इसलिए उनकी अपील है. ज्यादा ऑयल का कंजम्पशन आप देखिए, आप पहले आयुर्वेद में, मुझे नहीं ध्यान है कि मैंने तो आज तक पढ़ा भी नहीं, अभी भी नहीं पढ़ा है कि किसी शास्त्रोक्त में सिद्ध साहित्य में पनीर का उल्लेख है. पनीर था ही नहीं. भारत में कहा जाता है कि दूध की नदियां बहती थी, इतना गोवंश हमारे पास तब भी था, आज भी है, कि उस गोवंश से जो भी उत्पाद होता था वो दूध मुख्य उत्पाद हुआ करता था. दूध से बनने वाले जितने उत्पाद हैं, बाय प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं, उससे चाहे घी बनता हो, चाहे मक्खन बनता हो. कृष्ण जी को मक्खन पसंद था, पूरा मक्खन का उपचार, लेकिन कृष्ण जी को पनीर पसंद नहीं था. जब हम मक्खन बनाना जानते थे, जब हम घी, दूध का अंतिम उत्पाद घी बनाना जानते थे, तो क्या हम पनीर बनाना नहीं जानते होंगे? बिल्कुल जानते थे, लेकिन पनीर हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं थी
0: जी.
1: लेकिन आज के समय में मुझे लगता है कि पनीर पे मैं क्या ही बोलूं तो अच्छा है, हर घर में क्या हो रहा है पनीर को लेके हम सब जानते हैं. बाहर हम जाते हैं रेस्टोरेंट में, हम क्या ऑर्डर करते हैं वो हम जानते हैं. किसी भी आप शादी पार्टी में चले जाइए, कम से कम एक दो डिश तो पनीर होती है. ऐसे ही आप जिसको हम फास्ट फूड कहते हैं, ये फास्ट फूड स्वाद के लिए हो सकता था, ये फास्ट फूड किसी दिन विशेष के लिए हो सकता था, ये फास्ट फूड डेली के लिए तो नहीं था. आज आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं कई सारे मेट्रोज में जाता हूँ लेक्चर वेक्चर देने, तो यंग जनरेशन के लोगों से जब, नव विवाहित लोगों से जब मेरी बात होती है, क्योंकि पति पत्नी दोनों जॉब में, तो वहां पर नया कॉन्सेप्ट चल रहा है किचन लेस होम. मतलब घर में किचन की जरूरत नहीं है,
0: नहीं है.
1: तो फूड कहाँ से आ रहा है? पैक फूड है. अब पैक्ड फूड में निश्चित रूप से उस खराब नहीं हो बनाने वाले की चिंता ये होगी. तो कोई चीज खराब ना हो उसके लिए प्रिजर्वेटिव ही तो एक ही मात्र समाधान है, कि आपको उसको प्रिजर्व करना होगा.
0: बिल्कुल.
1: तो जिस चीज में अगर प्रिजर्वेटिव मिला दिया है और वो आप खाने वाले हैं, तो शरीर का काम क्या है? जो फूड आप लेते हैं डे टू डे लाइफ में, शरीर का काम है उसको फर्मेंट करना. फर्मेंट करना मतलब सादा भाषा में बोलूं तो मैं उसको सड़ाना. और प्रिजर्वेटिव का काम क्या है? चीजों को सड़ने से रोकना. तो जो आप फूड ले रहे हैं उस फूड में प्रिजर्वेटिव शामिल है, वो कोशिश कर रहा है कि फूड ना सड़े. शरीर पूरी ताकत लगा रहा है कि जो इस व्यक्ति ने खाया है वो मैं इसको पूरा डाइजेस्ट कर लूँ, इसको सड़ा दूँ, इसको फर्मेंट कर लूँ, और फर्मेंट करने के बाद जो शरीर को लगना वो लग जाए. तो वाइस वर्सा हो गया. तो जो आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, जो आप फ्रोजन फ्रूट खा रहे हैं, जो आप जंक फूड खा रहे हैं, जो आप फास्ट फूड खा रहे हैं, सब में प्रिजर्वेटिव है. और आश्चर्य मुझे इस बात का है कि जो बीज लगा रहे हैं जिसको हम हाइब्रिड, पहले उसके अलग अलग शब्द चलते थे, उस पर नहीं जानना चाह रहा मैं, बट जो हाइब्रिड सीड है, वो हाइब्रिड सीड में इस बात का भी ट्रीटमेंट हुआ है कि उससे जो फल या सब्जी लगने वाली है उसके टेस्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं. आपको जान के आश्चर्य होगा, चीन से जो बीज भारत में आयात होते हैं फलों के सब्जियों के, उस बीज में टेस्ट इन्हांसर उसके बीज के समय ही डला हुआ है. मतलब वो स्वाद उस फल का नैसर्गिक भी नहीं बचा है. कलर भी, स्वाद भी, साइज भी
0: जी.
1: भिंडी आप पहले खाते थे, लौकी आप पहले खाते थे, आज भिंडी आपने, मुझे नहीं लगता बाजार में कोई भिंडी ऐसी मिलती है जो सब एकदम स्ट्रेट है, एकदम उंगली के समान सीधी. एक भी भिंडी आपको तिरछी टेढ़ी नहीं मिलेगी. एक भी लौकी आपको तिरछी आड़ी तिरछी नहीं मिलेगी. सब एकदम बढ़िया चमकती हुई फ्रेश फर्स्ट क्लास मिलेगी. किसकी देन है? ये केमिकल की.
0: बिल्कुल.
1: तो वेजिटेबल में जो पेस्टिसाइड यूज हुए
0: जी,
1: ये एक अलग भाग है. बट आपका जो प्रश्न है कि आज के समय का जो आहार है, दिनचर्या है, विशेषकर आहार, तो हम जंक फास्ट पैक्ड फूड जिसकी ओर जा रहे हैं, ये शरीर के लिए बहुत घातक है
0: जी.
1: जो मोटापे की समस्या बहुत तेजी से देश भर में बढ़ रही है. ये मोटापा आपको जान के आश्चर्य होगा उन देशों में बहुत ज्यादा है जहां पर बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाते हैं. बॉइल्ड वेजिटेबल्स. और हम तो उससे ऊपर चल के जंक और फास्ट फूड खा रहे हैं, तो हमारा तो भगवान ही मालिक है आगे क्या होने वाला है.
0: आपकी बात सुनकर जो मुझे एक सवाल जहन में आ रहा है कि पहले जिंदगी धीमी हो सकती थी पर यात्रा भी बड़ी धीमी होती थी. हॉस्पिटल तक, दवाइयों तक बहुत लेट एज में हम लोग पहुंचते थे. आज फास्ट फूड का जमाना है और हॉस्पिटल का जो हमारा दौड़ है वो भी बहुत फास्ट हुई है. अभी पिछले कुछ सालों से युवाओं में बहुत तेज़ी से कार्डियक अरेस्ट का, डायबिटीज़ का चलन आप भी देख ही रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है. तो कहीं ये इतनी फास्ट रन फास्ट फूड के कारण तो नहीं है?
1: नहीं नहीं, मैंने आपको कहा ना, वो देश जहाँ पर बॉइल्ड चीज़ें लेते हैं,
0: हाँ हाँ
1: बॉइल्ड ही खाते हैं, वो वहाँ पर ओबेसिटी बढ़ रही है. उस ओबेसिटी बढ़ने का कारण ये कि मेटाबॉलिक सिस्टम कमज़ोर है. भारत में तो परंपरागत रूप से ऐसा था कि हमारे यहाँ दक्षिण भारत पूरा मसालों से भरपूर कहा जाता है. आज भी
0: जी
1: दक्षिण भारत के मसाले पूरे भारत में जाते हैं, इवन विदेश जाते थे वो दक्षिण भारत के कारण. तो भारत में अंग्रेज आ गए थे, कोचीन में आए और सबसे पहले वहां से उन्होंने मसालों का व्यापार करना प्रारंभ किया. उन मसालों का महत्व भारतीयों को समझना चाहिए. वो दालचीनी का, वो जायफल का, वो जावित्री का, वो बड़ी इलायची का, वो लौंग का, वो हींग का, वो इम्पोर्टेंस जो हमने छोड़ा दुनिया आप समझ रही है. मैंने भी बताया बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाने वाले मोटापा हुए. हम तो सब प्रकार की चीजें खाते थे लेकिन हमारे मसालों का इतना साइंटिफिक यूज हमारी घर की गृहिणी करती थी कि हमें मोटापा हावी नहीं होता था.
0: बिल्कुल,
1: उन मसालों के कारण.
0: जी
1: अब धीरे धीरे हमारे जीवन में मसाले रिप्लेस हुए और जो फास्ट फूड में अजीनोमोटो जैसे बहुत सारे मसाले, कलर एनहांसर और पता नहीं क्या क्या डलता है, वो मसाले नैसर्गिक चले गए और ये दूसरे मसाले हमारे जीवन में आते चले गए. इन मसालों का प्रभाव ये हुआ कि जो हमारा मेटाबॉलिक था वो कमजोर होता चला गया. जो प्रिजर्वेटिव हमारे जीवन में बढ़ा उसने हमारे लीवर को फैटी लीवर में कन्वर्ट करता चला गया. जो हमारी इंटेस्टाइन थी जहाँ पे अम्ल से छार, छार से अम्ल का हमारा प्रोसेस होता था, वहां पर अम्लीता बढ़ती चली गई तो इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, एसिडिटी आ गई, लोगों के जीवन में डेली एंटासिड आ गया और उस एंटासिड से कई सारी समस्या आने लगी, बीपी बढ़ने लगी और पता नहीं क्या क्या समस्याएं धीरे धीरे जीवन में आ गई. अब अगर ये युवा पीढ़ी अवेयर नहीं होती, अब युवा पीढ़ी अवेयर जब होगी, जब उसको पता हो, वो पता घर के पेरेंट्स से होगा, माता पिता से होगा. माता पिता बता दे, बच्चा उसको समझ ले, एक चुनौती है. तो सबसे पहले हमको भारत के साहित्य पर, भारत के नॉलेज पर
0: जी,
1: भारत की जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो एंशियंट अपनी बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य है, नॉलेज है, इस पे बिलीव सिस्टम खड़ा करना होगा.
0: जी
1: अगर वो बिलीव सिस्टम नहीं खड़ा कर पाए तो हम दिनचर्या जो हम कहते थे ना पहले, सूर्य, एक सूर्य चिकित्सा होती है, आपने सुना होगा
0: जी.
1: अभी सूर्य चिकित्सा पे एक पुस्तक आती है जिसके लेखक विदेश के हैं, जर्मनी के एक सज्जन है, उन्होंने सूर्य चिकित्सा का सिद्धांत, अंग्रेजी बुक है वो, उस पर लिखा हुआ है. अब दुनिया में हमको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? बाहर से.
0: बाहर से
1: ज्ञान किस पे मिल रहा है? सूरज पे. सूरज को भारत के लोग क्या मानते थे? देवता मानते थे. एक महाभारत का प्रसंग है कि उनको कहा था कि सारे वस्त्र खोल के सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हें सूर्य की ऊर्जा मिल जाएगी, और वो अपना एक वस्त्र पहने रहते और बाद में वो वस्त्र शरीर का अंग कमजोर हो जाता और वहां पे शक्ति मारते और वो खत्म हो जाता है. मतलब सूर्य की एनर्जी की एनालिसिस जो हमने की वो दुनिया तो अभी कर रहा है, बहुत समय लगेगा दुनिया को वहां पहुंचने में.
0: जी.
1: उस सूर्य को हम जल चढ़ाते थे.
0: जी.
1: सूर्य को जब आप जल चढ़ाएंगे तो सूर्य की जो रोशनी आपके सुबह आपके शरीर पर पड़ती है, उसके शरीर को होने वाली कई सारी बीमारियां, विशेष करके आंख से संबंधित बीमारियां, जो आज की तारीख में हर बच्चे को चश्मा चढ़ा हुआ है, वो आंख से संबंधित बीमारी का बहुत बड़ा कारण था सूर्य को नहीं देखना.
0: जी.
1: अगर सूर्य की पहली किरण के उठ के साथ हमने सूर्य के दर्शन कर लिए होते, 10-12 सूर्य नमस्कार लगा लिए होते, शायद आंख की बीमारी नहीं होती. आज जो डिप्रेशन की बीमारी है जिसको हम मानसिक अवसाद कहते हैं, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, याददाश्त की हम कमजोरी कहते हैं जिसके कारण बच्चे की याददाश्त कमजोर हो जाती है, अगर उस बच्चे ने सूर्य नमस्कार लगाया होता, अगर उस बच्चे ने सुबह उठ के सूरज के दर्शन किए होते, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसको आंखों से संबंधित, स्किन से संबंधित, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होती. ये हमारे शास्त्रों में था. लेकिन कितने बच्चे अभी सुबह का सूरज उठ के देख पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत अच्छा रेशो है अभी.
0: जी.
1: प्रकृति में हमने पंचतत्व कहा, जिसमें पृथ्वी सबसे बड़ा तत्व है. अब उस पृथ्वी में हम कितने लोग अपने जीवन में रोज उस मिट्टी पे चल पा रहे हैं? 5 मिनट भी मुझे बताइए. घर में चलते हैं चप्पल पहन के, घर से निकलते हैं जूते पहन के. 24 घंटे में बच्चे तो छोड़िए, बुजुर्ग भी बड़े भी उस मिट्टी के संपर्क में आ रहे हैं. तो मिट्टी से तो हम डिस्कनेक्ट है.
0: बिल्कुल.
1: उस घास से हम डिस्कनेक्ट है जिस घास पे चलने से हमारे रक्त का संचार और शुद्ध प्राणवायु शरीर में बढ़ जाती थी. वो हमारे संपर्क में ही नहीं है.
0: जी.
1: तो मेरा कहना है कि बच्चों को महीने में एक दिन इन प्रकृति के सभी पांचों तत्वों से कैसे उसका कनेक्ट हो सकता है.
0: जी.
1: कम से कम कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए.
0: आपकी बातों से जो जाहिर सी बात है वो ये है कि अपनी जड़ों से जो जो हटा है वो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है. इसलिए लौटिए अपनी संस्कृति की तरफ, लौटिए अपनी उन अच्छी बातों की तरफ जो हमें बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही थी. मैं आपका आज बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप न सिर्फ हमारे स्टूडियो में आए बल्कि आपने इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी और बहुत स्पष्टता के साथ लोगों में आयुर्वेद को लेकर एक समझ बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी सुनने वालों का भी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रित अतिथि विशेषज्ञ थे वैद्य प्रदीप त्रिपाठी। इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनांकन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और आपके साथ थी मैं मनीषा चतुर्वेदी। कार्यक्रम आमने सामने अब समाप्त होता है। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: कुमारी मार्गरेट और नोबेल स्वामी जी द्वारा दी गई चेतावनी के बावजूद भारत आईं और कलकत्ता बंदरगाह पर स्वामी जी ने उनका स्वागत किया।
1: उन दिनों स्वामी जी के आदेश पर स्वामी शारदानंद अमेरिका में कार्यरत थे। उसके बाद स्वामी अभेदानंद ने अमेरिका जाकर वहां का कार्य संभाला और स्वामी जी को स्वदेश में कार्य संभालने के लिए शारदानंद जैसे धीर स्थिर कार्यकर्ता की जरूरत महसूस हुई और उन्होंने शारदानंद को भारत वापस बुला लिया।
0: श्रीमती बुल और कुमारी मैकलाउड ने भी भारत आने के लिए स्वामी शारदानंद के साथ ही 12 जनवरी को अमेरिका से प्रस्थान किया। मैकलाउड ने आने के पूर्व जब स्वामी जी से अनुमति मांगी तो उन्होंने उत्तर में लिखा था,
2: हाँ, यदि तुम गंदगी अवनति एवं निर्धनता देखना चाहो और कॉपीन पहने लोगों के मुख से धर्म चर्चा सुनना चाहती हो तो आ सकती हो। इनके अतिरिक्त और कुछ आशा हो तो मत आना। हम लोग अब और एक भी आलोचना सुनने को प्रस्तुत नहीं है।
0: इसके बावजूद कुमारी मैकलाउड लंदन होते हुए भारत आकर अपने दोनों संगियों के साथ 12 फरवरी को बंबई में उतरी और तुरंत ट्रेन पकड़कर 14 फरवरी को शाम के 4 बजे हावड़ा स्टेशन पर आ पहुंची। उन्होंने देखा कि स्वामी जी 10-12 शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हैं। दोनों महिलाएं स्टेशन से ही कलकत्ते के होटल में चली गईं और स्वामी जी शारदानंद मठ में आए। इन लोगों के पहले ही मार्गरेट और नोबेल अपने घर को छोड़कर जहाज से 28 जनवरी को कलकत्ता आ चुकी थी। पहले वे एक होटल में ठहरी और बाद में कुमारी मुलर के भाड़े के मकान में रहने चली गई। मार्च में नए मठ की जमीन और मकान का कब्जा मिल जाने पर उपरोक्त दोनों महिलाएं और कुछ दिन बाद निवेदिता भी उसी मकान में निवास करने लगी।
1: इसके थोड़े ही दिन बाद श्री रामकृष्ण देव का जन्म दिवस आ गया। महोत्सव की व्यवस्था का भार स्वामी जी ने स्वयं ग्रहण किया। इस दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने घोषित किया कि वे श्री रामकृष्ण के तथा अपने अब्राह्मण शिष्यों को जनेऊ प्रदान करेंगे। शिष्य श्री शरद चंद्र चक्रवर्ती को उपनयन संस्कार व गायत्री मंत्र प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। स्वामी जी ने कहा,
2: श्री रामकृष्ण के भक्तगण सभी ब्राह्मण हैं। वेद कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार है। संस्कार के अभाव में वे लोग अब तक जनेऊ धारण नहीं कर पाए हैं। आज श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि है। इस पुण्य अवसर पर वे अपने अधिकार के अनुसार क्षत्रियत्व और वैश्यत्व को ग्रहण करेंगे। समय पर इन्हें ब्राह्मण बना डालना होगा।
0: स्वामी जी के निर्देशानुसार लगभग 50 व्यक्तियों ने गंगा स्नान करके श्री राम कृष्ण के चित्र के सामने जनेऊ तथा गायत्री मंत्र ग्रहण किया। जनेऊ ग्रहण करने के बाद उन भक्तों को संबोधित कर स्वामी जी ने आवश्यक उपदेश आदि दिए और उन्हें प्रतिदिन गायत्री मंत्र जप करने का निर्देश दिया।
1: ये पहले से ही निश्चित हुआ कि स्वामी जी अपनी पश्चिमी शिष्याओं के साथ हिमालय भ्रमण के लिए जाएंगे। प्लेग का प्रकोप घट जाने पर तथा सरकारी निषेध शिथिल हो जाने पर स्वामी जी ने श्री सेवियर के आमंत्रण के अनुसार अल्मोड़ा की ओर यात्रा की। उनके साथ थे स्वामी तूर्यानंद जी, निरंजनानंद जी, सदानंद जी, स्वरूपानंद जी आदि तथा उनकी 4 पश्चिमी शिष्याएं। नैनीताल पहुंचकर अपने साथियों के साथ स्वामी जी ने कुछ विश्राम किया। खेतरी के महाराजा अपने गुरुदेव के दर्शन की इच्छा से पहले से ही वहां पर मौजूद थे। स्वामी जी के श्री चरणों का दर्शन पाकर महाराजा साहब ने अपने को कृतार्थ माना तथा उनकी पश्चिमी शिष्याओं के साथ परिचित होकर वे आनंदित हुए।
0: इसी समय उन लोगों को एक बुरी खबर मिली। निवेदिता ने लिखा है,
3: 3 जून शुक्रवार प्रातः काल हम लोग कार्य में जुटी थी। उसी समय एक तार आया। तार एक दिन देरी से पहुंचा था। उसमें लिखा था, गुडविन ने कल रात 2 जून को ऊटक वन में देह त्याग कर दिया। उस अंचल में टाइफाइड ज्वर की जो महामारी फैली थी, लगा कि हमारे मित्र उसी का ग्रास बने हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक वे स्वामी जी के बारे में ही बोल रहे थे।
0: इसी दुह संवाद के साथ ही साथ पवहारी बाबा के देहांत की खबर आई। स्वामी जी ने इन दुख संवादों को शांत भाव से झेल लिया।
1: यहाँ से स्वामी जी अपने संगियों के साथ पंजाब होकर कश्मीर गए। वहाँ वे अपने पाश्चात्य अनुयायियों को भारत के बारे में बताया करते थे। स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म तथा अपने दृष्टिकोण के बारे में कितनी ही बातें कही थी। साथ ही पाश्चात्य जीवन के साथ वे उनकी तुलना भी करते जाते थे। इन पाश्चात्य महिलाओं को उन्होंने तुलसीदास जी का एक दोहा भी सुनाया था, तुलसी जग में आई के सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए।
0: इसी प्रकार 4 जुलाई का दिन आ पहुंचा। उस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वत्र बड़े धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अमेरिका ने इंग्लैंड से स्वाधीनता प्राप्त की थी। स्वामी जी की टोली में श्रीमती पैटरसन, ओली बुल, धीरा माता, कुमारी मैकलाउड, जया, ये 3 अमेरिकी महिलाएं थी। चतुर्थ महिला भगिनी निवेदिता इंग्लैंड की नागरिक थी। पिछले दिन निवेदिता ने खेद व्यक्त करते हुए कहा,
3: हमारे पास अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। रहता तो प्रातःकाल जलपान के समय हम अपने दल के अन्य सदस्यों को उनके राष्ट्रीय समारोह के उपलक्ष में आनंद प्रदान करते। 3 की शाम को स्वामी जी बड़े आग्रह के साथ एक कश्मीरी पंडित दर्जी को ले आए और कहा, यदि इस व्यक्ति को ध्वज का प्रारूप बता दिया जाए तो वो उसे बना देगा। इसके फलस्वरूप एक वस्त्र खंड पर सितारे और पट्टियां लगाकर उसे अति सुंदर ढंग से बनाया और वृक्ष की कुछ टहनियों के साथ भोजनालय के ऊपरी हिस्से में लगा दिया। प्रवेश द्वार को भी पत्तियों से सजा दिया गया और स्वामी जी ने 4th of July यानी 4 जुलाई के प्रति शीर्षक नाम की एक सुंदर कविता रची।
2: 4 जुलाई के प्रति काले बादल कट गए आकाश से, रात को बांधे हुए थे जो समा, पृथ्वी पर तानी थी चादर इस तरह, आंख खोली जादू की लकड़ी फिरी, चिड़ियां चहकी साथ फूलों के उठे सर, सितारे जैसे चमके ताज के, ओस के मोती लगे, स्वागत किया क्या तुम्हारा झूम कर झुक कर, खुली और फैली दूर तक झीलें, खुशी जैसे आंखें कमलों की फाड़े हुए, दर्श करती हैं तुम्हारा हृदय से, कुछ निछावर ज्योति के जीवन, क्या आज अभिनंदन तुम्हारा धन्य है, आज रवि स्वाधीनता की फूटी कली, राह देखी विश्व ने कैसे खिली, देश कालिक खोज की तुमसे मिले, छोड़ा है घर मित्र छोड़ी मित्रता, खोजा तुमको आवारा मारा फिरा, गुजरा दहशत के समंदर से, कभी सघन पहले के गहन वन से, लड़ा हर कदम पर प्राणों की बाजी लिए, वक्त वो हासिल निकला काम का, प्यार का पूजा का जीवन दान का, हाथ उठाया संवर कर पूरा किया, लेकिन वो दिन भी आया जब संघर्ष फले, पूजा श्रद्धा और बलिदान पूर्ण हुए, अंगीकृत हुए, तुमने अनुग्रह किया और समस्त मानवता पर स्वातंत्र्य प्रकाश विकीर्ण किया, ओ देवता निर्बाध बढ़ो अपने पथ पर, तब तक जब तक कि ये सूर्य आकाश के मध्य में ना आ जाए, जब तक तुम्हारा आलोक विश्व के प्रत्येक देश में प्रतिफलित ना हो, जब तक नारी और पुरुष सभी उन्नत मस्तक होकर ये नहीं देखें कि उनकी जंजीरें टूट गईं और नवीन सुखों के वसंत में उन्हें नव जीवन

0: काश्मीर में रहते समय स्वामी जी ने निवेदिता को साथ लेकर अमरनाथ और क्षीर भवानी की यात्रा की थी।
1: इस विराट गुहा के एक अंधेरे हिस्से में विशाल हिमलिंग के सम्मुख खड़े होकर उन्हें प्रतीत हुआ मानो वे महादेव का ही साक्षात दर्शन कर धन्य हो गए हों। उनका शरीर भस्म से आच्छादित था, कौपीन के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ भी नहीं पहन रखा था। उस समय गुहा महादेव के स्तुति निनाद और हर हर बम बम की ध्वनि से गुंजरित हो रही थी। स्वामी जी ने भक्ति विहल होकर कई बार साष्टांग प्रणाम किया और अपने भावावेग को संयमित करने के लिए सहसा तेजी से बाहर निकल आए। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। उन्होंने निवेदिता से कहा था,
2: मैंने बड़े आनंद का उपभोग किया। मुझे लग रहा था कि हिमलिंग साक्षात शिव ही हैं और वहां कोई लोभी पंडा, कोई व्यापार या कुछ भी बुरा न था। था तो केवल निश्चल पूजा का ही भाव। और किसी तीर्थ स्थान में मुझे इतना आनंद नहीं मिला।
0: कश्मीर में रहते हुए स्वामी जी ने अपने अमेरिकन शिष्यों को राजस्थान के बारे में बताया। टॉड की लिखी हुई राजस्थान की पुस्तक से मीराबाई का प्रसंग पढ़कर सुनाया और मीरा का एक भजन भी गाया था।

0: अब कश्मीर से विदा लेने का वक्त आ चुका था। सारी व्यवस्था हो जाने के बाद वे लोग नावों में सवार होकर बारामूला की ओर चल पड़े और संध्या के समय वहां जा पहुंचे। इस यात्रा के बारे में निवेदिता ने लिखा है,
1: ऐसा निश्चित हुआ था कि अगले दिन 12 अक्टूबर को दोपहर में स्वामी जी लाहौर की ओर प्रस्थान करेंगे और हम लोग कुछ दिन बारामूला में ही निवास करेंगी। नदी पर यात्रा करते हुए उन्हें हम बहुत कम ही देख पाई। वे आम तौर पर मौन ही रहते और नदी के तट पर अकेले ही दूर दूर तक भ्रमण करते। हम लोगों के बजरे में वे शायद ही कभी आए। भारत लौटने के बाद से ही वे जिस कठोर परिश्रम में लगे हुए थे उसके फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इसके अतिरिक्त उन्हें जो महान उपलब्धियां हुई थी उसके परिणाम स्वरूप भी उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे स्वयं इसका बोध नहीं कर पाए, क्योंकि जिस प्रकार शारीरिक पीड़ा एक सीमा के बाद असहनीय हो उठती है, वैसे ही आध्यात्मिक अनुभूति की तीव्रता भी शरीर एक निश्चित काल के बाद सहन नहीं कर सकता।
0: 12 अक्टूबर को जलपान के पश्चात स्वामी जी शिष्याओं के पास आए और काफी समय तक बैठकर वार्तालाप करते रहे। सुनते सुनते उन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे किसी उच्च भाव भूमि पर पहुंच गई हों। बीच में वे भावोद्दीपक भजन भी गा रहे थे और साथ ही साथ अनुवाद कर देते थे। सभी भजन काली विषयक थे। इन पंक्तियों को उन्होंने बारंबार गाया,
2: हे माँ श्यामा, तुम इस संसार रूपी बाजार के बीच पतंगे उड़ा रही हो। लाखों में से दो एक पतंगों के कट जाने पर तुम हंसते हुए तालियां बजाने लगती हो।
0: इसके बाद वे स्वरचित कविता काली माता से आवृत्ति करने लगी।
2: काली माता, छिप गए तारे गगन के, बादलों पर चढ़े बादल, कांप कर गहरा अंधेरा, गरजते तूफान में शत लाख पागल प्राण छूटे जल्द कारागार, द्रुम जड़ समेत उखाड़ कर हर बला पथा की साफ करके, शोर से आ मिला सागर, शिखर लहरों के पलटते उठ रहे हैं कृष्ण नभ का स्पर्श करने के लिए द्रुत किरण जैसे अमंगल की हर तरफ से खोलती है मृत्यु छायाएं, सहस्त्रों देह वाली घनी काली, आधि व्याधि बिखेरती है नाचती पागल हुलस कर, आ जननी आ जननी आ आ, नाम है आतंक तेरा, मृत्यु तेरे श्वास में है, चरण उठकर सर्वदा को विश्व एक मिटा रहा है, समय तू है सर्वनाशिनी, आ जननी आ जननी आ आ, साहसी जो चाहता है दुख मिल जाना मरण से, नाश की गति नाचता है माँ उसी के पास आती, देखा ये सब सत्य है अक्षरशः सत्य है, माँ सचमुच ही उसके पास आती हैं। मैंने अपने जीवन में इसे प्रत्यक्ष किया है क्योंकि मैंने साक्षात मृत्यु का आलिंगन किया है।
0: सोलह अक्टूबर 1898 स्वामी जी स्वामी सदानंद के साथ लाहौर से सीधे कलकत्ता की ओर चले। 18 अक्टूबर को जब वे लोग नीलांबर बाबू के मकान में स्थित मठ में पहुंचे तो दीर्घ काल के बाद उनके लौटने के कारण वहां आनंद मनाया जाने लगा, परंतु उनकी शारीरिक अवस्था से सबकी दुश्चिंता भी बढ़ी। और भी देखने में आया कि अब वे अपने आप में ही मग्न रहते हैं, मानो बाहर की जीवन के साथ उनका कोई संपर्क ही ना हो। उनके लौटने के दो तीन दिन बाद जब शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती उनका दर्शन करने आए तब भी वो भाव दूर नहीं हुआ था। चक्रवर्ती महाशय को देखकर स्वामी ब्रह्मानंद बोले,
3: जाने क्यों कश्मीर से लौटने के बाद से ही स्वामी जी किसी से वार्तालाप आदि नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तुम स्वामी जी के साथ हल्की फुल्की बातें करके उनके मन को हल्का करने का प्रयास करो, जाओ जाओ।
4: शिष्य ने ऊपर जाकर देखा कि स्वामी जी मुक्त पद्मासन में पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हैं मानो ध्यानमग्न हो। मुख पर हंसी नहीं थी, उज्जवल नेत्र अंतर्मुख थे। उन्होंने शिष्य को देखकर बैठने को कहा, परंतु इसके बाद मौन ही रहे। बाद में शिष्य द्वारा अमरनाथ दर्शन का प्रसंग उठाने पर स्वामी जी बोले,
2: अमरनाथ दर्शन के बाद से ही 24 घंटे शिव जी मानो मेरे मस्तक पर सवार रहते हैं, कैसे भी उतरते नहीं। अमरनाथ और क्षीर भवानी के मंदिर में मैंने बहुत तपस्या की थी। अमरनाथ जाते समय मैं एक खड़ी चढ़ाई पार कर गया था। कोई भी यात्री उस पगडंडी से नहीं जाता, केवल पहाड़ी लोग ही उतरते चढ़ते हैं। उसी मार्ग से जाने की मेरे मन में जिद सी हो गई थी। उसी परिश्रम से शरीर थोड़ा दुर्बल हो गया है। वहां ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि शरीर में मानो सुइयां चुभ रही हूं। मैं भी कौपीन मात्र पहने भस्म लगाकर गुफा में प्रविष्ट हुआ। उस समय शीत गर्मी का कुछ पता नहीं चला, परंतु मंदिर से निकलते ही शरीर मानो ठंड से अकड़ गया था। 3-4 सफेद कबूतर देखने में आए थे, वे उसी गुफा में रहते हैं या आसपास के किसी पहाड़ में, ये ठीक से जान नहीं सका।
4: कुछ दिन बाद भगिनी निवेदिता कलकत्ता लौट आई। श्री गुरुदेव के चरणों में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। हिंदू स्त्रियों के दैनिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होने के लिए वे बाग बाजार स्थित श्री माता जी के निवास स्थान पर रहने लगी। श्री रामकृष्ण देव की अन्य स्त्री भक्तों ने बड़े आदर पूर्वक बिना किसी दुविधा के बड़े स्नेह से निवेदिता को अपने बीच स्थान दिया। थोड़े ही समय में बाग बाजार में एक बालिका विद्यालय स्थापित करने की व्यवस्था निश्चित हो गई।
0: निवेदिता का यही प्रथम उद्यम था। उन्होंने बाग बाजार मोहल्ले में एक बालिका विद्यालय खोलने का संकल्प किया था। एक दिन बलराम बाबू के मकान के हॉल में सभी गृहस्थ भक्तों का एक समारोह हुआ। इसमें आवेदन किया गया कि गृहस्थगण इस विद्यालय में अपनी बच्चियों को भेजें। सब लोग बैठे हुए थे। उसी समय स्वामी जी ने अप्रत्याशित रूप से आकर सबके पीछे आसन ग्रहण किया। निवेदिता ने अंग्रेजी में व्याख्यान दिया। मास्टर, महाशय, सुरेश दत्त, हरमोहन बाबू आदि उपस्थित थे। स्वामी जी हंसते हुए विनोद पूर्वक कह रहे थे,
2: उठ उठ ना, केवल बेटी का बाप होने से ही काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय भाव पर उनकी शिक्षा दीक्षा में सहयोग तुम सबको देना होगा। उठकर बोल, आवेदन का प्रत्युत्तर दे। बोल, हाँ हम लोग राजी हैं, हम आपको अपनी कन्याएं देंगे।
4: कोई इस प्रकार बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। अंत में स्वामी जी ने हठ पूर्वक हल्के स्वर में हरमोहन बाबू से कहा,
2: तुझे देना ही होगा।
0: उनकी ओर से तब स्वामी जी ने स्वयं ही कहा,
2: वेल मिस नोबल, दिस जेंटलमैन ऑफर्स हिज गर्ल टू यू।
0: निवेदिता पहले तो देख नहीं पाई थी कि भीड़ में स्वामी जी बैठे। फिर उनका दर्शन कर और उनकी उत्साहदायिनी वाणी सुनकर निवेदिता बड़ी हर्षित होकर तालियां बजाने लगी और अंत में आनंद विभोर होकर नाचने लगी, मानो वे एक छोटी सी बालिका।
4: बेलूर लौटने के बाद अब स्वामी जी का स्वास्थ्य काफी सुधर चुका था। उनके सपनों का बालिका विद्यालय आरंभ हो गया था। श्री रामकृष्ण के स्थायी मठ का कार्य भी संतोषजनक रूप से प्रगति पर था। भवन निर्माण आदि के लिए आवश्यक धनराशि श्रीमती बुल ने दे दी थी। इतना ही नहीं, इन सब कार्यों के पूरा हो जाने के बाद भी मठ के व्यय हेतु कुछ धन बच जाने की आशा थी। ये सब देखकर स्वामी जी का मन उन दिनों अत्यंत प्रफुल्लित था। वे नई भूमि पर टहलते हुए आनंद विभोर हो जाते और भविष्य में उस स्थान को केंद्र बनाकर कितने ही सत्कार्यों का पालन करना होगा आदि बातें सोचते तथा दूसरों को भी बताते।
0: जिस समय स्वामी जी अपने संकल्प के अनुसार ऋषियों द्वारा वनों में रचित वेदांत को नगर के कर्म कोलाहल के बीच भी स्थापित करने के प्रयास में लगे हुए थे और धीरे धीरे इसमें सफलता भी पा रहे थे, उसी समय उन्हें इसी भाव का एक प्रस्ताव उद्योगपति जमशेद जी एन टाटा से भी प्राप्त हुआ। प्रस्ताव पत्र इस प्रकार था।
5: प्रिय स्वामी विवेकानंद जी, आशा है कि आपको जापान से शिकागो तक यात्रा के अपने इस सहयात्री की याद होगी। आपके भी विचार अब मुझे विशेष रूप से स्मरण आ रहे हैं कि भारत वर्ष में त्याग तपस्या का जो भाव पुनः जागृत हो रहा है, हमारा उद्देश्य उसे नष्ट करना नहीं है बल्कि उसे रचनात्मक मार्गों पर परिचालित करने की विशेष आवश्यकता है। अपने वैज्ञानिक शोध संस्थान के संदर्भ में ही मैं आपके उन विचारों का स्मरण कर रहा हूँ जिसके विषय में आपने अवश्य सुना या पढ़ा होगा। मेरी राय में यदि ऐसे आश्रयों या आवास ग्रहों की स्थापना की जाए जहाँ त्याग व्रत धारण करने वाले साधा जीवन बिताते हुए भौतिक एवं मानवीय विज्ञानों की चर्चा में अपना जीवन उत्सर्ग करें, तो त्याग भावना की इससे अच्छी उपयोगिता और क्या हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इस तरह के जिहाद का उत्तरदायित्व यदि कोई योग्य नेता स्वीकार कर ले तो इससे धर्म एवं विज्ञान दोनों की ही उन्नति होगी और हमारे देश की कीर्ति भी फैलेगी। इस अभियान में विवेकानंद से बढ़कर और कौन नेतृत्व दे सकेगा? क्या इस पथ से हमारी राष्ट्रीय परंपराओं को नवजीवन प्रदान करने में आप सहयोग करेंगे? इस दिशा में जन जागरण उत्पन्न करने के निमित्त सर्वप्रथम संभवतः आप अपनी अग्निमयी वाणी में एक पुस्तिका लिखेंगे और उसके प्रकाशन का व्यवहार मैं सहर्ष वहन करूंगा। ससम्मान आपका विश्वस्त जमशेद जी एन टाटा।
0: 9 दिसंबर श्री रामकृष्ण संघ के इतिहास में एक स्मरणीय दिन है। नीलांबर बाबू के बगीचे वाले मकान में ब्रह्म मुहूर्त में स्वामी ने गुरु भाई और शिष्यों के साथ गंगा जी में स्नान कर नवीन गैरिक वस्त्र पहना। आज के विशेष अनुष्ठान के पौरोहित्य का भार स्वयं स्वामी जी ने ग्रहण किया है। ध्यान, उपासना व पूजा यथा विधि समाप्त कर श्री रामकृष्ण देव के देहावशेष वाले पवित्र ताम्र पत्र को दक्षिण स्कंध पर रख वे बेलूर मठ की ओर चले।

0: भरोसा करके ही उन्हें हमारे भावी मठ में ले जा रहा हूं। वत्स, निश्चित जानो, जितने दिन उनके नाम पर उनके अनुगामी भक्तगण पवित्रता, आध्यात्मिकता व समस्त मानव से एक सी प्रीति के आदर्श की रक्षा कर सकेंगे, उतने दिन श्री रामकृष्ण देव इस मठ को अपनी दिव्य उपस्थिति द्वारा धन्य बनाए रहेंगे।
1: ये जानकर कि स्वामी जी बेलूड मठ में निवास कर रहे हैं, प्रतिदिन कॉलेज के अनेक छात्र व शिक्षित युवक उनके दर्शन के लिए आने लगे। स्वामी जी अपनी शारीरिक अस्वस्थता की परवाह न करते हुए उत्साह पूर्वक उनके साथ धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, विज्ञान इत्यादि की चर्चा में लीन होते थे। स्वामी जी ने उन सब युवकों को ओजस्वी भाषा में सेवा धर्म की महिमा का संदेश इसी उद्देश्य से देते थे कि वे सब इस बात का हृदय से अनुभव करें कि देश सेवा में आत्मनियोग करना ही वर्तमान राष्ट्रीय जीवन का सर्वश्रेष्ठ व्रत है, तथा उस आदर्श में तदनुसार वे अपने जीवन को ढालें। देश की दुर्दशा की चर्चा करते हुए समय समय पर भाव की अधिकता से वे आंसू बहाते थे और कभी कभी गंभीर चिंता में निमग्न रहते थे। अधिकांश युवकों की शारीरिक दुर्बलता, नैतिक चरित्रहीनता और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से मस्तिष्क विकृति को देख वे समय समय पर शुद्ध हो तीव्र प्रतिक्रिया प्रकट करते थे। वे प्रायः कहा करते थे,
0: 2000 वीर हृदय, विश्वासी, चरित्रवान व बुद्धिमान और 30 करोड़ रुपए होने पर मैं भारत को अपने पैरों पर खड़ा कर देने में सक्षम हूँ।
2: फिर कभी कभी इस सब के अभाव में ये सोचकर कि उनके जीवन का उद्देश्य व्यर्थ हो रहा है, वे निराशा से व्याकुल हो उठते थे। परंतु उन्होंने पूर्ण मन से ये निश्चय कर लिया था कि पर्वत जैसी विघ्न बाधाओं तथा निराशा के अंधकार के बीच में भी रास्ता तैयार कर लेना होगा। फिर उन्होंने तय किया कि उनके निस्वार्थ आह्वान से प्रेरित होकर जिन थोड़े से व्यक्तियों ने जगत के हित के लिए आत्मसमर्पण किया है, उन स्त्री पुरुषों को ही अग्रगामी सैन्य दल के रूप में संगठित कर लेना होगा।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

95.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, आइए आपको बताते हैं हमारे केंद्र से कल सुबह कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनेंगे। जीवन सौरभ कार्यक्रम सुबह 7 बजे, जिसमें आप सुनेंगे अधूरी सीढ़ी। अक्षय निधि कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सुबह 7:10 से। भक्ति संगीत लेकर आएंगे सुबह 7:20 से। रखमाबाई राउत पर केंद्रित होगा कल का कार्यक्रम वतन का राग, प्रसारण समय प्रातः 8 और संध्या पुनः 6। सुबह 8:30 पर इतिहास के पन्नों से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सुबह 9 कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुनेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 2 का प्रसारण। भारत विभूति कार्यक्रम कल केंद्रित रहेगा आशुतोष मुखर्जी पर, प्रसारण समय 9:30। दिन में 10 आप सुनेंगे कार्यक्रम परिक्रमा। 10:30 पर काव्य गुंजन में कल आप सुनेंगे रश्मि रथी का भाग 16। दिन में 11 हमारे वैज्ञानिक कार्यक्रम में कल डॉक्टर भानु जहांगीर कोयाजी पर होगा कल का कार्यक्रम। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम का 58 भाग हम प्रसारित करेंगे। श्रोताओं, अब रात्रि के 10:01 हुए हैं। इसी के साथ हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातः 7 कल के कार्यक्रमों के साथ हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।